0: ओम। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: कुल मन अलैहा फान,
0: जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामनों दिल और जबी। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

Tune in to the Wannabe 101 FM. Mix FM. 101 FM.

0: Righto. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. And of course, Assalamu alaikum. Ahle Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. Aur janab, kaise aap tamam log? Yakeenan theek thaak hain, wane fit hain, maze mein hain, khoob enjoy kare apni zindagi ko. It's 8 to 4 on the dial. Agar main galat nahi hu, aaj mera vision thoda blur hua hua hai subah subah. To mujhe nazar nahi aa raha kya sab kuch chal kya raha hai duniya ke andar. लेकिन जनाब मैं आ चुका हूं आपके लिए लेके गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो. डेफिनेटली हम खूब एंजॉय करने वाले हैं, खूब सारी मस्तियां, लॉट्स ऑफ फन ओनली ऑन एफएम 101. Well, today is a blessed Friday, 18th of September 2026. अच्छा, ये मंथ थोड़ा तेजी से निकल रहा है. नॉर्मली नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है. बल्ला जी, मैंने जिस तरह गुजारा है ना ये गर्मियों के दिन, मैं आपको बता, मेरे होशो आवाज से मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जो मुश्किल तरीन कोई साल निकला है वो 2026 की गर्मियां निकली हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेहतर हो चुका है और रातें ठंडी और सुबह भी ठंडी होती है, लेकिन दोपहर में थोड़ी बहुत ही गर्मी हो जाती है. लेकिन डजंट मैटर, ये गुजारा हो जाएगा. लेकिन जून भी गुजार लिया, अब यकीन करें जून भी गुजर ही गया, लू थी लेकिन गुजर गया. लेकिन जो हालात जुलाई अगस्त ने पैदा किए हैं ना, किसी को सजा देनी है ना तो उसको पाकिस्तान बुला के ये मौसम जरा एंजॉय करवाएं. बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन एक बड़े ही सियाने बंदे ने मुझे एक बात की थी, और वो सियाना बंदा नहीं, एक्चुअली बंदी थी, और वो बंदी ये थी, सियानी बंदी जो थी वो मेरी मामा जी थी. एंड शी वाज ऑलवेज लाइक के अगर आप लोग मौसम को की तरफ से ध्यान हटाओ और अपनी किसी एक्टिविटी पे ध्यान लगाओगे तो आपको मौसम के असरात उस वक्त फील नहीं होते, आप आसानी से वो काम कर जाते हैं और इजीली वो टाइम भी पास हो जाता है. आप यकीन करें कि ऐसा होता है, हमारे एक्सपीरियंस है. लेकिन वो जो एक दिमाग में हमारे बैठा कि नहीं जी मौसम मौसम मौसम, वो निकल नहीं रहा मेरे पास. अब सितंबर ये देखें, 18th of September हो गई है. आपको पता है ये तो वैसे भी महीना बहुत खास है ना. खास है पता है क्यों, पता है क्यों खास है? तो बस इसी वजह से ठंडा ठंडा मौसम है, एंजॉय करें. रातें बड़ी ठंडी होगी, भी पंखे बंद करने पड़ते हैं, बिल्कुल लाइट कर देना पड़ता है पंखे को. सुबह उठो ना तो वैसे ही आप वो हो रहे होते कि यार बॉडी अकड़ गई है कहीं ना कहीं से, हम जो है वो एकदम ऐसे हो रहा होता है कि हड्डियां हमारी जब अकड़ सी गई हैं. तो अब अपना ख्याल रखना शुरू करें. जो लोग बाइक पे आ रहे हैं वो बिल्कुल हाफ स्लीव में मत बैठे, अब आपको जो हवा पड़ेगी ना वो बाद में आपको तंग करेगी. सबारल जनाब, ये बातें सारी जो है ना ये दादी अम्मा के टोटके शोटके जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, और उनकी बातें हैं बड़े बुजुर्गों की जो बताते थे हमें, क्योंकि ये बातों से सभी वाकिफ है तो मुझे बताना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अच्छा सा गाना सुनवाना चाहिए, उसके बाद लौट के मैं वापस आऊंगा. तो डेफिनेटली ऐसे कंटिन्यू करेंगे अपने सिलसिले को. आई थिंक के पोस्ट जो है वो लग चुकी है. वसीम का मैसेज मुझे आया था कि जनाब आपकी पोस्ट हमने चिपका दी है. अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त तरीके से पोस्ट आपने लगाई है. सर नजर आ रहा है, आधा बंदा नीचे चला गया तस्वीर में. यार ये मुझे नहीं समझ आती, इसको रीपोजिशन नहीं कर सकते हम इसके ऊपर, ऐसा होता तो होगा. बहरहाल पोस्ट लग चुकी है जी, आप चाहें तो यहाँ मैसेज कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. इस गाने के बाद मैं आपके मैसेजेस को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूंगा. आज हम फेसबुक खेलेंगे जी, आपके मैसेजेस प्रोग्राम में ज्यादा शामिल करेंगे. सो ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम की जो है वो पोस्ट को लाइक करें, ताकि हम आपसे खूब सारी बातें कर सकें. अभी जो गाना शामिल करने जा रहा हूँ वो वाला गाना जो है मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हम थोड़ा सा सॉफ्ट नंबर के साथ आगाज कर दें, क्योंकि अभी आपको हमने उठाना है. अगर अचानक से मैंने चीखम पुकार लगा दी आपके सराहने तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो शोर करना है कि जी साहिल भाई आपने तो हमारे सर में दर्द करवा दिया. तो मैं चाह रहा हूँ आपको हम थोड़ा सा मजेदार वाला गाना सुनवाते हैं. तो ये गाना है जी, एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ. वी आप सुन रहे फ्रॉम 101 एंड दैट इज नबील शौकत, ये इश्क का है मौसम. हाय हाय हाय हाय हाय, अब मौसम शुरू हो गया, आपको बेसब्री से दिसंबर का इंतजार है मुझे पता है.
1: तेरे बिना मैं
0: है ना

All righty. जनाब ये जो बचपन की स्कूल मॉर्निंग्स होती हैं कितने मजेदार होती हैं ना। अब आप जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे यार इस बंदे का दिमाग खराब हो गए, बहकी बहकी बातें कर रहा है सुबह सुबह उठ के। लेकिन यकीन करें मैं अब देखता हूँ जब अपने बच्चों को जाते हुए या दूसरे बच्चों को जब मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ अपने बच्चों को जब मैं देखता हूँ उन्हें तो मुझे एहसास होता है कि वाकई बचपन की जो स्कूल मॉर्निंग्स हैं हमारी वो बड़ी मजेदार हुआ करती थी। देखिए ना वो लंच बॉक्स लेकर जाना, वो पानी की बॉटल साथ होती थी, दोस्तों का इंतजार होता था, तैयार होकर जाना, पापा टाई सही करके बांधते हैं, पापा मैम डांटती हैं यूं ना करें ऐसा ना हो वैसा ना हो, इतनी चीजें होती हैं। फिर स्कूल जाते हैं बच्चों को देखते हैं वो उनको सब ज्यादा इंतजार होता है कि रिसर्च कब होगी, हमारी ब्रेक कब होगी, हम उसमें खेलेंगे कब, लंच कब करेंगे। अच्छा लंच का वैसे आजकल बच्चों को नहीं था, हमें तो बड़ा होता था भाई, मैं तो बर्गर खाने जाता था स्कूल, जो सीधी बात है किस तरह मुश्किल से ये 45-45 मिनट के 3-4 पीरियड में गुजारता था कि अब जो आखिरी 45 मिनट हैं ये बीच वाले इसमें मुझे जो है वो बर्गर खाने का मौका मिलता। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो लंच को इतना प्रेफर ही नहीं करते, उनको तो बस हम खेल लें किसी तरीके से। अच्छा स्कूल में ना कभी कभार कुछ टीचर्स भी बहुत बहुत आपके फेवरेट होते थे और कुछ टीचर्स आपको बहुत परेशान करते थे ना, देख के आपको बुरा लगता था, उनको क्यों क्यों लगता था उसकी वजह ये थी कि वो इतने सख्त होते थे। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर आजकल के बच्चे कि देखें टीचर्स टीचर्स होते हैं। हाँ ठीक है कभी बार थोड़ी सख्ती हो जाती है, शायद कभी थोड़ी सी ज्यादा सख्ती भी कर देते हैं अननेसेसरी चीज के ऊपर, लेकिन आपकी हमारी भलाई के लिए होता ना, उसी तरह हम सीखते हैं। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर्स टीचर्स, आपको पता है वो आपके जो है वो वालिदैन का दर्जा रखते हैं। सुबह सवेरे इतना मजा आ रहा होता है ना कि मतलब सुबह देखें बच्चे एक ही कपड़ों में सारे जा रहे हैं और वैन्स भरी हुई हैं, बच्चे उतर रहे हैं छोटे छोटे पिद्दे से, छोटे छोटे से यार घुटनों तक पहुंचे हुए, ऐसी ऐसी चिटखारी बातें कर रहे होते हैं, जो मिला इंतजार कर लो कहाँ जा लियो, इस तरह करके बातें कर रहे होते हैं। मैं इतना हैरान हो रहा होता है ये पिद्दे पिद्दे से इतनी करारी आवाजों में बात कैसे करते हैं। एक बच्चा बड़ा प्यारा सा ना रूहान के स्कूल में ही है, तो आपकी भाभी भी वहां पे होती हैं, तो वो अक्सर वो बच्चा जो ना वो आकर पास बैठ जाता है ना, बड़ा प्यारा सा है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तो वो आके मुझसे हाथ मिला के ना, मैंने सो बहुत छोटू सा है वो मेरे घुटने तक ही जितना, नर्सरी का है, तो मैंने उसे पूछा मैंने कि यार आप आते नहीं हो हमारे पास, आते नहीं हो आप, कहता है मैं बिजी होता हूँ, अब मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऊपर वाले फ्लोर में होता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं होता, मैं क्लास वन में चला गया। मुझे ऐसे जो ना वो चटोखे मारते हैं जवाब के बच्चे, और हमें देखो पूछ लेता, हम आगे दीवार निकाल के खड़े हो जाते थे कि हमसे कुछ पूछ लिया हमें जवाब ही नहीं आता था, हम ऐसे बच्चे थे। आजकल के बच्चे सही वाले बच्चे हैं जी। Alright, जी आपको लेके चलेंगे आपके मैसेज की जानिब। Let me check कि कौन हमारे साथ मौजूद है, कहां से और क्या कहते हैं। फेसबुक पे जो खिचड़ी घोलते रहते हैं आप लोग उसका भी तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा, नहीं जवाब देना पड़ेगा ना जी हमें। प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक शेयर कर दिया कीजिए। सो हियर वी गो जनाब, द फर्स्ट मैसेज, कौन है कहां से और क्या कहते हैं जी हमारे साथ हैं जी। पहला मैसेज बरकत रमदानी जमाली बलोच का, कहते गुड मॉर्निंग बरकत जमाली जाफराबाद बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर बरकत, खुश रहें आबाद रहें, हमारे बड़े अच्छे प्यारे खामोश से लिसनर हैं, एक ही मैसेज करते हैं और बस इतना ही लिख के चले जाते हैं, कभी पूछ लिया करें सर कैसे हैं हम। आए हाय हाय। नेक्स्ट ये ताहिर अजीज कहते सलाम अलैकुम मोस्ट डेयरेस्ट सुहेल यूसुफ, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, राहत बनो मौसम फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिस मौसम, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव कामिल अवान कामिल अवान प्रिंस मोइज कहते सलाम अलैकुम भाई जान, साहिल भाई जान सलूट, आपको भी मेरा सलूट हो जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर भाई जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव लिविंग स्टोन अकेला अकाला के पता नहीं क्या लिखा, और कहते हैं लॉट, अच्छा ये भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे,

He's always listening. जब भी सुन रहे होते हैं ना तो ये आगे से लिखते हैं locked. And I really like it. Thank you. कामिल अवान कहते हैं वाकई सच में इनको आई थिंक ये बात कर रहे हैं उसी हवाले से जो मॉर्निंग्स के हवाले से हमने बात की. तो ये आपके मैसेजेस थे जो कि मैंने प्रोग्राम में शामिल किए हैं. लेट मी रिफ्रेश वंस अगेन. आई थिंक आपके कुछ मैसेजेस और आ चुके हैं और उसे मैं शामिल कर लेता हूँ. न्यूज करने पे मुझे नजर आती हैं. अगेन आती हैं जी. राहत बाना मौजम कहती हैं क्या स्टाइल है आप एफएम 101 की एनिवर्सरी शो करेंगे. वी आर वेटिंग राहत बानो मौजम फ्रॉम रावलपिंडी. आई डोंट थिंक सो बिकॉज एक तो 101 की एनिवर्सरी से एक दिन पहले आपको पता है मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे पे बहुत सारे मेरे अपने फैमिली के और फ्रेंड्स ने मेरे इवेंट्स रखे होते हैं छोटे छोटे से, तो वो चल रहा होता है. मैम हमेशा मुझे इसी बात पर डांटती हैं कि तुम ये क्या करते हो, लेकिन मेरी मजबूरी है जी. मैं कर्जा दे रहा हूं तो मुझे इस वजह से तो थोड़ा सा इशू हो जाता है. लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को जरूर ज्वाइन कर सकूं. लेकिन मैं ना कर सका तो बाकी तो सारे लोग होंगे आपको डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे. इसके अलावा जनाब 101 की बर्थडे जब भी हो हमारे दिलों में 101 बसता है. हम होना हो यहाँ पे लेकिन हमारे दिलों में तो है ना. नेक्स्ट वी एम मिसेस सईद मलिक कहते हैं जीते रहो सलामत रहो आमीन. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. खुशामदीद मेरा बच्चा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मिसेस सईद मलिक. आपको पता है आपका मैसेज पढ़ के मेरा दिल बड़ा गार्डन गार्डन हो जाता है. उसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मॉम ने मैसेज किया है और बड़ा मजा आता है. हमें ज्वाइन किया है किसने जी? ये है जलील और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहीम यार खान से शामिल प्रोग्राम तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और बहुत सारा प्यार आपने भेजा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ये आपके मैसेजेस थे जो कि प्रोग्राम में शामिल किए हैं. सो लेट मी चेक के अब क्या प्ले करने वाला हूं मैं आप तमाम लोगों के लिए.

Alright, ladies and gentlemen, the track is Main Te Malle Haarve Sadke by Ali Sher. Here we go. अच्छा गाना बड़ा फिट था हमारी कॉन्सर्ट पे आए ना मैंने कहा आपका सदके बड़ा प्यारा है He was laughing at me बाकी बहुत अच्छा गाते थे कहाँ चलेंगे ये लोग

0: Alright जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं FM 101.8, बज के 24 मिनट हुए चाहते हैं। ये वो वक्त है जब घड़ी आपको बता रही होती है कि पुत्र उठ जा वरना आज शामत आने वाली है, तो लेट हो रहा है दोस्त। फिर क्या होता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो लोग बिस्तर के साथ चिपके रहते हैं ना, उसके बाद फिर वो ब्रेकफास्ट के बगैर भागते हैं, क्योंकि दिनों के अब लेट हो चुके हैं और हमारे लिए मसला होगा, तो फिर वो इस तरह ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि टाइम से उठ जाएं, जरा 10 मिनट पहले उठेंगे तो नाश्ता भी अच्छा से कर लेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर क्या होता है कि वक्त नहीं होता, फिर आप कहते हैं आज जो काम करना है वो कल करेंगे, वो कल कभी आती नहीं है। अच्छा वैसे ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, मैंने देखा बहुत सारे लोग, आई एम वेरी पंक्चुअल, आगे मेरी को कमिटमेंट है, मैंने कुछ करना है तो मैं वो फिर करता हूँ, अनटिल अनलेस मुझे उसमें कोई ऐसा फॉल्ट या ऐसी चीज नजर ना आ रही हो जिसकी वजह से मुझे इशू बन रहा हो, लेकिन वो मैं जरूर करता हूँ। ये मेरी आदत है, शुरू से मैं ऐसा ही हूँ, मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं काम को वक्त पे कर लेता हूँ, मुझे जो करना है वो फिर करना है, जो कमिटमेंट है वो करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मैंने देखा है कि वो बेचारे कहते हैं कल पक्का, कल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं हुआ करता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, कुछ इदारों में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसे ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं जहाँ पे कहते हैं जी कल आपका हो जाएगा काम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो चीजें नहीं होती हैं। तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे कोई लोग तो होंगे जो आपको कहते होंगे हाँ ये कल यार पक्का हो जाएगा, डन तो समझ में हो गया, लेकिन वो कल कभी आती ही नहीं है, है ना। तो ये चीजें लाइफ में जो है बहुत कॉमन है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे बिना प्लान्स के बनने वाले जो है वो प्लान्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और वही प्लान्स बेस्ट होते हैं। अगर आप प्लान करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल आती है कि वो फिर बनता ही नहीं है प्लान, है ना। आप गाड़ी में बैठे हैं, दोस्त बैठे, चलो जी बन निकलो, निकल गए आप वो निकल गए तो फिर आप निकल गए, निकल आए घूम फिर आए। अब कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम एक रेस्टोरेंट है वहां चले गए दामने को में। अच्छा भी पहले तो ये कि मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूंगा, इतना खास खाना भी नहीं था वहां का, और पैसे उन्होंने हमसे ऐसे ले ली जैसे पता नहीं हमने उनसे बड़ी मेहनत करवा के काम करवाया। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा था भाई मुझे तो नान भी टाइम पे नहीं दिए इन लोगों ने। लेकिन हमने वहां मटन कढ़ाई बनाई, मंगवाई, एक हाफ मटन कढ़ाई थी वो, उन्होंने हमें फुल करके चार्ज की, लेकिन वो हाफ थी, बहुत थोड़ी सी लग रही थी। साथ एक हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई, उसके भी ये हालात थे, हमें हाफ लग रही थी लेकिन उन्होंने पूरी करके दी कि ये फुल है। साथ एक मलाई बोटी, तो एक कोई चस्का बोटी करके एक चीज थी, वो थी, इसमें चार चार छः छः पीस थे, छः छः पीस थे वो थे, और हम लोग तकरीबन कोई 6 लोग थे, हमें भूख भी बहुत लगी थी, और यकीन करें कि खाना बच भी गया।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 खारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और तरक्की की जानिब गामजन है। आलमी यौम मसावी उजरत आज मनाया जा रहा है और मारूफ क्लासिकी गुलूकार उस्ताद अमानत अली खान की 52वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान, दिस इज FM 101.1।
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.

कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे से

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी,

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

काम कर गईं दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Big radio, big style.
1: Please, friend.
0: FM 101.
2: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने 20 साल पुरानी मोटरसाइकिलों, रिक्शों और चिंगची रिक्शों को फ्यूल रिलीफ स्कीम में शामिल करने की हिदायत की है। नायब वजीर आजम ने तुर्की के साथ अहम तरजीही शोबों में तआवुन मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान इमदाद पर रिवायती इन्हिसार से फैसला कुन तौर पर निकल कर मजबूत तिजारत और सरमायाकारी की जानिब बढ़ रहा है। फौज के शोबे तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

रेडियो जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी बात के साथ, और वो बात ये है कि जिंदगी में कभी भी मायूस मत हो। अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह का जो उजाला है उसे मिटा ही देता है। तो जिंदगी में जितने भी दुख हो, जितने भी गम हो, जितनी भी परेशानियां हो, उन परेशानियों से आपने घबराना नहीं है। आप खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को टेंशन में नहीं डाल देना कि यार ये क्या टेंशन मेरे सर पर आ गई है, बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बहादुरी के साथ उसको फेस करना है। और वो परेशानियाँ कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कितनी ही उसका ड्यूरेशन कितना ही लंबा क्यों ना हो, आखिर एक अच्छी खबर आपकी मुंतजिर है हमेशा से ही, और उन सभी परेशानियों के बाद सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, 101 को सुनना है, हमें सुनना है, आपने 101 के साथ साथ रहना है, और टेंशन परेशानियों को अपनी जिंदगी से बहुत दूर भगा देना है, ठीक है ना। कल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, प्रोग्राम में एक टॉपिक होता है उस पर भी बातें करते हैं, आपकी कॉल लेते हैं, आपके मैसेजेस लेते हैं, और प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101 एल के स्पेस दीजिएगा, अपना नाम पैगाम लिखिएगा, भेज दीजिएगा 4471 पर, कॉल कर सकते हैं 04221100101। facebook.com/fm101 लाहौर का पेज हाजिर हिदमत है जी, पोस्ट अपलोड हो चुकी है, आइए लाइक करें, कमेंट करें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। बहुत सारे मैसेजेस मिलना शुरू हो गए हैं, उन मैसेजेस को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आप हमें लाइव कैसे सुन सकते हैं। लाइव सुनने के दो तरीके हैं, प्ले स्टोर पे जाके रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, और radio.gov.pk पर जाकर हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे जाके FM 101 के तमाम स्टेशंस को कहीं भी बैठे, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे इंटरनेट के जरिए आप सुन सकते हैं। और आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। लाहौर के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर का मौसम बहुत ही प्यारा है, और बहुत ही प्यारा इस सेंस में है कि यार सुबह टाइम ना वो ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसका मैं पिछले शो में जिक्र कर रहा था ना कि अब ठंडी ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाएंगी, अब रातें भी ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सीन है जी, रात बहुत ही खूबसूरत रहती है, गर्मी का वो जो एक गर्मी का एक खुमार रहता था ना वो अब ख़त्म हो गया है। अब तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, और सही वो आउटिंग वाला मौसम है, फैमिली के साथ बाहर जाने वाला मौसम है, और वीकेंड सीन ऑन है, तो आप भी ज़रूर कोई ना कुछ प्लान कर सकते हैं फैमिली के साथ बाहर जाने का। लाहौर से बाहर जाना है तो वो भी जा सकते हैं, लाहौर के अंदर रह के इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बेसिकली बात होती है फैमिली को टाइम देने की, अपनों के साथ वक्त गुजारने की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो हम किसी और के लिए टाइम कैसे निकालें। आप सब मेरे प्रोग्राम में आए हैं, सुन रहे हैं मुझे, दिस इज़ आरजे अली रज़ा। ये गाना आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र, तमाम खूबसूरत समातों को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। दिस सॉन्ग इज फॉर यू ऑल, स्टे हियर, स्टिक अराउंड, सुंदरी FM 101, लेट्स एंजॉय।

right, जी लिस्टनर वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं 101.85 सलाम वाली आवाज आरजे अली रजा की, और मुझे आरजे अली रजा कहते हैं, बड़े प्यार और बड़े मान से कहते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं फन 101 ऑन 101.85।

अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है ना हमारे प्रोग्राम में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मजे का टॉपिक है। कुछ दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनका इंतज़ार सिर्फ एक दिन पहले से नहीं होता, बल्कि हम पूरा साल उस दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कैलेंडर बदलता रहता है, महीने गुजरते रहते हैं, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में एक ख़ास तारीख हमेशा मौजूद रहती है, एक ख़ास डेट, एक ख़ास टाइम जिसका हम इंतज़ार करते हैं। और वो किसी को अपनी सालगिरह का इंतज़ार होता है, किसी को ईद का इंतज़ार होता है, किसी को छुट्टियों का इंतज़ार होता है, किसी को किसी खास शख्स से मिलने का इंतज़ार होता है, और कुछ लोग के लिए शायद तनख्वाह आने का दिन ही साल का सबसे खूबसूरत दिन होता है। वेल, ऐसा भी होता है। आज हमारा जो सवाल है वो ये है कि पूरे साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। कोई ना कोई दिन तो होता होगा ना जिस दिन आपकी सालगिरह होती होगी, आपने किसी से मिलना होता होगा, कोई स्पेशल ऐसा इवेंट, आज़ादी का दिन, कोई भी ऐसा दिन हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कि हम पूरा साल उस दिन का इंतज़ार करते हैं। जैसे कुछ लोग हमारे FM 101 की बर्थडे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ लोग 14 अगस्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी सालगिरह का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने मामा पापा की सालगिरह का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने किसी चाहने वाले की सालगिरह का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आपने करना ये है कि हमें बताना है कि पूरे साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। वो दिन जब आप वाकई बहुत खुश होते हैं, तो जिसके आने से पहले आप उस दिन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, वो दिन आया नहीं, आपने उससे पहले ही उसकी प्लानिंग शुरू कर दी, और उस दिन के गुजरने के बाद उस दिन के जाने के बाद अगले साल पूरा साल आप इंतज़ार करते हैं कि यार अब ये दिन वापस कब आएगा। तो आज ज़रा आपने कैलेंडर के सारे दिन एक तरफ रखने हैं और हमें बताना है कि आपके साल का सबसे खास दिन कौन सा होता है, वो कौन सा ऐसा दिन होता है जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है। आपने करना ये है कि मोबाइल की डायरेक्ट मैसेज ऑप्शन जाना है, 101 है, लिखना स्पेस देनी, अपना पैगाम लिखना है, हमें भेज देना है 4471 पर, अपना नाम भी लिखिएगा, शहर का नाम भी लिखिएगा। facebook.com/FM101 लाहौर का पेज हाजिर है, वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हैं कि पूरे साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको शिद्दत से बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार रहता है। अच्छा, कुछ लोगों ना गर्मियों की छुट्टियों का बड़ा इंतज़ार रहता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को गर्मियों की छुट्टियों का बहुत इंतज़ार रहता है, यार कब जून में जाके छुट्टियां होंगी और 3 महीने खूब इंजॉय करूँगा, खूब हल्ला गुल्ला करूँगा, नानी के घर जाऊँगा, दादी के घर जाऊँगा, अपनी खाला की तरफ जाऊंगा। वो हम सोचते हैं ऐसी बातें, सोचते हैं कि यार ये करूंगा मैं, और वो 3 महीने, वो 2.5-3 माह बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। असल में वो 3 माह होते हैं कि हम ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनों के साथ वक्त गुजारें और ख़ुद को थोड़ा सा ग्रो करें। अब वो जो छुट्टियों के दिन होते हैं ना, वो फारिग रहने वाले दिन नहीं होते, वो सारा दिन क्रिकेट खेलने वाले दिन नहीं होते, वो दिन होते हैं कोई ना कोई स्किल सीखने वाले। ऐसे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, जो 9th, 10th, 1st year, 2nd year में हैं, तो जब भी आपकी छुट्टियां आएँ, आप कोशिश करें कोई ना कोई स्किल सीखें, कोई हुनर सीखें। वो कहते हैं ना कि हुनर हाथ में हो तो बंदा मार नहीं खाता। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, 9th में हैं, 8th में हैं, 10th में हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको छुट्टियां हो गई हैं जी, 3 माह आपका स्कूल कॉलेज बंद रहेगा, तो आपको उस टाइम में कोई ना कोई स्किल सीखें। आप टाइपिंग सीख सकते हैं, आप AI को सीख सकते हैं, आप शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख सकते हैं, अब MS Office की क्लासेस ले सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हमें बहुत काम आएंगी। AI का ज़माना है, AI की दुनिया है, ChatGPT के हवाले से आप सीखें कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको हमने डायरेक्शन देनी है, कैसे उससे हमने बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं, बड़ी ज़रूरी हैं। 04-2111-000-101 हमसे रबते का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। 5:19 हो गए हैं, 7 बजे तक हमारा ये खूबसूरत सा साथ रहने वाला है। अगर आप ड्राइव करते हो मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं दिल से कहूँगा, हैव अ सेफ ड्राइव, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, लाइन और लाइन की खिलाफवर्जी मत कीजिएगा,
और स्पेशली मैं बाइक पे जो सफ़र कर रहे हैं लोग, या जो रिक्शा चलाते हैं, या जो दूध का एक वो टैंकर लेके जा रहे होते हैं, उन हज़रात से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बड़े ध्यान से आप लोग गाड़ी चलाया करें, बड़े ध्यान से बाइक चलाया करें। बाइक वाले हज़रात गाड़ी वालों के अंदर आके ना मारा करें गाड़ी। कोई इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से आ रहा होता है, कोई लाइन लाइन की कोई परवाह नहीं है। आप रोड पर निकलें और आप देखें कि 50-60% लोग जो बाइक पर सफ़र कर रहे हैं वो फर्स्ट लाइन में जा रहे हैं या मिडिल वाली लाइन में वो जा रहे हैं। यार आपका काम ही नहीं बनता कि आप फर्स्ट लाइन में जाएं। फर्स्ट लाइन तो बड़ी फास्ट लाइन होती है यार, लेकिन ये यही चीज़ें हैं जिसमें हम लैग कर रहे हैं, जिसमें हम तेज़ी दिखाते हैं, जिसमें हम जज्बाती हो जाते हैं, और ख़ुदा न खास्ता कोई ना कोई हादसा पेश आता है तो हम फिर परेशान होते हैं, हम फिर दूसरों पे भी ब्लेम देते हैं। लेकिन ये जो बाइक वाले हजरात हैं, ये फर्स्ट लाइन में जब जाते हैं ना, यकीन करें मेरा दिल दुखता है, दिल दुखता है कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखना है जब भी रोड पे आना है, रोड सेफ्टी की सारी मेजर्स को आपने अडॉप्ट करना है, रोड सेफ्टी का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी गाड़ी का ख्याल रखना है। ठीक है जी, ठीक है जी। कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो गया आज हम। राइट भाई जी, हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और गाना भी चलाएँगे। गाना चलाते हैं हम। अच्छा जी, ठीक है जी, चला देते हैं जी, गाना चला देते हैं।

चलें जी, हम ब्लॉकबस्टर चलाते हैं और इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आवाज है जी फारिस शफी और उमेर बट। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आई विल बी राइट बैक। कहीं पर जाएगा, स्टिक हियर, स्टिक अराउंड। यू गाइस आर लिसनिंग एफएम 101।

0: 101. Keep smiling and drive carefully, okay?
1: Oh.

और भाई जी वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आज अली रजा की, आप सुन रहे प्रोग्राम फन ऑन 101। आपसे मेरी मुलाकात रहती है हर जुमे की शाम 5 से लेकर 7 बजे तक। कल हम बात करेंगे वजीर आजम की खसूसी रिलीफ स्कीम पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर सस्ता। इसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना शनाती कार्ड नंबर लिखें, स्पेस दें और अपनी अपने जो सूबे का नाम है वो लिखें, और उसके बाद बल्कि सूबे से पहले आपने अपनी बाइक का नंबर लिखना है। लेट्स सपोज आपकी बाइक का नंबर LHR 123 है, LHR 123 लिखें बगैर स्पेस दिए, और उसके बाद आपने अपने सूबे का पहला हरफ लिखना है। जैसे पंजाब है तो आप P लिखें, और गिलगित बल्तिस्तान है तो आप G लिखें, सिंध है तो S लिखें, हैबे पतूनखा है तो K लिखें, बलोचिस्तान है तो B लिखें। अच्छा, जैसे पंजाब है, पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब है तो P लिखें, उसके बाद आपने स्पेस देनी है। और जो भी आपके पास बाइक है, चिंची रिक्शा है, आपके पास 660 सीसी से नीचे जो गाड़ी है, उसका आपने रजिस्ट्रेशन की डेट लिख देनी है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा ना आपके पास उस गाड़ी का, उस बाइक का, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखी होगी। वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने बगैर स्पेस दिए लिख देनी है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15 नवंबर 2025, तो आपने लिखना है 15/11/2025। ये लिखकर आपने अपने मैसेज को 9771 पर 9771 पर भेज देना है। आपको एक तस्दीकी SMS आ जाएगा और पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप, और आपको 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा। सो ये बड़ा ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव है वज़ीर आज़म की, खसूसी रिलीफ स्कीम है पेट्रोल से रिलेटेड, तो बड़ा ज़बरदस्त स्कीम है। इसमें लाजमी आप रजिस्टर्ड हों और इस सहूलत से, इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। राइट अवे मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और आपके मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत सारे लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर का ट्यून इन करने के लिए हमें और फिर कॉल आई अब्दुल हमीद साहब की। अब्दुल हमीद कह रहे थे प्रोग्राम को सुन रहा हूं और इन्जॉय करूँ, थैंक यू सो मच अब्दुल हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें साजिदा की कॉल आई, साजिदा कहती है मुझे बर्थडेज़ का वेट होता है। ठीक हो गया साजिदा, अपनी बर्थडे का वेट होता है या किसी और की बर्थडे का वेट होता है, ये भी हमें बताइएगा। और इसके अलावा हमें जी कॉल की मोहम्मद शहजाद साहब ने, और कह रहे हैं जी मैं आपको सुन रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमें जी फेसबुक पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद नईम टेलर ने, कहते हैं जी गुड शो प्यारे RJ, क्या हाल है, अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं, इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम।

एम रजा चौधरी सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान गुजर सुन रहे हैं, आदाब अर्ज कहते हैं अली साहब, सुपर्ब माय फेवरेट आज, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग कह रहे हैं जी, आप आ गए हैं और आपकी तबीयत ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप सुनाएं आपका क्या हाल है, ठीक हैं। उज़्मा अजाज हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू सो मच उज़्मा, बहुत शुक्रिया। एम रजा चौधरी हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, जी आया हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, आप हमें सुन रहे हैं। और बहुत सी दुआएं दी हैं जी हमें रमज़ान गुजर ने, और डॉक्टर रेहा अल्ताफ़ साहिबा के लिए वो जल्द शादो आबाद रहें और जल्दी शो करने आ जाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच रमज़ान गुजर, बहुत शुक्रिया आपका।

चलें ये आपको एक गाना सुनाते हैं, गाना सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, सजन दसना, आतिफ असलम और मोमिना मुस्तहसन, दो खूबसूरत आवाजें, एक खूबसूरत गीत, आपकी खूबसूरत समातों की नजर, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए एफएम 101, स्टिक अराउंड, यू आर लिसनिंग एफएम 101।

smiling and drive carefully, okay?

राइट भाई जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की और मैं आपके साथ मौजूद हूँ 7 बजे तक। हमें ऑफर कॉल्स भी आ रही हैं, हम लाइव कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज आपसे हमने पूछा है कि पूरे साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो हमें ज़्यादातर मैसेजेस यही आ रहे हैं कि हमें अपनी बर्थडे का बड़ा इंतज़ार रहता है। बर्थडे से याद आया, मुझे भी एक वक्त में अपनी बर्थडे का बड़ा इंतज़ार होता था। तो यार दिल खुश होता था कि केक काटेंगे, केक खाएंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, और गिफ्ट से ज़्यादा मैं खुश होता था जब मुझे पैसे मिलते थे। मेरी नज़र पैसों पर होती थी, और जब अम्मी या अब्बा कहते थे वो पैसे कहाँ हैं जो तुम्हें सालगिरह पे मिले थे, लाओ ना ज़रा, वो हमारा इतना खर्चा हो गया। सो बहुत सारे लोगों को अपनी सालगिरह का इंतज़ार रहता है, ना जाने क्यों रहता है। एक फीलिंग आती है कि यार अपना दिन है, अपना दिन आ गया है, हैं। और अब तो भाई इतने हम बिजी होते हैं कि बर्थडे विश नहीं कर पाते, या कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी सालगिरह है, तो हम फिर स्टेटस लगा देते हैं टुडे इज माई बर्थडे। फिर सारे मैसेजेस करते हैं, या किसी ने भी मैसेज ना किया हो तो शाम को स्टेटस लगा देते हैं थैंक्स टू ऑल फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। फिर सारे उन्हें याद आता है, वो मैं तो कीता ही नहीं, मैं भी करते हैं फटाफट। फिर वो सारे जब बर्थडे विश करते हैं ना, तो ये भी ये खुशी होती है कि यार मुझे सारे सालगिरह विश करें, या मुझे फलां जगह पे विश किया जाए, फलां ग्रुप में मुझे विश किया जाए, फलां लोगों के सामने मेरी तारीफें की जाए। इंसान है ना, हमें तारीफें सुनने का शौक है। हम चाहते हैं कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, और ये एक फितरी अमल है और एक ये नेचुरल फैक्ट है कि जी हम यही चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, कोई हमारे बारे में बताए कि हम कैसे हैं। अपनी तारीफ सुनना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो प्रदेश के होते हैं अपने कामकाज के सिलसिले में, तो कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि यार कब साल का वो दिन आएगा, या कब साल डेढ़ साल दो साल बाद वो हमें मिलने आएंगे। तो कुछ लोगों का एक वो माइंडसेट होता है कि यार फलां डेट जो है ना वो बाज़ेहन में, फलां महीना जो है वो बाज़ेहन में रखते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारी जाते हैं किसी की यादों में, तन्हाई में, कभी रो के, कभी हंस के, कभी किसी से बात करके, कभी अपने दिल का हाल किसी को सुना के, तो वो उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही होती है, और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उस लम्हे का, उस पल का, कि जब हमारा अपना जो हमसे दूर है वो आएगा और कब हम उससे मिलेंगे। हमें रिमशा ने ऑफर कॉल किया, थैंक यू सो मच रिमशा कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। कहती है मैं शो सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और आज भी ऐसे ही लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम आपको सुना था। चलिए जी, आपको एक और गाना सुनवाते हैं, गाने को सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ये गाना जितने लोग ट्राइव कर रहे हैं उनके नाम, और जितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये गाना उनके नाम। मुझे आरजे अली रजा कहते हैं, बड़े प्यार और बड़े मान से कहते हैं। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, प्रोग्राम फन ऑन 101 है, आपसे मेरा साथ रहता है हर जुमे की शाम 5 से लेकर 7।

0: drive carefully, okay?
1: Okay.

मेरी मुलाकात रहती है हर जुमे की शाम 5 से 7 बजे तक। आज हमने आपसे पूछा कि पूरे साल का वो कौन सा दिन है जिसका आपको शिद्दत से इंतजार रहता है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे वो कॉलेजेस और स्कूल में एक होता है ना सालाना एक स्पोर्ट्स डे होता है, मुझे उसका बड़ा इंतज़ार रहता था। मैं चूँकि बैडमिंटन का प्लेयर था तो सारा साल हम बैडमिंटन खेलते थे और बस उसकी प्रैक्टिस करते थे। यार स्कूल कॉलेज का जो या स्कूल का जो फाइनल इवेंट होगा ना, उसमें हमने परफॉर्म करना है, उसमें हमने अच्छा परफॉर्म करना है, उसको विन करना है। सुबह 2011-12 की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि यार कब वो हमारा फाइनल इवेंट होगा। तो जब वो फाइनल इवेंट हुआ तो मैं क्रिकेट की टीम में भी था और बैडमिंटन की टीम में भी था। सो पहले हमारा हुआ क्रिकेट का मैच, मैं कहा जी मैं क्रिकेट में भी हूँ। अच्छा, क्रिकेट में सीन ये हुआ कि हम टॉस जीत के और बैटिंग की और मैंने कहा यार मुझे ओपनर भेज दो भाई, मेरा बैडमिंटन का भी मैच होना है, मुझे क्रिकेट में आप ओपनर भेजो। मैं ओपनर गया, मैंने 2-4 शॉटें लगाई, को 12-13 रन बनाए और आउट होके मैं बाहर आ गया। जैसे ही आउट होके बाहर आ गया तो मेरे जो कोच थे बैडमिंटन के, मुझे कहते अली जल्दी आओ यार, आपका मैच है बैडमिंटन का। मैं कहा जी सर मैं आया। हाय हाय हाय, क्या वो दिन था, क्या ज़बरदस्त दिन था वो। अच्छा, बैडमिंटन खेला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कॉलेज लेवल की थी उसको विन किया। 2012 की बात है। और फिर मुझे वेट रहा कि फाइनल वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो हमारी थी फाइनल्स में, उसका मुझे वेट रहा। और वो सेरेमनी जब आई और मुझे जब प्राइज़ मिला, जब मेरा नाम पुकारा गया, और क्या ही बात, क्या लम्हा था, क्या लम्हा था। अरे किसी की अपनी अचीवमेंट्स होती है ना लाइफ में, और उन अचीवमेंट्स को इंजॉय करने का भी एक दिन होता है। वैसे तो सारे दिन ही होते हैं, डेली रोज़ ही इंजॉय करनी चाहिए उन अचीवमेंट्स को। अच्छा, हमें मैसेज भेजा है जी सजाद ने, कहते जी मैं आपको सुन रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच सजाद, बहुत शुक्रिया। हमें मुरसलीन सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमें सुन रहे हैं अली अनवर सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, कहते जी लाहौर से आपको सुन रहा हूँ। रमज़ान गुजर हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। आरजे वसीम को मोहब्बतों भरा सलाम कह रहे हैं जी। मोहम्मद नईम टेलर जी, पहुँच गया आपका सलाम जनाब। मद्दी महमूद सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम जलालपुर पीरवाला, थैंक यू सो मच जी, आप हमें जलालपुर पीरवाला से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रमजान गुजर साहब कहते हैं अली रज़ा साहब आप बहुत औसम ब्लोसम लग रहे हो, अपनी नज़र उतार लेना। ठीक है जनाब, हाय हाय हाय। फैजान सुन रहे हैं जी लाहौर से, कहते हैं जी हम आपको सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गुल यासीन नाज सुन रहे हैं जी, बहुत सारे लिसनर्स इनके साथ मुझे सुन रहे हैं और सबको इन्होंने प्यार भरा, खलूस भरा, मोहब्बत भरा सलाम भेजा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गुल यासीन नाज। फजल सुन रहे हैं जी, अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सुन तो रहे हैं यार, मुझे मेरे टॉपिक पे भी बताएं ना, अभी कभी मुझे मेरे टॉपिक पे जो फेसबुक पे लोग सुन रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि पूरे साल में आपका वो कौन सा दिन है जिसका आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता है। ज़रा मुझे भी पता चले ना कौन कौन अभी एक्टिवली मुझे सुन रहा है और कौन मुझे इस पे जवाब देगा। मैं फेसबुक के मैसेज शामिल कर रहा हूँ और देखता हूँ किस किस ने मुझे पोस्ट पर जवाब दिया है। अच्छा, हमें रजा सुन रहे हैं, कहते हैं जी मुझे अपने क्रिकेट मैच का बहुत इंतज़ार रहता है, वाह वाह क्या बात है। नाइला सुन रही हैं, कहती हैं कि जी मुझे अपनी सालगिरह का बहुत इंतज़ार रहता है, सही सही ठीक हो गया, बस ज़्यादा लोगों को अपनी सालगिरह का इंतज़ार रहता है। हमें हुसनैन सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। यास्मीन सुन रही हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी शुक्रिया। चलें एक गाना चलाते हैं, और गाने की हमें फरमाइश की थी वैसे किसी ने, इस गाने की हमें, हाँ हमें शहजाद साहब ने फरमाइश की थी,
और ये गाना ऑलरेडी हमारी क्यू लिस्ट में था, तो मैं इस गाने को प्ले कर रहा हूँ। मलकू की आवाज़ है, गाना बड़ा खूबसूरत है, इस गाने को सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा। मैं आपके साथ साथ मौजूद हूँ टिल सेवन।

All IG listeners, welcome back once again. This is FM 101.8 Pakistan Lahore. हमें ऑफर कॉल आई है जी रिमशा की. थैंक यू सो मच रिमशा कॉल करने के लिए. हमें आशिका खान ने ऑफर कॉल की. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए. कहती है मैं आपको सेकंड टाइम सुन रही हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सुनने के लिए. बहुत सारे लोगों को ना इवेंट्स का इंतज़ार रहता है और कुछ लोगों को ना न्यू ईयर का बड़ा इंतज़ार रहता है और स्पेशली अब लाहौर वालों को बसंत का बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि बसंत भी अनाउंस हो चुकी है मार्च के महीने में 2027 में. 2026 में भी बसंत हुई और खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब इंजॉय किया. अब 2027 में भी बसंत का अनाउंस कर दिया गया है ज़िले हुकूमत की जानिब से. तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक इनिशिएटिव है, बड़ा ज़बरदस्त सा ये काम है जिसे लाहौर वाले इंजॉय करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं. और जितनी भी प्रिकॉशनी मेजर्स हैं जो हुकूमत आपको बताती है, जो ज़िली इंतज़ामिया आपको गाइड करती है, आपको सेफ्टी बैंड दिए जाते हैं, सेफ्टी रॉड्स दिए जाते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए सारे वो काम किए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. और 2026 की जो बसंत थी बड़ी कामयाब रही, बड़ी ज़बरदस्त रही. लाहौरियों ने बड़ा ज़बरदस्त हुकूमत का साथ दिया. सो अगले साल जो बसंत होने जा रही है उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं. जो बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको इजाज़त मिलना शुरू हो गई है. उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो जो वक्त गुजरता जाएगा इसमें और इसके प्रोसेस में और नए नए मराहिल आते जाएंगे, नई नई चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी. और मार्च के महीने में ये बसंत है. सो मैं बात कर रहा था कि लाहौरियों को अब बसंत का भी बड़ा इंतज़ार रहता है और न्यू ईयर का बड़ा इंतज़ार रहता है. लाहौरियों को 14 अगस्त का बड़ा इंतज़ार रहता है और जितने भी हमारे ये कौमी डेज़ होते हैं, जितने भी नेशनल डेज़ होते हैं और नेशनल जितनी भी हमारी हॉलीडेज़ होती हैं उनका भरपूर इंतज़ार रहता है. भरपूर तरीके से उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको हम इंजॉय करते हैं और उनको हम उस तरह से मनाते हैं जैसे उनको मनाने का हक होता है.

हमें सर जी सुन रहे हैं वंस अगेन, कहते हैं जी मैं आपको सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और हमें मारिया सुन रही हैं जी लाहौर से, भाई मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मारिया। मोहम्मद अमीन हमें सुन रहे हैं ड्राइव करते हुए, और थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए।

चलें ये गाना चलाते हैं आपके लिए और हमारा जो ओल्डी गोल्डी चंक है उसको हम ऑन करते हैं मैडम नूर जहाँ की खूबसूरती आवाज़ में। ये खूबसूरत गीत है, इसको आप सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये गाना तमाम हमारे प्यारे प्यारे से पुराने पुराने से लिसनर्स के नाम, और ओल्डी गोल्डी चंक है जी, इसको खूब इंजॉय कीजिएगा। मैं भी आपके साथ इंजॉय कर रहा हूँ। ये है जी हमारा आज का गाना, आंदा तेरे लिए रेशा। तमाम हमारे प्यारे प्यारे से पुराने पुराने से लिसनर्स के नाम, और ओल्डी गोल्डी चंक है जी, इसको खूब इंजॉय कीजिएगा। मैं भी आपके साथ इंजॉय कर रहा हूँ। ये है जी हमारा आज का गाना।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुने एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज़ है आरजे अली रजा की। आप सुने प्रोग्राम फन ऑन 101, आपसे मेरी मुलाकात रहती है हर जुमे की शाम 5 से 7 बजे तक। आज के प्रोग्राम में आप सबको एक दफा फिर से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी एनू कहते हैं। आप कहीं भी हमें सुन रहे हैं, ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं, या अपना कोई काम करते हुए हमें सुन रहे हैं, कोई अपनी किसी भी मसरूफियत में हमें सुन रहे हैं, या वेले बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, तो आप सबको हम खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। आज आपसे सवाल ये पूछा है, क्या पूछ बैठा हूँ आपसे, आप कुछ बता नहीं रहे मुझको। आपसे पूछा है कि पूरे साल में वो कौन सा ऐसा दिन होता है जिसका आपको पूरा साल इंतज़ार रहता है। 04221100101 हमसे रब्ते का नंबर है। पहली कॉल लेने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101। कैसा जी, सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
1: बिल्कुल ठीक ठाक।
0: आपकी कॉल मिल गई या फिर पहली है आज?
1: जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत लकी।
0: चलें, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगी आप?
1: ये देखें जी, दिन तो बहुत से आते रहते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन मुझे जो ना ईद का दिन का इंतजार बहुत रहता है।
0: वाह वाह वाह, बकरा ईद का, बकरा खाने का इंतजार रहता है आपको?
1: बकरा खाने का भी, बकरा लाने का भी, जिबा करने का, उनको देखती हूँ ना मैं जिबा को।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या
1: तो ये चीजें सारी जो ना उसको जितने दिन भी रहता है ना वो चारा वगैरह डालना बहुत शौक है मुझे।
0: वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है।
1: तो अच्छा मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ हफ्ते के बाद एक दिन ही क्यों, दो कम से कम दो दिन तो शो किया करें ना। लेकिन इतना अच्छा शो,
0: आई होप मैनेजमेंट सुन रही हो।
1: नहीं, कम से कम दो दिन आप आया करो, ऐसा मैं पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। वैसे अच्छा। भी है ना, वन वन पे आरजे कम कम ही आ रहे हैं।
0: मैं तो आ रहा हूँ।
1: हाँ, आप आते एक हफ्ते के बाद
0: जी,
1: तो वन वन सुना सुना बिल्कुल हो रहा है, लग रहा है, तो आना चाहिए।
0: चले, सब अच्छा, सब अच्छा होने को है, सब अच्छा होने को है। मैं आ रहा हूँ, बाकी आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और आर्टिस्ट भी।
1: आप सुने ना, अभी गाना चल रहा था ना मलकू का, तो मैं एक दफा ना बाहर बाइक पे जा रही थी अपने नियो के साथ।
0: ठीक है।
1: तो उस वक्त ना उसके बाइक के पीछे लिखा हुआ था रूल तो गए हैं पर
0: चस बड़ी आई है।
1: और यकीन कर मुझे इतनी हंसी आई, इतनी मैं हंसी, इतनी हंसी बहुत। अब मुझे पूछ रहे कि क्या हो गया तुझे, क्यों हंस रही हो? तो मुझे वो जो लिखा हुआ था रूल तो गए
0: उस पे हंसी आ रही थी,
1: उस पे हंसी आ रही थी। तो ये गाना भी चल रहा था तो मैं साथ साथ फिर हंस रही थी।
0: बिल्कुल सही,
1: याद मुझे आ गया ना। बहुत अच्छा शो हमेशा की तरह, बहुत अच्छा।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
1: बाकी जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही, जिनमें अनीला है, रुजवाना है, रुबीना जट्टी है, अली भाई है, इन सबको आती है बुर्जी से फरी, उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो गाने की मेरी मैच में नहीं करी क्योंकि आप खुद ही अच्छे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: हाँ जी, जो नाम रह गए सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे पास शमीमा आपी, जिन्होंने पहली कॉल की और हमसे बात करी थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, मैं लाहौर से रिमशा, आप बिल्कुल ठीक ठाक है मुझे बताएं।
0: जी रिमशा, आप ठीक हैं?
2: जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी रिमशा, क्या कहेंगे
2: मुझे ना आपके लाइफ में ना भाई, सबसे ज्यादा तीन दिनों का सबसे ज्यादा।
0: अच्छा, तीन दिन, वाह बताएं।
2: जिसमें पहला ये है कि मुझे बहार के मौसम का सबसे ज्यादा वेट रहता है।
0: अच्छा ठीक है।
2: जिसमें रिमझिम होती है और पौधे को फूटने का दिन होता है, उनको देखने का मुझे बहुत दिल करता है। और
0: सही।
2: दूसरा ये कि मुझे छोटी ईद का सबसे ज्यादा वेट रहता है, जिसमें मेरे कपड़े बनते हैं और ईदी मिलती है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: और तीसरा ये कि यानी जिस दिन मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलती है ना, उस दिन का मुझे बड़ा वेट रहता है।
0: उस दिन तो आप अच्छा सा खाना भी बनाती होंगी।
2: उस दिन तो मैं उनको बहुत मक्खन लगाती हूँ।
0: सही सही सही, बिल्कुल ठीक है,
2: क्योंकि मुझे मेरी पॉकेट मनी मिलनी होती है ना।
0: सही सही सही, बिल्कुल सही, ठीक है रिमशा। और शो एंजॉय कर रही हैं आप?
2: क्या
0: दे, शो एंजॉय कर रही हैं आप आज का?
2: जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना कि आप मुझे उस तरह की फीलिंग सारी जिस तरह आप पहली मतलब शो किया करते थे उसी तरह
0: बिल्कुल ठीक है।
2: आज भी आपकी वही स्पीड है, वही अंदाज है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: और मेरा जब भाई शहजाद अंकल बर्सी पर अंकल मारिया आप या नीला आपकी साजदा जुलेखा और फरजाना आपकी को मेरा सलाम बहुत बहुत और सभी सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये थी जी हमारे पास रिमशा जिन्होंने हमें कॉल की, थैंक यू सो मच रिमशा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी हमें सुन रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब लाहौर से, और अमीन साहब हमारे बड़े अच्छे लिसनर्स बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और गाने की भी फरमाइश कर दी है जी। वाह वाह क्या कहने जी, अमीन साहब आपने गाने की भी फरमाइश कर दी, आप गाने भी सुनते हैं, चलें आपके नाम पर गाना करते हैं। मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, अमीन साहब ये गाना आपके नाम और आपके साथ अगर कोई भी सुन रहा है तो आपके उस दोस्त उस फैमिली मेंबर के नाम। वैसे नजर ना मिलाया करें किसी से, हुनो उम्र नहीं रही।

0: वाह वाह, क्या गाना है जी, जबरदस्त गाना, इसको हम अपने बीजीएम में रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम।
1: मुझे बड़े प्यार से कहते हैं साजिदा जी।
0: साजिदा, क्या हाल है आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ साजिदा, आप बताओ क्या चल रहा है?
1: हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक, और मैं चाय पी रही हूँ, आप पियेंगे चाय?
0: चाय ना ही पूछो चाय का।
1: चाय
0: पिए आप चाय। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगी आप?
1: हाँ जी, मैं तो एक कहूंगी, एक बर्थडे का बहुत ज्यादा इंतजार होता है, बर्थडे आए तो मजा आता है, और सबसे ज्यादा मुझे ना इंतजार होता है रमजान शरीफ का, छोटी ईद का, सहरी इफ्तारी में बहुत ज्यादा मजा आता है, अलग अलग होता है मजा। रमजान ना इतना, यानी ईद के बारे में ना सोचते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक वो एक अलग ही मजा,
0: अलग ही वाइब्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे।
1: हाँ जी बिल्कुल, और मुझे बहुत ज्यादा ईद का इंतजार होता है, रमजान शरीफ।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: मुझे ना क्यों इंतजार है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, रोज पकौड़े खाती हूँ।
0: समोसो पकौड़ों का इंतजार होता है, फिर तो समोसो पकौड़ों का इंतजार होगा ना, सीधी बात करो।
1: नहीं वो तो एक
0: हमें ये इधर उधर की बातें सुना रही हो और बाज समोसे पकौड़ों की है।
1: नहीं वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, रोजा रखने का एक वो, बाकी शहरी अफ्तारी में ज्यादा मजा आता है।
0: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल
1: रमजान जल्दी आ जाए।
0: ठीक है ठीक है,
1: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं। अच्छा, मैं सलाम कहना चाहूंगी
0: को,
1: अनिला जी को, और शमीमा जी को, बोधी जट को, बसी वाले भाई को, उस्ताद जीरा को, अनिल ड्राइवर को, और शहजादली लाडला, एहसन खान, कोयते वाले तारिक, छोटे तारिक को, और जहाँ जहाँ तक मेरी आपकी आवाज आ रही जो रह गए, उन सबको भी बहुत ज्यादा
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम
1: अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 04211100101 हमसे रब्ते का नंबर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
2: मैं विस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: जी विस्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
2: जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सारी बातें तो सारे कॉलर ने कर दी हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ।
0: नहीं अभी सारी नहीं की, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो बहुत सी बातें, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं।
2: अच्छा
0: जी।
2: अच्छा, मुझे टूर्स और ट्रिप का इंतजार रहता है।
0: ठीक है,
2: सारा साल, क्योंकि हर साल हम जाते हैं।
0: किस मंथ में आप जाते हैं?
2: मतलब ये सर्दियों के मौसम में जाते हैं, अभी तो सितंबर का चल रहा है ना, तो जब अक्टूबर नवंबर में इस मौसम में ज्यादा ठंड में भी नहीं निकलते।
0: हाँ,
2: तो फिर ठंड अच्छा भी बहुत लगती है।
0: हाँ, ठंड तो फिर लगनी है।
2: और गर्मियों में सर्दियों का इंतजार होता है, जब सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ जाए तो फिर गर्मियों का इंतजार होता है। इस तरह इंतजार लगे रहते हैं
0: जिंदगी में। जिंदगी इंतजार का ही नाम है, इंसान हर वक्त किसी ना किसी के इंतजार में बैठा रहता है।
2: ऐसी है। और ना आपके, मतलब आप एक सॉन्ग प्ले करेंगे आतिफ असलम का, आप अभी कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, मतलब थोड़ी
0: वो मैंने चला दिया, ओल्डी गोल्डी मैंने चला दिया।
2: मैं ओल्डी गोल्डी की इससे बात याद है कि आतिफ असलम का एक थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग है।
0: कौन सा?
2: वो वाला जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए,
0: तेरे लिए
2: सजाई मैंने तेरे लिए।
0: चलें चलें, जरूर टाइम मिलता है जरूर उसको हम प्ले करेंगे। ठीक है,
2: मेरी बात सुने
0: क्या? मैं जरूर प्ले करता हूँ, सुनाए बात।
2: अच्छा, मेरी बात सुने। एक और गाना है वो, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के ज्यादा भी होगा तुम्ही से। ये आतिफ असलम का सॉन्ग है।
0: मैं तो कहता हूँ ये गाना आप ही सुना दे हमें।
2: नहीं, मुझे बस थोड़ा थोड़ा ही आता था जो मैंने आपको सुना दिया।
0: ठीक है,
2: और ना ये आपने गाना जरूर प्ले करना है, वरना फिर मैंने नाराज हो जाना और फिर आपको इंतजाम करना पड़ना एक फ्लावर और एक चॉकलेट का।
0: नहीं आपने नाराज बिल्कुल भी नहीं होना, हम गाना जरूर प्ले कर देंगे। ठीक है,
2: ओके, थैंक यू, अल्लाह
0: ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, पूरे साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको शिद्दत से इंतजार रहता है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम
3: और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
0: वालेकुम सलाम पाकिस्तान। रमजान गुज्जर साहब आ गए हैं।
3: सर मैं ओनियर हूँ कि ओफिर हूँ?
0: आप ओनियर हैं जनाब, ओनियर हैं हम, ओफिर आपके कॉलेज
3: ने दी खबर कि वो आएंगे रात को। कासद ने दी खबर कि वो आएंगे रात को, इतना किया चरागा के घर ही चला दिया।
0: वाह वाह वाह वाह क्या बात।
3: बहुत ही दुआओं के साथ नंबर वन फैमिली रेडियो स्टेशन फॉर द नेचर ब्रॉडकास्टिंग विद लाइव लाहौर स्टूडियो के सभी सुनने वालों को, हिट एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के सभी दोस्तों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात, गुड इवनिंग 101 कहता है लाहौर और उसके मजाफात में। हॉनियर काल का वक्त हुआ जाता है, टाइम कम काबला सख्त और टाइम खत्म होने में तकरीबन कोई आधा घंटा बाकी है। जल्दी जल्दी आए और काल मिलाए सुपरहिट आरजे अली रजा साहब से, दिल की बातें करें और उनकी दिल की बात सुने।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जब आपकी कॉल आती है ना तो मेरे जितने पेंडिंग काम पड़े होते हैं ना, मैं वो करने लग जाता हूँ।
3: बड़ी मेहरबानी,
0: क्योंकि मैंने पता होता है कि जनाब हराने कोई एक अद्धा मिनट ला ही जाना।
3: एंट्री मार दी, फुल वाली, हम वाली और हमारी ये फैमिली है, जिसमें फैमिली और उन सब का और वन वन की फैमिली का और जिंदन का सबका बेहद शुक्रिया। काम जैसे
0: आपको वेलकम करते हैं जी, वेलकम करते हैं। मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
3: जी सर बिल्कुल सुन रहा हूँ।
0: क्या सुना, क्या सीखा आज के प्रोग्राम से ये बताओ मुझे।
3: सर जी ये सीखा है कि अमीर का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। आप आ गए हैं ना, इंशाल्लाह रहे अल्ताफ साहब भी आ
0: गाड़ी से ही होती है अटकी।
3: सर ये अर्थ करूंगा जी, मुझे 2027 और 28 में मेरी दो बेटियां उसकी डिग्री मुकम्मल होने वाली है।
0: वाह वाह वाह वाह,
3: मैं इंतजार कर रहा हूँ दिन गिन गिन के, गिन गिन के। ये मेरे लिए बहुत बहुत बहुत बड़ी एक
0: जबरदस्त,
3: कौम के लिए मेरे लिए बड़े फख्र का दिन होगा कि मेरे बच्चे बीएससी की डिग्री अपने हाथ में उठाएंगे।
0: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त,
3: क्योंकि मैं तो पढ़िया नहीं, वो पढ़ गए ने। चलो चलो
0: चलो, तुसी पढ़े नहीं लेकिन तुसी पढ़ा लिया।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, ये 101 का क्रेडिट है, ये आपकी हौसला अफजाई है, ये आपका तावन है कि आप मोटिवेशन देते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ इतना बताऊंगा। और उसके बाद सर जो सबसे आम है कि उस शो का इंतजार करूंगा जिसमें डॉक्टर रेहल साहब साहब और आप कंबाइन शो करेंगे। पता नहीं वो ईद वाले दिन आना है या पता नहीं करूंगा।
0: जल्दी आ जाएगा, जल्दी आएगा।
3: और तीसरा और आखिरी सर, मेरी 25 साल सर्विस का लेटर मुझे मिलने वाला है और उसमें मुझे 50,000 के बॉन्ड मिलेंगे और फुल एनर्जी वाला तकरीबन 2 से 3 महीने है।
0: अच्छा, 50,000 में से मेरा कितना हिस्सा होगा?
3: सर जी उसमें ताले पकौड़े, समोसे, जलेबियां, मछली।
0: नहीं, ये जो आखिरी बात आपने की है ना वो कुछ समझ में आती है, उससे पहले वाली चीजें नहीं मुझे समझ में आती।
3: चलो मछली सर जी पक्की,
0: चले चले
3: ठीक है। जो जो लाओगे सर जी इंशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच जी, रमजान गुजर साहब बहुत शुक्रिया।
3: अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे जी हमारे साथ रमजान गुजर, थैंक यू सो मच रमजान गुजर कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
4: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
4: एहसन खान बात कर रहा हूँ।
0: जी एहसन खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
4: अल्लाह के शुक्र है
0: जी। क्या कहेंगे?
4: थैंक
0: यू सो मच।
4: पहले तो रमजान अनवर साहब की जो बेटियां हैं उनकी जिस दिन डिग्री वो हासिल करेंगे तो वाकई ये एक बहुत ऐसा लम्हा होता है जिसको वालदैन ही महसूस कर सकते हैं और खुशी की इंतहा होती है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो उनके बहुत अच्छा लगा।
0: तो
4: आज इन बच्चियों के नसीब अच्छे करें,
0: आमीन, आमीन।
4: अच्छे नंबरों के साथ डिग्री हासिल करें,
0: आमीन आमीन।
4: एक लिसनर की अगर बच्चियां इतनी पढ़ाई चढ़ाई करते हैं
0: जी जी,
4: अच्छा अच्छा मुस्तकबिल तैयार हो रहा है
0: बेशक।
4: मैं अपनी बात करूँ
0: जनाब,
4: मुझे यकीन एक की जो ईद उल फितर होती है ना, वो वाला दिन पूरे साल भर मैं उसका इंतजार करता हूँ।
0: वाह वाह जबरदस्त,
4: क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा होता है कि हम जो 20-25 घर है ना, हमारे परदादा की औलाद जो एक ही जगह पे बैठी हुई है, वो सारे हमारे घर में इकट्ठे होते हैं।
0: सही,
4: क्योंकि हमारे दादा जो थे वो भाइयों में छोटे थे तो वो सारे लोग उनको मिलने आया करते थे, तो वो अभी तक रीत चल रही है। तो वो जब हम सारे मेरे कजन, मेरे चाचे, ताए सब इकट्ठे होते हैं ना
0: जी जी,
4: तो यकीन जानिए कि एक ऐसा समा सा होता है, बंदा वहाँ पे
0: सच में ईद का समा होता है।
4: اصل میں نا وہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یقین جانی میں ان کو نا الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. جب سارے آتے ہیں اور پھر
0: سمجھ رہا
4: ہوں مرد آتے ہیں سارے, یعنی کہ ہمارے وہ فیمیل جتنی ہوتی ہیں وہ بھی تکلی ہوتی ہے, مرد بھی تکلی ہوتی ہے, وہاں پہ کھانا پینا ہوتا ہے اور ایک بہت ہی یعنی کہ انتظار رہتا ہے اس لمحے کا. اور جب ہم ادھر لاہور میں ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حال صورت میں ادھر پہنچنا ہے گھر, اور
0: بالکل ٹھیک
4: ہے جو سارے مہمان آنے ہیں ان کو ویلکم کرنا ہے.
0: بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک.
4: اور جتنے ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں
0: تھینک یو سو مچ,
4: میرا سلام اور
0: تھینک یو سو مچ
4: چاہتے ہیں ان کے لیے بھائی معذرت. اور رضا بھائی سن رہے ہیں, آج ہی میری کوشش ہوگی کہ میری کال کے بعد ان کی کال مل جائے.
0: ضرور ملے گی, ضرور ملے گی جی, بالکل ملے گی. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ, بہت شکریہ.

0: Free socks. And now you're tuned into
1: FM 101.
2: Smile and dial 111-111 FM.
3: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। यार बड़ा मज़े का गाना था, थोड़ा थोड़ा प्यार। काफ़ी अर्से बाद मैंने ये गाना प्ले किया और फरीहा की वो खूबसूरती आवाज़, जनाब क्या ही कहने। अस्सलाम वालेकुम लिसनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम
4: जी अली रज़ा भाई, क्या हाल है? ठीक,
3: मैं जनाब बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं?
4: अदरीस बात कर रहा हूँ, लाहौर सब्ज़ार से।
3: अदरीस लाहौर सब्ज़ार से जी। अदरीस क्या करते हैं आप?
4: मैं कुछ नहीं करता।
3: आप कुछ नहीं करते तो यार, आप कुछ नहीं करते, आप कमाल करते हैं।
4: हाँ जी, अगर मैं आपके टॉपिक बात करूं, दिनों की बात करूंगा
3: जी,
4: तो मंडे वाले दिन का इंतजार होता है।
3: नहीं, हमने पूछा साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको
4: इंतजार? मैं एक हफ्ते के दिनों की बात।
3: अच्छा, हफ्ते के दिन की बात जी, बताएं।
4: के मंडे वाले दिन वसीम साहब का इंतजार होता है। आज वसीम साहब,
3: ठीक है।
4: मंडे और मंगल वाले दिन मुझे शिवा मलिक का इंतजार होता है।
3: अच्छा,
4: बुध वाले दिन आरजे डॉग्स का होता है,
3: ठीक है।
4: और जुमेरात को भी आरजे डॉग्स का,
3: ठीक है।
4: और हफ्ते वाले दिन वो क्या नाम है उनका, जैनब अरशद,
3: ठीक है।
4: जैनब
3: देखा ना, जुमा निकाल दिया ना आपने बीच में से, मेरा तो इंतजार ही नहीं होता किसी को।
4: नहीं, जुम्मे का आप
3: देखो,
4: आपका नाम लेना भी जरूरी, आपसे तो बात हो रही है ना।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है,
4: आपको पता चल जाना चाहिए कि आपसे बात हो रही है, आपका इंतजार है, तो सुन रहे हैं प्रोग्राम,
3: ठीक है जी। और बताएं, इतवार को किसका इंतजार होता है?
4: और छठे वाले जो गुलाब अली साहब,
3: आये हाय हाय, उस्ताद मोहतरम का, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात।
4: और साल में साल के बाद मेरी दो बेटी है, उनकी बर्थडे का मुझे इंतजार।
3: माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, सलामत रखे उनको।
4: उनकी तैयारी के लिए मुझे फिक्र होती है, बस कुछ करना है बस।
3: बिल्कुल ठीक है।
4: इसके अलावा ना मुझे अपनी बर्थडे का इतनी टेंशन होती है, ना बीसीएस की, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है।
3: ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
4: बहुत अच्छा प्रोग्राम, सब सुनने वालों को मेरा सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।
4: ओके जी,
3: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 04221100101 हमसे रابطے का नंबर है, कॉल मिलाए ना, हमसे बात करें ना। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, अली भाई कैसे हैं आप?
3: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन है मेरे साथ?
5: जी लाहौर से इरम बात
3: की। जी इरम लाहौर से, जी इरम क्या कहेंगी आप?
5: जी आप टॉपिक पे बात करेंगे तो टॉपिक पे इंतजार ईद का और माह रमजान का होता है बस।
3: अच्छा, ईद पे क्या करती हैं आप, क्या स्पेशल करती हैं ईद पे?
5: ईद पे बंदा घूमने फिरने जाता है।
3: अच्छा,
5: रिश्तेदारों के घर में जाता है, या फिर घूमने पार्क में जाता है।
3: आप रिश्तेदारों के घर जाती हैं या उनको भी अपने घर बुलाती हैं?
5: नहीं, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, अच्छा लगता है।
3: जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है वाकई।
5: और हाँ जी, और बाकी विस्मा की बात से मैं एग्री करते, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, सर्दियों का इंतजार बंदे को इसलिए होता है, देखो अभी गर्मी होती तो बंद को बिजली का इंतजार है, कब लाइट आएगी तो कब पंखा चलाएंगे, अब सर्दी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट की तो कोई मसला नहीं होता सर।
3: फिर भी मसले तो होते ना, बंदा कहता है यार सर्दी मुझे लग रही है, यार बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कंबल लेके आओ, रजाई लेके आओ, यार आग जलाओ, हीटर ऑन करो, ये सारी चीजें भी तो होती है ना।
5: हाँ जी, ये तो होता है, लेकिन वो पंखे वाला मसला तो नहीं होता, बस रजाई लो तो सो जाओ।
3: और फिर सुबह उठा नहीं जाता सर्दियों में, ये भी तो बात है ना।
5: ये बात भी है, लेकिन जी बस धूप का इंतजार होता है, कभी कभी धूप नहीं निकलती, बस धूप का इंतजार,
3: धूप में बैठ के वो किन्नू खाना, माल्टे खाना, आया है
5: जी माल्टे, हाँ ये अच्छी बात है, या इसका भी इंतजार होता है।
3: हाँ,
5: ये तो हमारे फेवरेट है,
3: बिल्कुल जी, सबके फेवरेट है।
5: हाँ तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सब चाहता रखे, सब सुनने वालों को सलाम,
3: थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 04 2 111 0101. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام, خوش آمدید.
3: کال میں نے لینی نہیں تھی, پھر لے لی میں نے, کہا مرضا ہی ہوگا.
2: میں یار بڑی بڑی خجل خوار ہو رہا تھا, میری کال تو نہیں لگنی کی نہیں لگنی.
3: دیکھ لیں آپ کی
2: میری دعائیں چل پڑی ہیں, میری دعائیں اب عرش کی جانب, اب تو جلدی سے میرے ہونے کی تیاری کا.
3: اوئے ہوئے ہوئے کیا ہوا,
2: سارے انتظار ہر چیز کا ہی ہوتا ہے, جو مجھے زیادہ انتظار ہوتا ہے, جو انتظار ہے تو کچھ انتظار ایسے ہیں وہ اسی ٹائم پورے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مجھے انتظار ہے بہت سال بعد ہی ہوتا ہے, ون ون کی سالگرہ ہوتی ہے نا, تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ مجھے انوائٹ کریں سبھی آج سے ملاقات بھی میری ہو جائے. تو کافی دفعہ آ بھی چکا ہوں, مل بھی لیا. تو ایک انتظار ہے اللہ کے گھر دیکھنے کا, وہ ہر بندے کو ہے ایز اے مسلم, تو وہ اللہ ان شاء اللہ پورا کرے گا. ایک انتظار جو میرا ابھی رہتا ہے نا, وہ اللہ پورا کرے گا, جو مجھے خوشی ہوگی کہ میں جو گراؤنڈ چھوڑ کے آیا ہوں نا کرکٹ کے, جو کرکٹ کو میں نے بائے بائے کیا تھی اپنے گاؤں سے یا ویسے کلب لیول سے, میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا وہاں شروع کرے آگے اپنی چیلنج پوری کر.
3: زبردست جی زبردست,
2: کیونکہ اس سے میں یہ ہوگا کہ میرے گاؤں کا نام ہوگا, میرے ضلع کا اور میرے کلب کا نام روشن کرے گا میرا بیٹا. لیکن اس کی ٹریننگ جاری ہے تو, لیکن تنقید ہوتی ہے اس کی, مما کہتی ہے لے تو بھی پیو ہوتے جاویں, ساری دہڑی کرکٹ ہی کھیلنی بات.
3: صحیح صحیح, تنقید تو پھر ہر بات میں ظاہری بات ہے,
2: تنقید اگر تنقید نہ ہوگی تو ہم آگے کیسے جائیں گے, آگے کیسے بڑھیں گے.
3: تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, ویسے
2: تنقید برائے اصلاح تنقید کی دل آزاری والی نہیں ہونی چاہیے.
3: جی جی بالکل,
2: اچھا کریں, اچھا بولیں, اچھا لکھیں, کسی کو موقع دیں. کیونکہ اب ہم ریڈیو پہ آئے تھے نا, ہم جب نئے نئے میں آیا تھا تو مجھے بھی کسی نے چانس دیا تھا بولنے کا, تو الحمد للہ آج اللہ نے عزت دی ہے. تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے ادھر کا نا کوئی نیا ٹیلنٹ لے کے ہوں, نئے لسنر کو لے کے ہوں, الحمد للہ کافی زیادہ میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں.
3: زبردست,
2: ان بچوں کی اسٹڈیز میں کامیابی کے لیے والدین دیکھ رہے ہیں, تو کوشش کریں. علی بھائی ایک بات اور رہے گی, رمضان کے بعد جب ہم روزے رکھتے ہیں, عید آتی ہے نا, تو میری جو دل کی حضرت ہوتی ہے نا اپنے والدین کی قبر پہ جانے کی,
3: صحیح صحیح,
2: تو میں میری کوشش ہے کہ سب سے پہلے میں جاؤں.
3: بالکل صحیح,
2: تو ہمیں جانا چاہیے اپنے والدین کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے.
3: بالکل,
2: انہوں نے ہمیں پالا پوسا, عزت دی, نام دیا, پڑھایا, اچھی تعلیم دی, ان کی قبروں پہ ضرور جانا چاہیے.
3: بالکل جی بالکل. اور جی جی,
2: اگر میری کوئی بات اچھی لگی ہو,
3: آپ کی ساری اچھی لگی ہیں جناب, آپ کے آپ نے جو جتنی بھی ہمیں باتیں کی ہیں ساری اچھی ہیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ,
2: شکریہ جی,
3: اللہ حافظ. یہ تھے جی ہمارے پاس, ہمیں کال کی امرزا چودھری, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ امرزا کال کرنے کے لیے, ہم سے بات کرنے کے لیے. 04 2 111 0101. السلام علیکم. جی کون, چیکو تو نہیں آیا, اتنی خاموشی سے وہی آتا.
6: دیکھ لو,
3: دیکھ لیا
6: شیران اپنا سٹائل ہوتا ہے, اچھی بات دے.
3: چیکو کیسے ہو آپ,
6: زبردست.
3: چیکو آپ کو کہیں میرے شو کا ویٹ تو نہیں رہتا؟
6: بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں,
3: میں نے پہلے بتا سی. کیسا لگا آپ کو میرا اور مسعود بھائی کا اکٹھے پروگرام کرنا؟
6: زبردست.
3: اچھا کل بھی آ جاؤں پھر؟
6: جو ضرور ضرور, پھر ایک جو کیمیو آیا تھا بیچ میں وہ بھی اچھا تھا.
3: کیمیو کون سا آیا تھا؟ اچھا اچھا, اوکے اوکے اوکے, آج ڈوگ سے کیمیو. ہاں کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, ٹھیک ہے,
6: کالر مر جاتے ہیں نا پھر بھی.
3: ہاں بالکل ایسے ہی ہے. چلے مجھے پھر یہ بتائیں کہ کس دن کا انتظار رہتا ہے آپ کو؟
6: میری برتھ ڈے کا.
3: آپ کی برتھ ڈے کا کیا اسپیشل ہوتا ہے آپ کی برتھ ڈے پہ؟
6: وہ میری بےزتی ہوتی ہے.
3: بےزتی ہوتی ہے کیوں؟
6: وہ دن میری بےزتی نہیں ہوتی.
3: اچھا اس دن نہیں ہوتی, اوکے اوکے, 364 دن ہوتی ہے, صرف اس دن نہیں ہوتی.
6: جی بالکل,
3: زبردست,
6: اس دن وہ بھی نہیں ہوتی,
3: اس دن وہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی,
6: جو مرضی کھاؤں, جہاں مرضی جاؤں, جو مرضی پہنوں,
3: کیا بات, کیا بات ہے جی, کیا بات.
6: اس کے بعد اگر کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو فرائیڈے کا.
3: فرائیڈے کو کیا ہوتا ہے؟
6: बस एक जगह पे, एक दो जगह पे कुछ ड्यूटी ऐसी लगी हुई है, वो कंप्लीट करनी है।
3: वाह वाह जी वाह वाह,
6: इंतजार होता मेरा।
3: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी
6: वो करना होता है। और मेहरबान रही आपकी
3: कांदी,
6: ये पॉज जड़ी है ना, बेशक सॉन्ग प्ले कर देना, कॉल सॉन्ग के दरमियान भी ले ले करो यार।
3: तो मैं लेता तो हूँ, लेता तो हूँ कॉल्स।
6: नहीं आजकल आप जो है ना गाने चला के गाने के बाद कॉल देते हैं, क्योंकि गाना जो है ना लिसनर्स पूरी तरह सुन लेना। गाने सुनना नहीं यार, सड़क यूट्यूब मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, सुन लेने भाई।
3: ठीक है,
6: आवाज सुनाया करो।
3: बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है चीको, थैंक यू सेम हियर स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। राइट वेरी, ये थे हमारे साथ चीकू तमीकू, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आज हमने आपसे पूछा है कि पूरे साल में वो कौन सा दिन है जिसका आपको बहुत इंतजार रहता है। वेल जो मूवी लवर्स हैं ना, उनको मूवीज का भी वेट रहता है, यार फलां मूवी आने वाली है, आपने उसको ट्रेलर देखा है। हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दो दोस्त हैं जो मेरे बड़े मूवी के लवर हैं मेरी तरह, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार वो ट्रेलर चेक कितना ही आ रही है मूवी, फिर जब मूवी आनी है फिर हमने उसके पूरी डिस्कशन करनी है, यार आगाज़ जो है ना इंज तो होना चाहिए सी, या आगाज़ बड़ा बम्बेस्टिक था, एंड बड़ा अजीब और गरीब कर दिया। हम फिर उस पर बातें करते हैं, हम फिर उस पर पूरा तबसरा करते हैं, पूरा उसको उस पूरी मूवी को ना खंगाल देते हैं। बहुत सारे लोगों को गेम्स का वेट होता है, यार गेम फलां गेम आने वाली है, इस गेम में पार्टिसिपेट करना है, ये गेम खेलूंगा, तो इन चीज़ों का। वेल मुझे भी बचपन में बड़ा शौक होता था, यार ये वाली गेम बस आ जाए, इसका नया वर्जन कब आना है, मैं सीडी लेके आऊँगा, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, मैं इसको खेलूँगा। मुझे कार रेसिंग वाली गेम्स बड़ी पसंद थी, तो मैंने जब फर्स्ट अपना पीसी लिया तो मैंने उसमें कार रेसिंग वाली काफ़ी सारी गेमें ना इंस्टॉल की, और जब उसका लेटेस्ट वर्जन आना, और बड़ा मज़ा आता था यार वो खेल के। लेकिन अब तो एक अरसा ही हो गया कोई गेम ऐसे पीसी पे खेले हुए, मोबाइल पे फिर भी कभी कभार कुछ खेल लेते हैं, लेकिन पीसी पे तो एक अरसा ही हो गया कुछ खेले हुए, कुछ लगाए हुए ऐसा। एनीवेज जी, 04221100101, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
7: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कमलनाथ बोल रही हूं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से।
3: कमलनाथ आपको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी आवाज कैसी जा रही है?
7: बहुत अच्छी आ रही है।
3: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया
7: जी, आप बोलते ही माशाल्लाह इतना प्यारा है, तो फिर अच्छी तो आएगी ना।
3: थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया आपका। कमल मुझे ये बताएं कि पूरे साल में वो कौन सा दिन होता है जिसका आपको इंतजार रहता है?
7: मुझे अपने बच्चों की बर्थडे का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है।
3: वाह जी वाह, क्या बात है।
7: और मैं बड़े अच्छे तरीके से अपने बेटों की बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, खुशी भी होती है कि वो बड़े हो रहे हैं, और ये भी होता है कि जिंदगी में एक साल कम भी होता है, लेकिन खुशी भी होती है कि बड़े हो रहे हैं।
3: अच्छा, जैसे इंसान अपने बच्चों को बड़े होता हुआ देख रहा होता है ना, तो वो बड़ा एक खुशी का लम्हा होता है कि यार ये बच्चा अभी छोटा सा था मेरे हाथों में और ये अब इतना बड़ा हो गया, ये बड़ा खुशी का एक लम्हा होता है।
7: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, और हाँ। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
7: और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी आपके साथ फर्स्ट टाइम बात है।
3: बिल्कुल ऐसी है कमल, बिल्कुल फर्स्ट टाइम।
7: अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को और शमसी ग्रुप वालों को बहुत बहुत इज्जत है।
3: थैंक यू सो मच,
7: और आपके लिए बहुत ज्यादा
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, आइंदा भी आइएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आज काफी हमें नए लिसनर्स ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
8: हां जी सर, की हाल है? ठीक हो
3: जी? बिल्कुल ठीक ठाक
8: सर जी। मैं थोड़ा प्रोग्राम रेडियो पे सुन रहा, लोग तो मोबाइल पे सुन रहे होंगे ना।
3: जी जी,
8: और मैं तकरीबन रेडियो सुन रहा कोई 1988।
3: जनाब जब आपने कॉल अटेंड की है ना, मुझे तभी पता चल गया आप रेडियो पे सुन रहे हैं, जरा वॉल्यूम कम कर दें अब। जनाब जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, नाम बताइएगा अपना।
8: लियाकत अली।
3: लियाकत अली जी, लियाकत भावलपुर से बात कर रहे हैं?
8: बाटापुर।
3: ओके, बाटापुर वाघा के पास। बिल्कुल बिल्कुल, जी जनाब क्या कहेंगे आप?
8: मेरा उससे मैं फेवरेट जिहड़ा सिस्टम प्यार जिन्हें कहा जाता है मुदस्सर शरीफ अपना रेडियो पाकिस्तान दे पंजाबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं 8:30 बजे।
3: जी जी
8: बहुत मेरी फेवरेट शख्सियत है।
3: अच्छा जी
8: पता नहीं हूँ दुनिया से है नहीं या अल्लाह को प्यारा हो गए ना।
3: मुदस्सर शरीफ
8: हाँ जी
3: नाम सुना हुआ है मैंने, मुझे अभी बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहा लेकिन मैंने जरूर मेरा कुछ इनसे रहा है।
8: बिल्कुल
3: ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है।
8: थैंक यू बहुत ही चंगा बोल रहे हैं।
3: बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो
8: मच। कॉल मेरी फर्स्ट है ना।
3: आपको खुश आमदीद कहते हैं जी हम वेलकम कहते हैं। आपने आइंदा भी कॉल करनी है ठीक है
8: जी कोशिश जरूर करेंगे।
3: बहुत शुक्रिया
8: खुश रहे। जेड़ा इंतजार रहंदा भाई हो रहंदा जे कुर्बानी वाले दिन दा।
3: वाह वाह वाह वाह क्या बात
8: है। इतने मैं कुर्बानी खुद अपने से करना
3: जबरदस्त
8: दूसरा एक
3: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। ठीक है जी बहुत शुक्रिया आपका लिया का सब।
8: बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज। 04221111 हमसे रबते का नंबर है और हम क्या करना चाह रहे हैं कि करिए उन एक गाना जो मैं हर शो में चला देता हूँ। क्यों चला देता हूँ ये नहीं मुझे पता लेकिन मैं चला देता हूँ ये गाना। न जाने क्यों मेरा फेवरेट सा बनता जा रहा है। सुनिएगा एंजॉय कीजिएगा मैं आपके साथ साथ मौजूद हूँ। कॉल्स भी लेंगे आपकी इस गाने के दौरान ही कोई कॉल ले लूँगा ठीक है। ताहिर अब्बास की खूबसूरत सी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलती है। ताहिर क्या बात है आपकी।

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम सलाम अली अली साहब
0: जी जनाब,
1: आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम
1: अस्सलाम, मैं सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी सलमान भट्ट, क्या कहेंगे आप?
1: मैं तो ये कहूँगा आप तो सबसे ज्यादा इंतजार यही होता है कॉल मिल जाए और बात हो जाए।
0: मिल गई है फिर आपकी कॉल
1: तो यही, और बार बार प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा, गाने भी बड़े जबरदस्त थे,
0: बहुत शुक्र।
1: और ये शहजाद साहब उर्फ मौला जट साहब आए थे, इनको और रजा चौधरी साहब को, नीला आपी को, शमीम आपी को, तमाम कॉलर और लिसनर को अस्सलाम वालेकुम,
0: बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
2: बर्फी
0: विकन दा ही हुंदा होएगा
2: भाई, सानू साल गिरा ते बुलाओ ना, फिर मैं पिछले साल भी नहीं बुलाया, बुलाओ तो बर्फी इंशाल्लाह खवावांगे।
0: आई होप आपकी बात मैनेजमेंट सुन रही हो।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा अली भाई, सानू ते इंतजार हुंदा साल एक कुर्बानी ते छोटी ईद दा,
0: क्योंकि
2: ओदे ते साल दो साल जेड़े पिछले हुंदे ना वो मिलदे
0: आ, बस ठीक हो गया।
2: फिर
0: आपका
2: वालदान दी कब्र,
0: हां जी जी बोले बोले,
2: वालदान दी कब्र ते जाईदा, बोल भाई दे दुआ कर करी दे, अपने नु मिलीगा, बहुत अच्छा लगा।
0: बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, थैंक यू सो मच। बस एक ही काफी है, एक ही काफी
2: है, जाना
0: अच्छा, बोले बोले
2: इंतजार है
0: आपका कॉल करने के लिए, और कोशिश होती है कि जी ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ली जाए, तमाम लिसनर्स की कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। आज की आखिरी कॉल, अस्सलाम वालेकुम, लास्ट कॉलर। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, जनाब कैसे हैं आप? ठीक है
3: ठीक है ठीक है, बस लेटा हुआ हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे बताएं कि किस दिन का आपको इंतजार रहता है?
3: जब सेवन जाना होता है साल बाद।
0: जी जी मिली है, और देख लें आप आखिरी कॉलर भी बन गए। सलाम पहुंच गया जी आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहें जी, हंसते रहें, अल्लाह हाफिज। राइट वे, ये था आज का हमारा शो, अब मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच तमाम कॉलर्स का, तमाम लिसनर्स का, तमाम मैसेज करने वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पूरा साल किस दिन का इंतज़ार होता है? वेल, पूरा साल मुझे भी ईद का इंतज़ार होता है, मुझे पूरा साल अपने अपनी बर्थडे का भी इंतज़ार होता है। ये था आज का प्रोग्राम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। आरजे अली रजा साइनिंग आउट, सिंग बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान। बोनस में है, याद करेंगे ना मुझे, अगले जुमे को मिलूंगा आपको ठीक 5 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो

मधक सा गया और चुप हो गया, मधक सा गया और चुप हो गया, मधक सा गया और चुप हो गया, मधक सा।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: भूलने की तो वजह ही नहीं बनती। हम जानते हैं कि आप हमें सुनने के लिए दोबारा जरूर आएंगे। ये आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है FM 101 की तरफ से।
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज्यादा कुछ नहीं होता।

घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: की तो वजह ही नहीं बनती। हम जानते हैं कि आप हमें सुनने के लिए दोबारा जरूर आएंगे। ये आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है FM 101 की तरफ से। क्या आप हमें सुनने के लिए दोबारा जरूर आएंगे ये आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है FM 101 की तरफ से।
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: guys, now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ دا لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان میں فرحان خان, اور میرے ساتھ ہیں دا ون اینڈ اونلی سیالکوٹ کی خوبصورت سی آواز, خوبصورت شخصیت, دا ون اینڈ اونلی آر جے
1: علی قریشی. اچھا میں نے کہا بولیں. اچھا
0: سر, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ میرا انتظار کر رہے ہیں.
1: بس یہ زندگی انتظار کا نام ہے,
0: ہے نا,
1: انتظار بھی کرنا پڑتا ہے.
0: ویسے انتظار کتنا مشکل ہے نا,
1: بہت بڑا بڑا مشکل کام ہے جی, بہت زیادہ
0: سب سے مشکل کام انتظار. بعض دفعہ لگتا ہے نا,
1: اکثر لگتا ہے,
0: اکثر لگتا ہے, اور بعض دفعہ کچھ ایسے لوگوں کا انتظار بڑا آپ کو شدت سے ہوتا ہے کہ یار, اور کچھ ایسے لوگ آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار اس انتظار کا فائدہ کوئی نہیں ہے.
1: حال تو ہاں صاحب, لرننگ پروسیس چلتا رہتا ہے زندگی میں, الحمدللہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ انسان کی کچھ نہ کچھ انسان سیکھے. تو یہ جو 7-8 دن میں سیکھا, یہ تو بہت کچھ سیکھا. اور اس میں سب سے بڑی بات, جب ہم نیوز پیپر میں جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے
0: سر,
1: یہ جو اپنے ریلیشنز ہوتے ہیں نا, اسپیشلی پیرنٹس کا اور اولاد کا, اس کا جو ہے نا بوتھ سائڈڈ, یہ جو ایک پین ہے نا, اس کی ایک اس کی الگ سا اس کی ویلیو ہے. یہ کس حد تک آپ اپنے جن بچوں کے اندر احساس ہے نا اپنے ماں باپ کا, وہ اپنے ماں باپ کو ایک منٹ میں کے لیے تکلیف میں نہیں دے سکتے.
0: بے شک صحیح ہے.
1: تو باقی زندگی ہے, والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں, پھر انہوں نے بھی پالا ہوتا ہے اولاد کو, تو یہ اولاد کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ ہم تو ایک اس طرح کا ان کو ریٹرن نہیں کر سکتے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں نا
0: بالکل
1: جو پیرنٹس کی طرف سے, اور ایک ایک قدم کا میرے رب کی ذات آپ کو اس کا
0: نواز
1: رہی ہوتی ہے.
0: اصل میں نے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا کسی کو بھی چن لیتا ہے, اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے. اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نا, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, ہم بچے ہوتے ہیں, تو ہمارے پیرنٹس, میں دیکھتا ہوں کتنی محنت کرتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے ساتھ, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ماں کتنی محنت کرتی ہے, کتنی محنت کرتی ہے اس بچے کے ساتھ, مطلب اس کو کھلانا پلانا نہلانا صاف کرنا صاف ستھرا رکھنا, اس کو اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا, اس کے اٹھنے کا خیال, بیٹھنے کا خیال, پڑھنے کا خیال, ہر چیز بچے کی, آپ اس کی پیدائش سے لے کے اس کی جوانی تک, جب تک وہ اپنی ہوش نہیں سنبھال لیتا, اپنے قدموں پہ صحیح طرح سٹیبل نہیں ہو جاتا, اس وقت ماں کتنی محنت کرتی ہے اس بچے کے ساتھ, مطلب ایک ایک چیز کا اس نے خیال رکھنا ہے, ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے.
1: ماں بھی باپ بھی دونوں,
0: باپ بھی دونوں,
1: دونوں کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمیشہ سے. اور میں کہتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں ہاں صاحب, اس مائک کے تھرو میں میسج کنوے کروں, لیکن میں نے میں اپنے آپ کو, اگر چونکہ ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کوئی بات نہیں کرنی ہوتی, لیکن یہ ایک اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور ہمارے پیارے سے لسنرز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا. اٹس اے ریئلٹی کہ آپ اپنی زندگی میں نا, اکثر ہم کامیابی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں کامیاب ہو جائیں. تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی, میں سنتا تھا تو میں کہتا تھا یار یہ کیا بات کریں, یہ کیا ہے ٹین ایج کے اندر, تو اس میں یہ ہے کہ ہاں صاحب جو والدین کی ساتھ رہتے ہیں نا, جو والدین کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرنی ہوتی ہے یار, وہ تو خدمت اینڈ تک بھی نہیں کراتے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے والدین سے اچھی باتیں کر لیتے ہیں, اچھی گفتگو کر لیتے ہیں, ان کا خیال کر لیتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ناکام ہونے سے نہیں روک سکتی.
0: صحیح بات ہے.
1: اور آپ کی ایک بڑی, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے.
0: بالکل جی, بہت بڑی بلیسنگ ہے. اینڈ یو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے والدین حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے ان کی خدمت کرنے کا, اور دنیا میں وہ
1: آپ کے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں یقین.
0: بے شک اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جی. وہ کہتے ہیں جس سے ماں باپ راضی ہوں اسے رب راضی ہے.
1: بے شک
0: اگر آپ, ہم رب کو راضی کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں, کبھی اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں, کہ وہ مدد کرنا بری بات نہیں ہے, میں اس کو نہیں ڈسکریج کر رہا, لیکن جو گھر میں بیٹھے آپ کے जिसे रब ने कहा जी कि मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ। एक माँ को अल्लाह ने तशबीह 70 माओ, क्योंकि अल्लाह माँ से इसीलिए कि माँ बिलोस अनकंडीशनल लव करती है अपने बच्चों के साथ,
1: बेशक,
0: तो रब ने अपनी जो मुशाहबत दी है ना वो 70 माओ के साथ मिला के दी है,
1: बेशक।
0: तो इसीलिए रब जब माँ के साथ मिला रहा है तो आप इमेजिन कर लें कि वो माँ जो दिन रात अपने बच्चे के लिए दुआएं करती है, उसका लिए इल्तिजा करती है अपने रब से उसकी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। जब एक सर्टन एज में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, और यकीनी तौर पे वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको बूढ़े माँ बाप मैसर होते हैं उनकी ज़िंदगी में, और फिर उनका जब वक्त आता है जब उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो दुआ ही मांगनी चाहिए अल्लाह ताला किसी की मोहताजी ना दे, अल्लाह ताला हमारे बड़ों को बुज़ुर्गों को सबको सेहत के साथ रखे, लेकिन जब ज़रूरत पेश आ जाती है तो ये उन पे एहसान ही हमारी खुशकिस्मती है,
1: बेशक,
0: कि अल्लाह ताला ने हमें ये
1: अभी कामयाबी का ज़रिया ये
0: बिल्कुल वही है, और
1: बेस्ट की ऑफ सक्सेस है, यकीन करें
0: सर, दीनों दुनिया सब आपके बेहतरीन है, ज़बरदस्त हैं कि अगर आप को अल्लाह ताला ने चुन लिया इस काम के लिए कि आप अपने माँ बाप की खिदमत के लिए,
1: वो किसने लिखा होगा वालदा नहीं को तेरे नालदा हैं, अपने अपने वो है ना वो मोहब्बत के इजहार के अपने में तरीके हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल जी ऐसा ही है जी। और एक कॉलर लेते हैं, देखते हैं, लेट्स सी हूज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
1: वालेकुम
2: जी। नज़ीर क्यानी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से।
0: जी क्यानी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फरहान साहब बोल रहे हैं?
0: जी सर, फरहान अर्ज करो।
2: माशाल्लाह जबरदस्त गुफ्तगू, और माशाल्लाह मेहमान भी फिर अली कुरैशी साहब जैसे, तो
0: सोने पे सुहागा,
2: बेशक इसमें कोई शक नहीं। और टॉपिक पे ये बात करूंगा कि तब्दीली खुद खुद ही इंसान में आती जाती है वक्त के वक्त गुजरते साथ ना, जैसे कहते हैं ना कि फलाना बदल गया, वो बदलना पड़ता है वक्त के साथ साथ, आदमी बदलता रहता है। ये बात तो हर काफी हो चुकी,
0: बिल्कुल,
2: लेकिन बात मैं ये करना चाहता हूँ अभी जो बात आपने शुरू की थी, इस बात पे असल में कॉल करना, मैंने कॉल की है कि देखिए मैं यंग लोगों को ये कहता हूँ कि जिनके माँ बाप जिंदा है वो बड़े खुश नसीब और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। खुदा की कसम किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी दरगाह पे जाने की जरूरत नहीं है, उनकी दरगाह माँ बाप है, वहीं से दुनिया और आखिरत आपको उनकी दुआओं से मिलेगी, यकीन जानिए।
1: बहुत प्यारी बात।
2: तो
1: बहुत प्यारी बात।
2: मैं कहता हूँ कि खुश, और फिर यह है कि ये आपको मयसर हैं तो ये गनीमत जानिए, खुदा की कसम ये जब नहीं होंगे तो आप कहने ना पंजाबी लोहे दी हथौड़ा होंगे, मिलेंगे नहीं, फिर मिलेंगे नहीं पा,
0: और फिर ओदे बाद कदर आंदी है,
2: कदर आंदी है जदों वो नहीं आंदे, ते समझ लो कि तुहाडे कोल यानी दुआं दा खजाना है,
0: दुआं दी मशीन मशीना नहीं है।
2: देखो हम तुसी फरमाया ना कि 70 माँ जिन्ना प्यार कर दे अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला दा प्यार किन्ना है, माँ दा प्यार है ते फिर अल्लाह ताला दा प्यार किन्ना है, देखो बंदे इस पासे कभी असीं कभी सोचिया ही नहीं, इस पासे कभी समझे ही नहीं इस गल नूं कि अल्लाह ताले नाल किन्ना प्यार करदा है। और फिर यह है कि देखो माँ दा बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का बड़ा मकाम है, लेकिन मैं आपको वालिद की भी बात बताऊं कि वालिद का भी मकाम बड़ा है, कि वालिद के चेहरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद के चेहरे की तरफ एक बार मोहब्बत से देखने से एक मकबूल हज का सवाब है।
1: बहुत प्यारी बात।
2: मैं और आप जो हज करते हैं लाखों रुपया खर्च करके, उसकी कोई छोटी नहीं है कि कबूल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये अजीज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वालिद के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखें, एक हज का। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह दो बार, उन्होंने कहा दो बार देखो, जितनी बार देखते जाएगा इतना ही हज का सवाब है।
0: अरे वाह,
2: तो अंदाजा लगा लें फिर वालिद का क्या मकाम है।
1: बहुत प्यारी बात,
0: बेशक।
2: तो फरहान खान साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुरैशी साहब आपकी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए,
0: बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जी, सलामत रहें जी, अल्लाह। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है।
1: हाय हाय हाय हाय, वाह बहुत प्यारी बात।
0: वो ऐसा होता है ना कि कभी आप माओं को चाह होता है ना बच्चों का, बच्चों से माँ को पता होता है अपने बच्चे के बारे में, अपने एक एक बच्चे की उसकी अदाओं का पता होता है, उसके गुस्से का पता होता है, उसकी पसंद का पता होता है, उसके मिजाज का पता होता है, वो कैसा है ये सब पता होता है। लेकिन मजे की बात है माँ ऐसा पर्दा डालती है, ऐसे पर्दे डालती है, लेकिन उन्हें अपने बच्चे तो चंगा कोई लगता ही नहीं
1: है
0: ना। वो कहती है मेरा बच्चा ही कोई ना कोई, बच्चा ही कोई नहीं, मेरा मेरी औलाद जिसका कि ना माँ की मोहब्बत होती है ना अपने दामन में समेट रही होती है। तो वो है ना इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है।
1: हाय हाय हाय वाह,
0: तो बहुत बस ये अल्लाह ताला की खास नेमत है, इनकी कदर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से? लाहौर से इरम बात कर रही है जी। इरम, फरहान बात कर रहा
3: हूँ।
0: बिल्कुल ठीक ठाक इरम, क्या कहोगी?
3: मुझे एक शेर कहना
0: है। जी जी कहिए।
3: इसलिए मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आते आते तेरे नाम से मासूम है सारे।
1: वाह वाह वाह।
3: शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे अहद भी मालूम है सारे। और सब सब जुर्म है मेरी जात से मसूम मोहसिन, या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे।
1: हाय हाय वाह जी वाह, क्या बात,
0: बहुत अच्छे।
3: सलामत रहे, सबको सलाम।
0: आप भी सलामत रहे,
3: और अनिल आपी को भी सलाम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो चाय पी है ना सर,
1: चाय कमाल की थी।
0: कैसी थी चाय?
1: मैं वो जरूरत थी वैसे
0: नहीं, वो जरूरत तो थी लेकिन थी कैसी चाय,
1: कमाल की, कमाल अस्त।
0: उसके अंदर जो मोहब्बत, जो खलूस जहरी साहब ने भरा है ना, आप यकीन जाने, आपको कसर पूरी होगी ना पिछली दफा वाली,
1: होगी कि वो निगाहें बोलती हैं बेतहाशा, मोहब्बत पागलों की गुफ्तगू है।
0: आए हाय हाय हाय। और यानी आप लोग चाय पी के पागल हो गए।
1: यार इश्क दे नाल अल्लाह बैठी अय्यार बना के लुट लेंदा, यार इश्क दे नाल अल्लाह बैठी अय्यार बना के लुट लेंदा, ऐश कमल तक हुए बस नैन मिला के लुट लेंदा।
0: आए हाय हाय हाय। सर ये आपको उस चाह में चाह नहीं, उस चाह में चाह नहीं जिस चाह में चाह ना हो। तो सर इनकी चाह में बड़ी चाह होती है। जैद साहब सलामत रहे, अल्लाह आपको।
1: मुझे लगता है कि एक शो मुझे इस चाय के लिए करना पड़ेगा।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: उन्होंने सोचा कि सीधे जान छिड़ा
2: ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, मोहम्मद
0: तारिक भाई। तारिक भाई कैसे मिजाज हैं आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं आप सबके लिए और करम अफजात पाक का, आप सुनाए सब खैर।
0: अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह की बेपनाह इनायत।
2: तो भाईजान अली कुरैशी साहब, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू 101।
1: थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकअल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज और अंदाज है आपका।
1: जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, आपकी मोहब्बत है।
2: और फरहान भाई असल में ना हम हर चीज में रिस्पॉन्स चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही,
2: असी कहने है ना कि दुनिया मतलब दी।
1: हाँ जी,
2: असल च असी आप मतलब ही है। क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं ना उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है।
1: अरे वाह, अरे वाह, कितनी प्यारी बात है।
2: जिंदगी बहुत खूबसूरत नेमत है और इसमें आने वाला हर लम्हा इंसान के लिए एक नया तजर्बा है।
1: बेशक बेशक बेशक,
2: एहसास कमतरी और लाशौरी से दूरी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों चीजें इंसान की कामयाबी को रोकती हैं।
1: सही बात है, सही बात है। मैंने एक बात की तारिक भाई कि हम जो कर रहे होते हैं ना वो हमारी हिस्ट्री बन रही होती है, तो इसलिए बेहतर यह है कि हम सादगी के साथ चलते रहे। जो हमारा असल स्टाइल है ना, हमारी शख्सियत कामी, उसी में रहना चाहिए। उसी में रह के जो भी काम करेंगे ना तो बड़ा जबरदस्त काम होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। जब हम जो ना कॉपीज कर रहे होते हैं ना,
2: बात के अली कुरैशी भाई जान,
1: थैंक यू वेरी मच,
2: जो वालदैन की दुआओं में रहता है ना,
1: हाय हाय हाय,
2: वो सदा महकता है।
1: बिल्कुल सही,
0: बेशक
1: बेशक,
2: सदा महकता है जो बड़ों की दुआओं में रहता है।
1: बेशक बेशक बेशक,
2: और दुआएं मांगी नहीं जाती, दुआएं ली नहीं जाती, दुआएं की जाती है।
1: मैं अक्सर कहता हूँ हम सब शो के अंदर कि एक सिलसिला हमेशा बनाए रखना जिसे दुआ कहते हैं। दुआओं के सिलसिले बड़े खूबसूरत होते हैं।
0: बेशक जी, बेशक,
2: क्योंकि अली कुरैशी भाईजान दुआ एक ऐसा अमल है
1: जी जी
2: जो तकदीर को भी मार दे जाता है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
2: और खुश इखलाकी ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस हो जाती
1: है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी बात तारिक भाई।
2: और जमीर ऐसा साथी है जो इंसान को हमेशा हक की राह दिखाता।
0: बेशक बेशक जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई, सलामत रहें, जीते रहें।
2: अल्लाह सबको भी सलामत रखे, आपकी पूरी मैनेजमेंट को सल्यूट, और सबको मेरा सलाम। अल्लाह ने के बान पे सजा जीवे सोना पाकिस्तान।
1: सियालकोट की एक बहुत प्यारी आवाज, बड़ी कमाल की आवाज,
0: सियालकोट की सारी,
1: आपको समझ फरमा,
0: सियालकोट की सारी आवाजें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह।
1: उसमें है जनाबी भट्ट साहब,
0: वो प्यारी आवाज है,
1: है तो सही ना।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा सुन रहे हैं भट्ट साहब,
1: एक सादिया साबिर हमारी,
0: अच्छा माशाल्लाह, शी इज अ वेरी वंडरफुल आरजे माशाल्लाह।
1: सादिया साबिर आपको सुन रही
0: है सर, बहुत शुक्रिया सादिया, खुश रहें, सलामत रहें। सादिया जो है ना बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है माशाल्लाह, और सियालकोट यार आपका माशाल्लाह बड़ा फर्टाइल है, बड़ा ही जरखेज मिट्टी है, और थैंक यू सो मच सादिया।
1: आपके लगाए पौधे थे?
0: नहीं सर,
1: पता नहीं आप पौधे हैं कि दरख्त
0: हैं। सर आपकी नजर, एक शेर आपकी नजर,
1: जी जी,
0: कहता है किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई,
1: वाह,
0: किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ
1: आई, वाह, वेरी नाइस एंड वेरी ट्रू एज वेल।
0: सो जनाब एक कॉलर लेते हैं, लेट्स सी हु इज विद अस, 0421100101 इज द डार्लिंग नंबर जिस पे आप लोगों की कॉल्स हम वसूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: सर कौन सा?
4: हमीद गुल अर्ज कर रहा हूं सर।
0: जी
4: गुल अर्ज कर रहा हूं, दाऊदगंज से फरहान साहब।
0: जी जी हमीद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
4: आप ठीक हैं? आपके साथ जो मेहमान है कुरैशी साहब,
0: बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं?
1: जी जी बिल्कुल
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अब तो खेल से क्या, अब तो खेल गए हैं, अब तो और ठीक हो गए हैं माशाल्लाह।
4: कौन?
0: अली साहब। अली साहब मैंने कहा पहले तो बहुत ठीक थे, अब और ठीक हो गए माशाल्लाह, तो खेल खिला से
1: चाय, गए चाय पी रहे, चाय का
0: एक्टिव हो गए
4: माशाल्लाह।
0: सर
4: अभी अभी आपने एक बात साबिश का शेर पढ़ा और एक मुनव्वर राना का।
0: सर सर सर सर,
4: तो मैं ये समझता हूँ
0: सर
4: के मैं आपको अपने कथा भी सुनाऊंगा।
0: जी जी जी,
4: के माँ बाप आपके वो हमराज हैं जो आपको दुनिया, ऐसे दोस्त हैं आपके, ऐसे हमराज हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
0: बेशक
4: आप तजुर्बा करके देख लें, जहाँ मर्जी है चले जाएं, लेकिन इन जैसे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे।
0: बेशक इसमें
4: क्योंकि जो जो माँ बाप की होती है ना कोशिश
0: सर
4: अपनी औलाद के लिए
0: सर,
4: वो मुनव्वर राना ने कहा था कि खुदा ने ये सिर्फ हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बेटे याद रखे।
1: अरे वाह,
0: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
4: माँ पागल बेटे याद रहते हैं। दो बार आजकल फेसबुक पे गलत लिखा जा रहा है, वो लिखते हैं याद रहते हैं, याद रखे हैं, बेटे याद रखती है। और यह एक जगह मुनव्वर राना साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मैं दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती
0: हूँ।
4: ठीक है ना, तो बात यह कि माँ, मैं माँ के हवाले से एक बात कही, मैंने एक कथा कहा तो लोगों ने बड़ा कहा कि आप ये किसकी तरफ आपका ख्याल है, तो मैंने कहा मैं अपना ख्याल जिस दिन कोई मुझसे पूछेगा तो मैं, आज इत्तफाक है मेरा एक कथा है कि नया एक बाब लिखना चाहता हूँ, मेरा अपने लिखा हुआ है कि नया एक बाब लिखना चाहता हूँ, अनोखे ख्वाब लिखना चाहता हूँ।
1: अरे वाह,
4: वो हमारे वो अनोखे ख्वाब थे जो हमने अपने वालदैन के साथ वक्त गुजारा, वो ख्वाब जो देखे कि नया एक बाब लिखना चाहता हूँ, अनोखे ख्वाब लिखना चाहता हूँ और मैं तुझको सोचता रहता हूँ पल पल, मैं तुझको सोचता रहता हूँ पल पल, तुझे नायाब लिखना चाहता हूँ। ये जो नायाब चीजें होती हैं वो आपके दिल पे या कहीं ना कहीं ऐसी नक्श हो जाती हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए लिखना चाहते हैं।
0: बेशक
4: जहाँ तक हो सके अभी जो जिन लोगों को अपने वालदैन मुयसर हैं तो उनका ख्याल करें, वरना वो हमारे पाकिस्तान के उर्दू लहजे के बहुत बड़े शायर हैं साना सईद दोषी साहब, उनका एक शेर है शायद एक लम्हे आज का, उन्होंने ये कहा था कि फ्रांसा देखे इस ख्याल को कि उन्होंने ये कहा था कि वो लफ्ज ढूंढ रखा था लरसते होंठों से, आज के ये लम्हे माँ बाप के साथ क्या हो रहा है कि वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते होंठों से, जो इस बाप को बेटे से बात करना थी।
1: अरे बहुत प्यारी बात,
4: ठीक है ना। तो ये आजकल ये हो रहा है, बल्कि किसी ने ये भी कहा था एक जगह पे, किसी ने आके ये कहा कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है कुरैशी साहब।
1: जी जी जी जी जी,
4: खुद को कितना छोटा करना, न्याज बंदी का शेर है कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है।
1: बहुत अच्छे,
4: ये बड़ी बड़ी डायरेक्शन है इसमें। आप देख लें कि आज की जनरेशन कहाँ पे खड़ी है और हम कहाँ खड़े थे उस वक्त।
0: बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह
1: हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
0: सो जनाब 04111001001 इज़ अ डार्लिंग नंबर जिस पे आप हमें कॉल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप सबकी कॉलों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान भर से आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और इस बज़्म का हिस्सा बन रहे हैं बड़ी नफासत से
1: हमारे जो
0: और बड़ी ही महारत से
1: जी जी।
0: अली भाई ने जो कप उठाया
1: जी
0: और उठाने के बाद
1: जी
0: ना उसका साउंड आया
1: जी
0: ना उसकी आवाज आई,
1: बाकी सही कह
0: रहे हैं, ना उसके खड़कने की ना खनकने की कोई आवाज आई। इसको कहते हैं आर्ट,
1: आर्ट
0: यानी कि इतनी नफासत और इतनी मोहब्बत से आपने उस कप को उठाया और उसी मोहब्बत से आपने कप आपने दूसरी साइड पे रख दिया। सो इसको कहते हैं आर्ट। एक आर्टिस्ट होता है ना वो हर चीज को बड़ी नफासत के साथ बड़ी डीप डाउन जाके चीजों को करता है, देखता है, बोलता है, महसूस करता है, ऑब्जर्व करता है। सो ये अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है।
1: मैंने कहा कि मेरा और आपका जो वो आमना सामना
0: वो कप की वजह से
1: दरमियान में कोई
0: वो कप की वजह से बहुत खराब हो रहा था
1: इसलिए मैंने को साइड में रखा।
0: अच्छा ये कप था कि बाल्टी में चाय पी रहे थे जो आपका और मेरा जो रابطہ मनकता हो रहा था। लेकिन ये अच्छा है, आप चाह रहे हैं कि कोई बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। ये तो सर ये नहीं आए इसके, ये लाइट तो सर ये आपको पता है
1: हमारे जो
0: कॉलर लाइट ले
1: कॉलर्स के वाले से मैं लाहौर में बहुत माशाल्लाह मुझे आई फील प्राउड के
0: जी जी।
1: हमारे जो कॉलर्स हैं हमारे जो लिसनर्स हैं FM 101 के
0: सर,
1: इनका शऊर इनकी बातें
0: जी जी बहुत
1: कमाल की कमाल।
0: अस्सलाम वालेकुम जी, कौन
1: सिग्नल वी
0: क्या यहाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बात कर रही है? मैं माजरा चाहता हूँ आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं इसके लिए मुझे कॉल काटनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम
5: फरहान भाई, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र सर, कौन साहब कहाँ से?
5: अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन
0: जी। नूर साहब क्या कहेंगे?
5: सबसे पहले तो कृषि भाई को लाहौर वेलकम,
1: थैंक यू वेरी मच
5: के अजीम मर्दम खेज खिते से
1: ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
5: तो मैं टॉपिक पे आने से पहले ना एक छोटी सी बात करना चाहूंगा।
1: सर जी जी,
5: मंगल को सब भी आपके आरजे बहुत अच्छे हैं
0: सर, सर,
5: मैं 5 साल से रेडियो सुन रहा हूँ
1: माशाल्लाह।
5: तो ज़ियान जिन साहब हैं, डॉग्स हैं, मसूद भाई हैं, सारे हैं, फरहान भाई तो बहुत सीनियर है ना
0: सर।
5: तो मंगल को उनका एक शो होता है ज्ञानजन का, उनकी जगह एक और साफ कर रहे हैं
0: सर।
5: आज भी आपके शो के बाद आएंगे वो
0: सर,
5: मैं नाम नहीं लेता उनका
0: सर।
5: तो उन्होंने एक टॉपिक रखा
0: सर, मेरे ख्याल में हम अपनी आज टॉपिक की बात करते हैं ना।
5: हाँ नहीं, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ।
0: अच्छा
5: उन्होंने ना मेरी परवरिश पे, ये मेरी तरबियत पे उंगली उठाई, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैंने हदीस कोट की उसके बयान पे, तो बस अल्लाह ताला।
0: आप आज के मौजू के हवाले से क्या कहेंगे मेरे आज के?
5: अच्छा अच्छा, आप प्लीज। ठीक है ना, वो मेरा प्रोग्राम पहुंच गया।
0: जी जी, आप
5: मौजू। तो बात लाहौर की मोहब्बत से शुरू हुई
0: सर।
5: अपने आप को बदलने से होती हुई
0: सर, सर, सर,
1: बिल्कुल सही।
5: तो वालदैन एक बहुत बड़ी नेमत होती हैं औलाद के लिए, एक आइडियल होते हैं।
0: बेशक बेशक।
5: तो मैं तो जहाँ तक मैंने जिंदगी से ये सीखा है, चाहे रिश्ते के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, वालदैन की जो होती है ना राय, वो सबसे मोतबर होती है।
1: बेशक।
5: मेरी शादी भी, लव मैरिज भी समझ लें, लेकिन वालदैन की रजामंदी शामिल। तो मैं बड़ी खुश होकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। और मेरे वालदैन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहता हूँ।
0: बात को
5: अल्लाह ताला सबको वालदैन पर रहम करे।
1: आमीन आमीन आमीन।
5: जाते जाते प्रवीण शाकर के दो चार शार।
0: जी सर,
5: क्योंकि आपको अभी मेहमान बुलाते रहते हैं ना, शायर वगैरह।
0: जी सर।
5: उसके अलावा वो कभी अब्बास साबिश को भी बुलाएं?
0: बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरा प्लान है उनको बुलाने का, अब्बास भाई का।
5: उनके एक मुश्किल को आपने बुलाया था, वो क्या हालत वो क्रिकेट के ईसा खेल के,
0: शानी भाई,
5: दूर में इस सर पर एक चादर तो है, लाश के बारे में शिकस्ता हूँ, पर अपना घर तो है। जो भी आएगा यहाँ दस्तक तो देकर आएगा, एक हद्दे दीवार तो है, एक हिसारे घर तो है। यह भी क्या काम है कि अपनी जंग में तनहा नहीं, कारगारे जिंदगी में मेरा एक लश्कर तो है। कौन है अब तक अनासर को बहम रखे हुए, मौसमी बेचहरगी में कोई सूरत गर तो है। एक शेर और
0: जी।
5: आसमान सब दू कर एक तारा एक चांद, दशरथ में कुछ ना हो ये कुछ नवा मंजर तो है।
0: वाह, बहुत अच्छा,
5: याद रखें
0: सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
5: अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।

0: अली भाई आपकी नज़र
1: जी
0: बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की नेमत है, बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की नेमत है, हजूम दोस्तां होना किसी संगत का मिल जाना, हजूम दोस्तां होना किसी संगत का मिल जाना, कभी महफिल में हंस लेना कभी खलवत में रो लेना, कभी तन्हाई मिलने पर खुद अपना जायजा लेना, कभी दुखते किसी दिल पर तशफ़ी का मरहम रखना, किसी आंसू को सुन पाना किसी का हाल ले लेना, किसी का राज मिलने पे लबों को अपने सी लेना, किसी बच्चे को छू लेना किसी बूढ़े की सुन लेना, किसी बच्चे को छू लेना किसी बूढ़े की सुन लेना, किसी के काम आ सकना किसी को भी दुआ देना, किसी को घर बुला लेना किसी के पास खुद जाना, निगाहों में नमी आना बिला कोशिश हंसी आना, तलावत का मजा आना कोई आयत समझ पाना, कभी सजदे में सो जाना किसी जन्नत में खो जाना, खुदा की एक नेमत है।
1: कमाल किया
0: अमजद साहब ने किया जी, कमाल हमने क्या किया जी, कमाल तो अमजद साहब का है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। एक कॉलर ले लें अगर आपकी इजाज़त हो।
1: मैं भी आपकी नज़र कुछ करना चाह रहा था लेकिन चलें,
0: कॉलर के
1: कॉलर तो हमारे।
0: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप करें शायद आपकी आवाज़ में बोल दें।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: नहीं,
1: हेलो। अच्छा, ये वैसे आपको याद दिलवाएगा माजी की।
0: सर कौन से माजी की?
1: जहाँ पे हम कभी इकट्ठे भी शो किया करते थे सियालकोट
0: की। मैंने शायद कह रहे इश्क किया करते थे।
1: ये जो सांप सीढ़ी का खेल है।
0: ओए ओए ओए ना करे।
1: ये जो सांप सीढ़ी का खेल है, अभी साथ थे दोनों हमनवा। ये जो सांप सीढ़ी का खेल है, अभी साथ थे दोनों हमनवा, वो भी एक पे मैं भी एक पे। उसे सीढ़ी मिली वो चढ़ गया, मुझे रास्ते में ही डस लिया मेरे बख्त के किसी सांप ने। बड़ी दूर से पड़ा लौटना जख्म खा के अपने नसीब का, बड़ी दूर से पड़ा लौटना जख्म खा के अपने नसीब का, वो 99 पे पहुंच गया मैं 10 के फेर में घर गया। उसे एक नंबर था चाहिए, जो नहीं मिला सो नहीं मिला, मैं बड़ा तो बढ़ता चला गया, बस एक चौके की बात थी पर उससे जीतना मेरी मात थी। मैंने जान के गोट गलत चली और सांप के मुंह पे डाल दी।
0: ओए हो,
1: ये जो प्यार है कभी सोचना, ये भी सांप सीढ़ी का खेल है।
0: तो आपको किसने कहा इतना खतरनाक खेल खेल?
1: बिल्कुल ऐसी है।
0: बताएं इसमें जरा, हम रोशनी डालिएगा मुझे
1: जी। जी
0: अस्सलाम वालेकुम। जी सर कौन साहब कहाँ से?
2: एक सेकंड, ये मोबाइल रेडियो बंद करनी।
0: अच्छा आप बंद करें, हम जरा होके हम बाहर से होके हैं जरा। जी सर, सर क्या कहेंगे
1: यासीन भाई, क्या हाल है? ठीक है, इनसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी ऑफिस जब प्रोग्राम खत्म हुआ।
0: सर सर सर जी फरमाइए, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? सर सर
1: यासीन भाई आपकी आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है। यासीन भाई आपकी
0: आवाज उनकी कट रही थी। अच्छा। और बोलिए।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम सर।
1: कौन साहब कहाँ से बात करें?
3: सर बात करूँ कश्मीर से, क्या हाल है आपके?
1: आए वाह
3: से अली भाई,
1: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। आप सुनाएं भाईजान, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं?
3: जी बिल्कुल सुन रहा हूँ प्रोग्राम।
0: कश्मीर में बहुत प्यारा मौसम है।
1: अरे वाह,
3: हाँ बहुत खूबसूरत मौसम है और फर्स्ट टाइम इत्तेफाक हुआ है मुझे सुनने में, और क्या कमाल की आवाज है माशाल्लाह फरहान भाई की और अली भाई आपकी, क्या बात है माशाल्लाह।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ये आपकी मोहब्बत है।
0: इन्होंने आगे जो मुझे मौसम का हाल बयान किया ना, तो मेरा दिल कर रहा था शो के बाद सीधा कश्मीर चला जाऊं।
1: तो मैं बीच में नहीं हूं।
3: मैं तो कहता हूं फरहान भाई और अली भाई आप मोस्ट वेलकम, आप कश्मीर आ जाएं।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच।
3: जो एक कुदरती खूबसूरती होती है ना, और माशाल्लाह ये पर्वत, ये ग्रीनरी और चश्मे के फ्रेश पानी और जितनी भी यहाँ की सौगात हैं, और माशाल्लाह वो आपको खिलाई जाएंगी, और आप जब इस हमारे खिते में आएंगे तो आपको और भी खूबसूरत लगेगा और मतलब आप खुश होके जाएंगे।
0: इसमें कोई शक नहीं जी, आपका खिता, आपका इलाका बहुत खूबसूरत है। मैं वैसे आया हूँ, लेकिन ये कि ऐसा है कि बार बार आने को दिल करता है वहाँ पे
1: माशाल्लाह।
3: और ये आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह, मैं जैसे मैं सुन रहा हूँ और इतनी माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि कमाल की आपने टॉपिक पहले घंटे में जो डिस्कस किया और इस घंटे में, कि माँ बाप की अजमत को जितना बयान किया जाए ना
1: वो कम है।
3: वो शायद प्रोग्राम के प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बातें नहीं खत्म होंगी।
1: ऐसे ही है।
3: और अभी इतना जितने कॉलर्स आए थे, खूबसूरत बातें की इवन आपने माँ बाप के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि जिनके माँ बाप जिंदा है ना वो उनकी कदर करें, आज टाइम है।
1: बिल्कुल सही।
3: ये जब टाइम गुजर गया फिर बाद में वो पछतावा रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। उनसे पूछे जाके ना जिनके माँ बाप नहीं है कि इनकी कदर क्या होती है, और आज टाइम है, आज जो भी आप करना चाहते हैं आपके माँ बाप पास हैं, उनकी कदर करें, उनका एहतराम करें, उनकी जितनी हो सके खिदमत करें।
1: सही बात है, बहुत प्यारा मैसेज।
3: और मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपसे बात करके, तो
0: सर बहुत शुक्रिया।
3: तीन लाइनें अगर शेर की मुझे इजाजत हो तो मैं सुना दूँ।
0: जी जी जी
1: जी जी, क्यों नहीं।
3: वसी शाह साहब की हैं कुछ लाइनें।
1: जी जी।
3: अब तो मुमकिन ही नहीं उनसे मुलाकात। वैसे आप तो अरूज पे पहुंची है उसकी साथ, वैसे वही वादे हैं और रस्मों की जंजीर बार की, कब बदलते हैं जमाने की रवायात। वैसे
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत
3: एक वो दिन थे कि एक दूसरे को सोचते थे हम, एक वो दिन थे कि एक दूसरे को सोचते थे हम मिलते नहीं दोनों के ख्यालात। वैसे
1: अरे वाह,
3: मेरी हर सुबह का आगाज तेरे नाम से ही हो, तेरी यादों में कटे मेरी हर एक रात। वैसे तुम कहाँ मेरे प्यार का मियार कहाँ, वो कितनी सादगी से कर गया ये बात।
1: वैसे क्या बात है, वेरी नाइस,
3: बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत बात है फरहान भाई,
0: और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा
1: लगा।
0: अरे जनाब, ठंडी ठंडी वादियों से और खूबसूरत पहाड़ों से, झरनों से और सरसब्ज़ शादाब इलाके से कॉल थी, बड़ी ठंडी ठंडी कॉल थी, मज़ा आ गया। अस्सलामु अलैकुम,
1: फील कर रहा हूँ इस टाइम,
0: आपको लेके चलेंगे अभी।
1: जी जी।
0: अस्सलामु अलैकुम।
4: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी जी सर, कौन सा, कहाँ से?
4: आज फरहान भाई और अली भाई कुरैशी, आप दोनों को लाहौर में हम वेलकम कहते हैं।
1: थैंक यू सर।
4: तो
0: दोनों को वेलकम कर रहे हैं।
1: फरहान भाई लाहौर में होते हैं वैसे?
4: जी पता है मुझे।
1: अच्छा, नहीं नहीं, आपको प्रोग्राम में कहा है ना। हाँ सर। जी जी ठीक है, आप बताएं।
4: तो अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई को हम सुनते रहते हैं।
1: बिल्कुल
4: सही। तो ये भी कह रहे थे कि सियालकोट के आजे जो है वो बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन
1: जी जी
4: जो लाहौर
1: जो फरहान भाई हैं वो फरहान भाई हैं। मैं इजी कर देता हूँ आपको,
4: जो अली कुरैशी हैं वो अली कुरैशी हैं।
1: हाँ, सही सही सही, तो मोहब्बत आपकी
4: ठीक है। तो लेकिन आपका टॉपिक जो है वो चला कहाँ से फिर कहाँ?
0: बस सर ये हमारे शो का यही मजा है ना, कि हम कहाँ से चलते हैं, कहाँ चले जाते हैं और कहाँ की बात कहाँ हो जाती है ना।
4: वो जो हमने पीछे सोचा होता है ना कि ये पॉइंट हमने रेज करने हैं।
0: आप अपना जो आपने सोचा है वो बताइए। जैसे जैसे आपने सोचा है
1: आप इजी रहे हमारा। नहीं, नहीं, जी जी
4: जी बोले
1: जी जी बताएं बताएं आप।
4: मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी न्यूट्रल हूँ और न्यूट्रल ही रहता हूँ।
1: सही सही सही
0: चलिए आप क्या कहेंगे आप
4: जी? मैं पहले अपना नाम शेयर कर दूं
0: सर।
4: मोहम्मद उस्मान मुगल।
1: माशाल्लाह उस्मान भाई जी
0: हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं।
1: अच्छा वेरी नाइस कमाल की है
0: जी उस्मान साहब।
4: तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी बात कर रहे थे ना वालिदैन की
0: सर सर,
4: अगर इसका हम मुताला करें ना कुरान पाक का, तो एज अ मुस्लिम या एज अ कोई भी, जब हम पारा नंबर 15 पे जाएंगे ना वहाँ एक लफ्ज मिलता है उफ़। ये जो लफ्ज है ना उफ, जब हम रात को सोते हैं या सुबह को सोते हैं या दोपहर को सोते हैं या थक के गारास में सोते हैं, आके अम्मी अबू कहते हैं ना कि उस्मान हम वहां उफ, इसकी भी इजाजत नहीं
0: है।
1: अरे वाह बड़ा अच्छा कोट किया आपने।
4: यहाँ तक हालांकि हम तो नींद में है ना
1: जी जी बिल्कुल,
4: लेकिन हमने नींद में भी कह दिया अभी आगे सोए हैं तो फिर ये उठा रहे हैं, ये तो हमारे दिल में ये बात चल रही है या हमारी सांसों में चल रही है ये बात,
1: बड़ी बात।
4: लेकिन इसकी भी इजाजत हमारा कुरान।
0: बिल्कुल सही, वो ऐसे ही है ना कि अगर अगर तुम्हारे वालदैन में से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ तक न कहना और इन्हें छिड़कना ना, बल्कि इनसे इज्जत वाली बात कहना। अच्छा उस्मान इसमें ना मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, एक कमाल की अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दे दिया। हम जो छोटे होते हैं ना बच्चे या हमारे आगे से बच्चे हैं, हमारा पूरा कंट्रोल उनके ऊपर है, वो हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, यानी खिलाना है पिलाना है नहलाना है लेके जाना है बिठाना है कहीं पे भी सब कुछ। अब वो बच्चे अपने माँ बाप के मातहत होते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला ने उस मौके पे कहा है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, भाई जवानी में तो आप उनको, वो जब आप जवान हैं और वो छोटे हैं तो वो तो वैसे ही उफ नहीं कह सकते, वक्त वो है जब वो बूढ़े हो जाएं और आप पे वो वक्त आए, दैट इज़ अ टाइम कि आपने उनके आगे उफ नहीं कहना।
4: बिल्कुल ये बात आपने जो कोट की है ना ये भी आपकी मैं 100% इसको एग्री करता हूँ, लेकिन जो आजकल का मुआशरा जा रहा है ना अगर हम इसको स्टडी करें ना तो फिर हमारी जो न्यू यूथ है बिलखसूस आज की जो जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं या अल्फा बोलते हैं या जो भी है, तो उनको जरा हम जब स्टडी करेंगे ना तो वो अल्लाह माफ़ करें।
0: अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे जी और अल्लाह ताला सबको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
4: लास्ट में मैं यही कहूँगा काली भाई, जब हम माइक पे होते हैं ना तो यहाँ पे तो हमारी मजबूरी है क्योंकि आवाज चल रही है सिंगल, हम यहाँ इको वगैरह नहीं खोल सकते, जब इसके अलावा होते हैं ना फिर हम इको खोल के डबलिंग करके तो फिर हम अपनी गला जितना मर्जी खराब हो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन इधर हमारी स्टूडियो में मजबूरी है यहाँ इको वगैरह या वो डिले बेस ये चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है।
1: सही सही सही,
4: तो इससे ऑपोजिट होंगे तो फिर गला जिस तरह का मर्जी खराब हो तो उसका कोई ना कोई हल निकल
1: आता।
0: बहुत शुक्रिया, सलामत
1: ऑरिजिनल
0: दैट वाज उस्मान हमारे साथ है और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम शामिल होने का। 04-2111-0101 इज़ अ डायलिंग नंबर जिस पे आप लोगों की कॉल्स आ रही है और लेट्स सी हुज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: माशाल्लाह कौन सा?
5: सर लाहौर शाहजाद से मोहम्मद नवीद बात कर रहा
0: हूं। जी नवीद साहब क्या कहेंगे आप?
5: फरहान भाई क्या हाल
0: चाल है? सर अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत।
5: कोई अली भाई कोई मेरी तरफ से सलाम।
1: अली भाई आपको सलाम, थैंक यू वेरी मच।
5: सर मैं काफ़ी देर से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ तो मैं आपकी बातों को बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ
0: सर।
1: परसेंटेज अच्छी जी जी नवीद भाई आप बात करें, आप जारी रखें बात।
5: मैं फरहान भाई ये कहना चाहता हूँ अपने दिन के मुताबिक, चलो मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं लेकिन मैं ये लोगों का पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें अल्लाह ताला हर एक के माँ बाप को ان کے سروں پہ قائم
1: آمین, آمین, آمین.
5: لیکن کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی.
6: بالکل ایسے ہی
5: تو جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو بعد میں رسومات ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا, وہ لاکھوں روپے کے پھل لا کے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں, صحیح ہے نا؟
6: بالکل ٹھیک ہے جی, صحیح ہے جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک موضوع پہ بات کر رہے تھے, ایک اور خود کو ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتے, اس پہ کیا کہیں گے
5: سر؟ خود کو اپنے دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے بدلنا, ہم نے تو کچھ نہیں نہ بدلنا. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے جو اندر کی بات ہوتی ہے انسان نے جو کرنی وہی ہوتی ہے.
6: بالکل ٹھیک,
5: مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی بدلنے, کسی نے کچھ بھی نہیں بدلنا.
6: بالکل ٹھیک سر,
1: پیاری بات,
6: پوائنٹ آ گیا,
1: پوائنٹ آ گیا.
6: تھینک یو, بہت شکریہ جی, سلامت رہے جی. اوکے جناب, 11:53 ہو جاتے ہیں ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے, میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان خان اور علی قریشی ہمارے ساتھ. لاسٹ
1: کال شامل کرنے, ہوز دا لاسٹ کال آفٹر نائٹ,
6: لیٹس سی,
1: لیٹس سی,
6: سیکنڈ لاسٹ.
1: اچھا,
6: السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام,
7: میں لاہور سے کرن.
6: جی جی کرن, کیسی ہیں آپ؟
7: ٹھیک ماشاء اللہ, بہت اچھا شو ہے آپ کا.
6: بہت شکریہ کرن, آپ بتائیں. جی جی,
7: ہاں جی, میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی.
6: جی جی بالکل کریں.
7: آپ کس نے اپنا نظریہ بتایا تو میں بھی بتانا چاہ رہی ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ انسان نہیں بدلتا, وقت بدلتا ہے. جیسے ہم کپڑے چینج کرتے ہیں, گھر چینج کرتے ہیں, کلاسز چینج کرتے ہیں, اس طرح انسان نہیں بدلتا, یہ دور بدلتا ہے. کسی کی نظر میں ہم بدل رہے ہیں مگر ہم نہیں بدل رہے.
6: بہت اچھا, بہت اچھا کرن.
7: میری کزن سن رہی ہیں تو آپ وش کر دیں.
6: کون سی کزن آپ کی؟
7: آپ نا, یہ میری نا اکتوبر میں شادی ہے.
6: کس کی؟
7: آپ وش کر دیں.
6: آپ کی کزن کی؟
7: میری.
6: اچھا, آپ کی اکتوبر میں شادی ہے, یعنی کہ نیکسٹ منتھ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بہت اچھی کرے. آپ جی ضرور, بہت سی دعائیں آپ کے لیے کرن. اوکے جناب, کرن کے لیے بہت سی دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بہت اچھے کرے. کرن, السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام سر, کی حال ہے؟ ٹھیک ہو
6: سر؟ اللہ کا شکر ہے جی. راوی دے کنڈیوں کال آ گئی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواواں آ گئی نا سانو.
8: جی سر بالکل سر, راوی دے کنڈے تے سر کال آئی ہے. تے سر علی صاحب, تہانوں وی سر سلام.
1: وعلیکم السلام.
6: علی صاحب مصروف نے موبائل تے.
8: اچھا جی,
1: راوی شدید پانی کوئی نہیں تے اپن کہانی کوئی نہیں تے سنگ بیلیا کوئی
6: نہیں. میں نے کہا 12 بجے کے بعد سنانا آپ
1: نے, سنڑی
6: آپ نے پہلے شروع ہو گئے.
1: ارے راوی سے
6: سر, سر سر
1: سجاد علی
8: سر سلامت رہو سر, ماشاءاللہ سونا پروگرام تے سونیا گلاں سب کو لے دو بھی تندرستی.
6: بہت شکریہ مودی جٹ جی, بہت شکریہ, زندہ رہو, سلامت رہو.
8: فرحان صاحب تہاڈا سانو انتظار ہی سر رہنا.
6: سر تسی ساڈا فون ہی نہیں چکدے, اسی تہاڈے علاقے پھر پھرا کے آ بھی جانے, تسی فون نہیں چکدے, کی کریے پھر؟ میں راوی دے کنڈے کھلو کے اچھی اچھی آواز ماری, میں کہ یار بودی جٹ جتھے سامنے آ جائے, نہیں نظر آیا, شیر آئے, چیتے نظر آئے نے, شیر نظر آئے نے, مینو پتا نہیں کی نظر آ گیا, بودی نہیں نظر آیا. بس
8: سر تسی دیکھو نا, اوتھے راوی کیڑی جگہ تے کھلو کے راوی دے کنڈے دے واجا دیندے رہے
6: سر. تساں مینوں کہیا سی راوی تے کدھرے وی کنڈے آ کے کھلو کے میرا نام لے لیو بس.
8: سر بالکل
6: ملتان روڈ تو.
8: ہاں جی سر بالکل, بکر بڈی جیسے شیرا کوٹ سر.
6: چلو کرشی پاک چلیے.
8: سر ساڈا نمبر سر تہاڈے کول موجود, فرحان صاحب انج نہ کرو, اسی تے تابے دار ہاں, تسی ذکیر بنو. میں کری فل لگیا ہاں, میں واقعی کرے فرحان صاحب راوی دے کنڈے کھلو کے واجا دے
6: بڑی آوازاں ماری نے, یقین جانو تہاڈا نمبر ہی پتہ نہیں, جڑا نمبر تسی دتا او کہ کوئی نمبر ملدا ہی نہیں ہے. جناب بہت ہی جڑے ہمارے ساتھ تھے,
1: वो अभी बात करी थी मैडम कि वक्त बदलेगा तो उस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते
6: हैं।
1: तो ये बात ही है आंसर, वक्त की बदले, बात है,
6: बदले बदले से नजर आते हैं सरकार हैं।
1: वक्त की है इसमें बात है, कभी कभार वक्त भी बहुत कुछ बदल देता है जिसका मैं तस्वीर नहीं
6: किया। एक्चुअली वक्त ही बदलता है,
1: बिल्कुल ऐसी है,
6: और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलाव आ जाती, चीज़ें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, और ये नहीं होता कि जैसे हम सोच रहे होते हैं ज़िंदगी में वैसे ही हो, ये भी नहीं है। ज़िंदगी बड़ी
1: खूबसूरत चीज़ है, और मैं ज़िंदगी के बारे में हाँ सब दो लाइन सिर्फ कह देता हूँ
6: जल्दी से।
1: कभी कभार हम बड़ा उलझते हैं कि यार ये भी नहीं मिला हमें, ये भी नहीं मिला हमें, मिल जाना चाहिए, फलां को मिला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो मैं मेरी बड़ी स्ट्रांग बिलीवर हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इस दुनिया में किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। सो जो मिला है उस पर हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। जो नहीं मिला, जो आप समझते हैं कि आपको मिलना चाहिए, उस पर आप सब्र करें और इंशाल्लाह वो मिलेगा। मेहनत करें, एफर्ट करें और लगन से काम करें।
6: किसी को अली कुरैशी मिल गया, किसी को अली कुरैशी नहीं मिला। सर इजाज़त,
1: थैंक यू सो मच,
6: बहुत शुक्रिया
1: आपके टीम का, आपकी जो इंटायर टीम है FM 101 लाहौर की,
6: और चाय का,
1: सैदी भाई की चाय का, आपका, आपके लिसनर्स का, और स्पेशली जो कॉलर्स आज प्रोग्राम में शामिल हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।
6: और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी, दैट वाज अली कुरैशी विद अस। मुझे भी चाहनी है आपसे इजाज़त इसी अपनेपन के साथ कि आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और दुआ के लिए जब हाथ उठाएं तो मेरा नाम फरहान खान है, मुझे मेरी पूरी टीम को बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों आसानियाँ अता फरमाएँ, आपको और हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है जी, इसको खूबसूरती से गुजारिए और छोटी छोटी खुशियाँ उसको तलाश कीजिए, आपके अंदर हैं, अपने अंदर तलाश कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रहे, और ज़िंदगी ने इतबा की और सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे के प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह ने गबान एंड लव टू ऑल। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत से दिलकश ट्रैक के साथ, अल्लाह ने गबान एंड लव टू ऑल।

0: और 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ नहीं हूँगा, 3 घंटे जो है वो मजेदार प्रोग्राम होने लगा है आज। और क्योंकि मैं जब प्रोग्राम करने आ रहा था तो 2 जो है वो चमकते धमकते सितारे जो है वो FM 101 के मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा जी कि कुछ रोशनी जो है वो हम भी आपके साथ आज जो है वो बांटेंगे, अपने लिसनर्स तक पहुंचाएंगे। और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी रोशनी जब मुझ जैसे सितारे पे पड़ेगी जो कि डिम है, थोड़ा मदम है, तो वो भी चमकेगा। क्योंकि जब चमकने वाले सितारे होते हैं ना, जहाँ कहीं रोशनी होती है और अगर आप उस रोशनी के पास खड़े हो जाएं, तो अगर आप रोशन नहीं भी हैं तो आपके ऊपर रोशनी पड़ती है। ये बात मैंने एक जुम्मे को सोची थी और एक जुम्मे को मुझे पता चली थी, आखिरी से आखिरी जुम्मे को, कि जब आपके इर्द गिर्द कुछ चमकने वाली चीज हो, जब रोशन हो, जहाँ से आपको रोशनी मिल रही हो, तो अगर आप उसके कहीं करीब खड़े होते हैं तो आप भी उसकी रोशनी से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो फिर ऐसा भी हुआ था कि मैंने उस दौरान ये सोचा था कि इस दुनिया में जो चमकने वाले सितारे हैं उनके पास ये रोशनी कहाँ से आती है। एक पॉइंट नजर आया जिस पॉइंट से उन चमकते सितारों के ऊपर रोशनी पड़ती है, और जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी आगे लोगों तक मुंतकिल करते हैं, और जब उन तक रोशनी मुंतकिल होती है तो फिर ये भी मैंने सोचा कि क्या ये रोशनी इनकी वजह से पड़ रही है या ये चाहते हैं कि इनके ऊपर रोशनी पड़े। तो फिर जवाब मिला कि नहीं, ये अपनी रोशनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जहां से रोशनी निकल रही है ना, वो रोशनी चाहती है कि इस पे भी रोशनी पड़े, उस पे भी पड़े और उस पे भी पड़े। तो रब्बे कायनात जो नूर है, और रब्बे कायनात जिसके पास रोशनी है, जो नूर वाला है, वो नूर और रोशनी जब बांटता है और दूसरों को देता है और उसकी बुनियाद से आपके ऊपर रोशनी मिलती है, तो जो आपको रोशनी दे रहा होता है, बेसिकली जिससे रोशनी ले रहा होता है, वो उसके इख्तियार में होती है कि किसको कितनी रोशनी देनी है। आज के प्रोग्राम में जी मेरे साथ 2 जो है वो चमकते चमकते सितारे हैं जी, और आपके मोस्ट फेवरेट जो है वो आरजेज, आज जो है वो मेरी मुलाकात उनसे हुई और आज हमने बड़ी एक अच्छी जो है वो गुफ्तगू की, बहुत अच्छा जो है हमने टाइम स्पेंड किया। तो हमने सोचा कि जो आगे आने वाले 3 घंटे हैं उनमें भी हम इकट्ठे जो है वो जरा बैठते हैं, थोड़ी और गपशप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं भरा ना, बढ़ास खत्म नहीं हुई। तो जनाब सरप्राइज को खत्म करते हैं, मेरे साथ जो है वो बैठे हैं जिशान नासिर, आपके वन ऑफ द फेवरेट आज। और जिशान नासिर को मैंने कहा यार क्या करोगे जिशान, घर जाके क्या करना है, इधर आओ यार प्रोग्राम करते हैं। तो जिशान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम खुर्रम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस इन योर शो, और इट इज इंडीड अ प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन विद यू। और मटन कढ़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है आपका जो आज हमने हकीकत बता रहा हूँ। और मेरे साथ साथ एक और बेहतरीन आवाज, ऑल्दो के बहुत पहले से रेडियो कर रहे हैं,
0: उनके बारे में मैं बताऊंगा।
1: हाँ, बहुत पहले से रेडियो कर रहे हैं, मैं सरप्राइज ही रखूंगा, आई लेट यू डू दैट द ऑनर। लेकिन हमें अभी जो है वो जाहिर है मुलाकात का शर्फ उनसे हासिल हुआ है, तो जब से मैं इनसे मिला हूँ आप यकीन जानिए मुझे एक आपका एक कैफियत होती है ना, आपको महसूस होता है कि यार, वो कहता है कि जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है, ये अलग बात है कि हम मिले आज हैं, जानता दिल तुझे एक जमाने से। जी गुरम भाई,
0: अच्छा यही तो आपका टैलेंट है ना, जहाँ बैठते हो बस वैसे ही गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, अच्छी जगह बैठा करो जिशान। अच्छा जी, जिशान नासिर मेरे साथ होंगे जी आज के प्रोग्राम में, और हम बहुत सारी गपशप करेंगे। वैसे आप जो पुराने सुनने वाले हैं उनमें बहुत सारे कंबाइन शोज जो है वो मेरे और जिशान नासिर के आपने सुने होंगे, और हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं जब भी बैठते हैं, ऐसा होता है
1: ऐसा ही है। और लोग कहते
0: हैं, अभी खुद ही कह रहे हैं,
1: ऐसे लोग कहते हैं,
0: लोग कहते हैं,
1: लोग कहते हैं।
0: तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी गुफ्तगू करें, लेकिन होता यह है कि जिशान जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जहाँ बैठता है उस तरह की गुफ्तगू करता है, तो जिशान के साथ पेस जो है वो मैच कर जाती है। लेकिन आज मेरे साथ एक और शख्सियत भी बैठी है जिनके साथ मेरा ताल्लुक कुछ गुज़िश्ता 10 से 11 सालों का है, और एक जगह हम इससे पहले रेडियो करते थे, वहाँ पे जो है वो मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। तो काफ़ी एक अलग शख्सियत जो है वो ये हैं, और जितनी इनकी उम्र है वैसे ये उम्र चोर भी हैं, वैसे जैसे वो ज़ाहरी तौर पे नजर आते हैं ना, वैसे तो हैं ही हैं, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर भी उम्र चोर।
1: आज हम इनकी जो डाइट है वो बाकायदा इनसे पूछेंगे और इनको कसम देंगे कि आपने सच बताना।
0: हाँ,
1: अक्सर ऐसे लोग कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, हम बस वो तो बस जो।
0: अच्छा पता है क्या बोलेंगे, मुझे पता है क्या बोलेंगे, कहेंगे मैं गम खाता हूँ,
1: दिल खाता हूँ अपना।
0: हाँ, गम खाने से मैं स्मार्ट रहता हूँ। तो खैर जनाब, मेरे साथ जो है मुज्तबा हैदर मौजूद है, और मुज्तबा हैदर सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
2: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
0: मुज्तबा भाई एक मिनट दीजिएगा, मैं आपका माइक चेक कर लूँ। हाँ जी,
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इस पे बोलिए आप।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: ये वाला भी नहीं है, अभी बोलिए।
3: अस्सलाम वालेकुम
0: ये वाला है।
3: जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जीशान भाई, जनाब जीशान और खुर्रम भाई, आप हमेशा खुश खुर्रम रहें और तमाम सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम।
0: अच्छा जी, मुज्तबा भाई जो है वो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में होंगे। वैसे गुंचा शौक में आप इनको सुनते हैं और मुज्तबा भाई का तारुफ यह है जी कि मुज्तबा भाई हमसे पहले के प्रोग्राम करने वाले हैं, एफएम 101 के बहुत पुराने आरजेज में से एक आरजे हैं। और जब इनको मैंने जो दूसरा रेडियो था जहाँ पे मैं प्रोग्राम करता था, तो वहाँ जब इनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं 101 इस्लामाबाद करता रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी फैसिनेशन थी जीशान उस वक्त, अच्छा आप 101 करते हैं। तो मैं इनके पास बड़ा बैठता था, इनसे पूछता था कि अच्छा वहाँ पे 101 कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से होती हैं। तो हम इनको उस वक्त से स्टार मानते थे। तो आज भी माशाल्लाह ये हैं और बीच में से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गायब रहते हैं। तो मुज्तबा भाई क्या चक्कर है कि आना जाना जिंदगी में आपने क्यों लगा रखा है, 101 पे आना जाना क्यों लगा रखा है?
3: सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हालांकि आप दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि
1: जो काबिल नहीं है कि मैं बैठ सकूं आपके साथ।
3: आप यकीन जानिए कि आप बहुत अच्छा बोलने वाले और इल्म दोस्त, इल्म रखने वाले और मोहब्बत करने वाले हैं।
0: हाँ, मोहब्बत करने वाले की बात आप मेरे हवाले से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बोलने वाले के हवाले से आप सिर्फ जीशान की बात कर सकते हैं।
1: मैं भी मोहब्बत करने वाला हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत।
0: कितनी मोहब्बत करते हैं आप?
1: बस जितनी मुयस्सर आ जाए।
3: और हम तो मोहब्बत के बारे में इतना जानते हैं, वो गुलाम मोहम्मद कासिर ने कहा था ना कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता।
0: हाय हाय हाय।
1: और एक और इसी जमीन पर है ना कि उसे मोहब्बत करना नहीं आता, हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के दो ही रास्ते हैं, एक उसे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता।
0: वाह जी
3: वाह।
0: तो जनाब आज दो शायर भी मेरे साथ आज इकट्ठे हैं और 101 इंटरनेशनल में आप शायरी भी सुनते रहेंगे। तो मुज्तबा भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको, अच्छा मुज्तबा के साथ ना जिशान मेरा बड़ा ताल्लुक रहा, जब 101 करते थे एक और शहर से, तो मुज्तबा के साथ दोस्ती भी बड़ी अच्छी रही। बड़ा लेकिन बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा इंसान है ना मुज्तबा, उम्र में तो थोड़े से हमसे बड़े हैं लेकिन लगते नहीं है। हाँ, तो मुज्तबा भाई आज ना थोड़ा अलग करेंगे, ठीक है ना? आज हम बड़ा अलग करेंगे और अलग ये करेंगे,
1: बता रहे हैं आप।
0: हाँ अलग। हम अलग इसलिए करेंगे कि आज हम मुज्तबा का वो वाला एंगल भी देखना चाहते हैं कि जो मुज्तबा ने छुपा के रखा हुआ है।
1: हाँ, क्योंकि ये एंगल तो आपका बहुत अच्छा है।
0: हाँ,
1: हम दूसरा एंगल भी देखना चाह रहे हैं।
0: आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप परेशान लग रहे हैं।
1: ये कहीं आप वो तो नहीं फील करें भाई, लैंड करा दे यार।
3: नहीं, वो किसी ने, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कैसे कैसे जावियों से हमने देखा है तुझे, ये तेरे हल्का बगोशों को भी अंदाजा नहीं। तो आप बिल्कुल,
1: और आपकी इजाजत से एक एंगल जो आपका मौसीकी वाला है वो भी आज हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे।
0: जो ये नहीं दिखाते,
1: जो ये नहीं दिखाते,
0: दिखाते
1: जो जो ये नहीं दिखाते आज हम वो दिखाएंगे
3: अगर अल्लाह दिखाए।
0: अच्छा अच्छा, जो जो चीजें हम माइक से दिखा सकेंगे बस
1: वो दिखाएंगे, बाकी
0: बाकी
1: आप महसूस कीजिएगा,
0: बाकी हम खुद देख लेंगे। तो मुज्तबा भाई आप बताइए कि जो 101 के साथ आपका सफर रहा है, कितने अरसे से आप हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स आपने किए, क्या क्या हुआ, कुछ थोड़ी सी स्टोरी हमें बताएं।
3: देखिए, माइक के साथ जो ताल्लुक़ है और रेडियो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका है। और ये लफ्ज़ों में बयान तो हो नहीं सकता जान भाई, आप समझते हैं। 101 के साथ भी जो ताल्लुक़ है वो गुज़श्ता मेरे ख्याल में 12 बरसों पर मुहित है।
0: 12 बस भाई,
3: और मैं समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो 101 है, मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्ज़ से FM 93 है, ये सब के सब चैनल्स जो है ना, ये मोहब्बत बांटते हैं।
1: सही बात है, और FM 93 वाले तो बहुत ही मोहब्बत बांटते थे, बिकॉज जब मैं किया करता था, अब आपके दौर में भी यही था कि पैनल आपके हाथ में नहीं होता था, बाहर से एक शख्स ऑपरेट करते थे, ऐसा ही है या आप पैनल आपके हाथ नहीं होता था?
3: अब तो आ चुका है हाथ में,
1: अब आ चुका है,
3: पहले नहीं था।
1: पहले नहीं था ना। हाँ, जब मैं प्रोग्राम किया करता था तो बाहर एक साहब बैठा करते थे, तो ऑपरेट करते थे।
0: हाँ, जब उनको कहा जाता था कि यार गाना चला दो, बंदा अंदर से अनाउंस कर देता था कि अच्छा चले, हम आपको राहत फतेह खान सुनाते हैं, और भाई साहब मोबाइल में लगे इशारे कर रहे थे भाई गाना चला दे भाई।
3: हमारी जो डोर थी ना उनके हाथ में थी।
0: हाँ, और वो मोटे मोटे बटन हुआ करते थे जीशान।
1: हाँ,
0: वैसे घुमा घुमा के ना, मोटे मोटे बटन होते थे। हाँ, तो वो घुमा घुमा के हम उसमें से साज मैनेज किया करते थे। अच्छा आपने वो मोटे बटन नहीं देखे?
1: नहीं मैंने नहीं देखे।
3: अच्छा वो जब
1: अब याद आया बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े से और वो
0: वो पैनल बड़ा एक अजीब सा था, और अक्सर ऐसा होता था उस बटन के नीचे ना कागज रखा होता था कि वो
1: अक्सर जैसे आप अक्सर वॉशिंग मशीन देखे
0: वो वाला सीन, वो वाले बटन होते थे।
1: गुड गुड जनाब,
0: तो आप मुस्तफा भाई ढूंढ क्या रहे हैं? को आपने पर्ची वैसे रखी हुई है?
3: वैसे पर्ची तो यहाँ रखी नहीं जा सकती।
0: अच्छा तो जनाब आपको जी गाना सुनाते हैं, मैं आपके साथ केबी मौजूद रहूंगा, जिशान नासिर आपके साथ मौजूद रहेंगे आज, और मुज्तबा हैदर होंगे। मुज्तबा थोड़ा कम बोलते हैं, क्योंकि कम तो नहीं बोलते, बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा कम पेस से बोलते हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि मुज्तबा की पेस जो है ना वो हम थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
3: कोई ऐसी बात नहीं है, और हम आपके लिए बहुत सारी बातें लेके आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, और जितनी स्पीड में आप बोलते हैं हम कोशिश करेंगे कि उतनी तो ना सही, लेकिन
1: मटन का हक अदा किया जा सके।
3: हक अदा किया।
0: अच्छा मटन के बारे में हम वापस आके बात करते हैं, ठीक है? ओके जनाब गाना सुनाते हैं आपको, हमारे साथ रहिएगा।

0: ओके जनाब, नाम लेते हैं, हम सभी का नाम लेते हैं और नाम लेना भी चाहिए, और नाम उन लोगों का लेना चाहिए जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और जो दिल के करीब होते हैं, जो जिनके आप दिल के करीब होते हैं उनका नाम भी अक्सर ले लिया करें, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं कि आप उनका नाम लिया करें। तो जिशान, कौन है आपके दिल के करीब जिनका नाम लेना चाहते हैं आप?
1: मेरे दिल के करीब मेरी माँ है।
0: अरे माशाल्लाह, आप उनका नाम तो नहीं ले सकते ना,
1: हाँ
0: अम्मा जी कह
1: सेफ,
0: सकते हैं।
1: अब मेरी माँ जी। हाँ,
0: तो
1: विशाल की माँ।
0: आप नाम किसका लेना चाहेंगे? नाम तो नहीं अम्मा जी का ले
1: नाम
0: सकते।
1: नाम
0: हाँ
1: मैं लेना चाहूँगा जी। मुझे आजकल यार वो बहुत पसंद है, शफकत सलामत अली खान साहब मुझे बहुत पसंद
0: शफकत
1: है।
0: सलामत अली खान।
1: हाँ मुझे
0: शफकत
1: बहुत,
0: इमानत अली है
1: नहीं
0: वो?
1: सलामत अली खान उनसे भी पुराने वाले हैं,
0: अच्छा, शफकत सलामत अली
1: शफकत
0: खान
1: सलामत
0: साहब।
1: अली खान
0: तो
1: साहब
0: उनका
1: जी।
0: नाम क्यों लेना चाहते हैं, क्यों मोहब्बत है
1: यार
0: आपको उनसे?
1: उनका ना मैंने रिसेंटली एक सुना है, सावल मोड़ मुहारा,
0: अच्छा
1: वो पुराने वाला वर्जन। उसमें उन्होंने, उसमें ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आता, वो इस्तेमाल करते तो मेरे बड़े दिल को लगा। तो आजकल मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, अगर वो हयात होते तो मैं उनके हाथ चूमता जाके।
0: अरे वाह वाह वाह
1: और वही आज रिक्वेस्ट हम सर से करेंगे कि हमें सुनाए।
0: वाह जी वाह। अच्छा, मुश्तबा भाई का एक टैलेंट ये भी है
1: हाँ
0: जिशान, और मुझे तो पता है कि मुश्तबा भाई कमाल जो है वो क्लासिकल गाते हैं, और ये
1: यस
0: हमेशा छुपा के रखते हैं। तो मुश्तबा भाई क्यों क्यों छुपा के रखते हैं?
2: अच्छा जीशान भाई, मैं समझता हूँ कि मेज़बान है खुरम भाई,
1: जी जी
2: इन्होंने हमें चांद बना दिया, अपने आप को सितारा बना दिया। हम कहते हैं कि वो राहत इंतौरी ने कहा था ना कि मुंतजर हूँ कि सितारों की कहीं आंख लगे,
1: वाह,
2: चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो
0: अरे
2: हम समझते हैं कि हम इनका
1: वाह,
2: इंटरव्यू करें,
1: बिल्कुल
2: क्या
1: करें
2: ख्याल
1: सर,
2: है?
1: क्या बात है,
2: तो
1: बिल्कुल
2: खुरम
1: बिल्कुल
2: भाई
1: सर
2: आप ये
1: करें।
2: बताइए कि आप
0: अच्छा
2: जो
0: अच्छा
2: माइक,
0: मैं, हाँ जी जी
2: जी हाँ, आप समझते हैं कि आपका इंटरव्यू होना चाहिए, आपसे सवाल पूछे जाने चाहिए,
0: ये
2: तो
0: तो बहुत
2: आप
0: अच्छी
2: ये
0: बात है, मेरा तो इंटरव्यू कभी किसी ने लिया नहीं यार, ये तो
2: बिल्कुल, तो
0: अच्छी बात
2: हम
0: होगी कि आज के
2: आज
0: बजाय में
2: आप
0: आप मेरा
2: लें, तो
0: इंटरव्यू
2: हम आज
0: लेंगे।
2: लेने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू।
1: जी
2: और
1: जी
2: जाहिर है कि सवाल ये है आपसे हमारा कि आप ये बताइए कि आपका जो माइक के साथ जो रिश्ता है वो कितने बरस पुराना है?
0: आई थिंक सो इट्स बेन 2012, 2012 से, और 2012 8 साल वो हो गए, और 6 ये हो गए, कितने हो गए? नहीं
1: 12, 8, 20,
0: नहीं 12 और 6,
1: 12, 6,
0: नहीं 8 और 6,
1: 8 और 6, 6, 6, 14।
0: 14।
2: अच्छा हमने कहा था कि आपने सवाल नहीं करना, आप हमसे हिसाब किताब पूछने लगे, इसलिए आपने पूछना नहीं, आपने बताना है। अच्छा ये बताइए
0: चौदह
2: आप ये,
0: साल चौदह साल पुराना है भाई।
2: अच्छा आप ये बताइए कि 101 के साथ आपकी क्या वाबस्तगी
0: क्या वाबस्तगी
1: है?
0: है?
1: ना पूछो
2: क्या
1: दिल का ताल्लुक
2: दिलबस्तगी
1: है
2: है,
1: ना।
2: क्या वाबस्तगी है, मतलब क्या समझते हैं आप 101 आपके लिए क्या है?
0: अच्छा मुश्तबा, ऐसा होता है ना कि अरे यार ऐसे सवाल पूछेगा फिर तो जिशान रह जाएगी बात सारी है।
2: अच्छा
0: चलो फिर भी जवाब दे देते हैं।
1: हाँ जी
0: अच्छा, ऐसा
1: चल।
0: है कि 101 के साथ मेरी जो वाबस्तगी है वो ये है कि मुझे अक्सर मुश्तबा भाई लोग पूछते हैं कि यार यार तुम रेडियो क्यों करते हो अब, तुम क्यों क्यों करते हो रेडियो? तो मैं उसे कहता हूँ यार कि ये कोई ऐसा रिश्ता है मेरा 101 के साथ कि मैं जितना भी थका हूँ, अब लिटरली मैं आपसे आपसे ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, लिटरली मैं जितना थका हूँ, जितना फेडअप हूँ, अगर मैं यहाँ आता हूँ 2 घंटे प्रोग्राम करता हूँ और उसके बाद मैं इतना अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ, बहुत अच्छा लगता
1: यानी
0: है।
1: आप जितना भी थके हुए आते हैं
0: हाँ
1: तो फिर पिछले जुम्मे क्यों नहीं आए?
0: पिछले जो ये हुई ना बात।
1: गया
0: अच्छा
1: हम, ये यूं खेलना है
2: और
1: अभी,
2: हम
1: ठीक
2: कोशिश
1: है?
2: करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आज जब आप
0: हाँ
2: प्रोग्राम खत्म करें ना तो आप
1: फिर
2: बाकायदा
1: हम
2: थक
1: जाए
2: जाएं,
1: वहां पे। हाँ
2: आप थक जाएं,
0: मैं थकूं?
2: आज हम थकाने की कोशिश करेंगे आपको।
0: अच्छा
1: नहीं आप भी कीजिएगा, मैं नहीं करता, आप ही कर। अच्छा भाई साहब, गाइस हम आपको बताते चलें कि थोड़ा सा आज हमारा सीन क्या हुआ, जस्ट टू ब्रिंग यू इन द कॉन्टेक्स्ट। हम सभी जो तीन साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, हमने प्लान बनाया कि हम कहीं बाहर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं। खुरम भाई सो जैनरस, सो काइंड, उनका भाई बाहर क्यों बैठेंगे, मैं आपको अपने हाथों की बनी हुई कढ़ाई खिलाऊंगा। और आप यकीन कीजिए, आफ्टर सच लॉन्ग टाइम, क्यों मुस्तफा भाई,
2: क्या
1: इसमें कोई
2: कहने,
1: मुबाला
2: क्या
1: राय नहीं है, क्या
2: बहुत उम्दा,
1: कमाल कढ़ाई, और बड़े शॉर्ट टाइम में बनाई है
2: जी
1: उन्होंने।
2: हाँ
1: और मटन कढ़ाई भाई क्या कहने हैं खुरम भाई, जबरदस्त,
0: मजेदार
1: और
0: है,
1: उसके बाद
0: मतलब
1: जो चाय
0: मजेदार बहुत
2: पिलाई।
1: है, चाय भी अमेजिंग।
0: अच्छा चाय तो मुस्तफा भाई का भी हाथ था ना, उन्होंने कहा कि मैं जो पत्ती है ना वो मैं डालूंगा, बाकी सारी चीजें तुम डालो, पत्ती में डालूंगा।
1: बल्कि बनी इनकी फरमाइश पे थी, हम
0: हाँ
1: तो कन्नी करा रहे थे,
0: लेकिन आपने पी भी
1: लेकिन
0: नहीं है, लेकिन मैंने पी है,
1: मैं तो
0: लेकिन मुझे
1: चाय पीता
0: बहुत,
1: भी नहीं हूँ,
0: हाँ
1: लेकिन
0: मुझे
1: आपने बनाई है तो अच्छी होगी सर,
0: कमाल थी, कमाल है।
1: अच्छी थी ना,
0: हाँ हाँ
1: वेरी नाइस,
0: और मैं ये कर सकता हूँ जिशान, मतलब आपकी तारीफ के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ
1: ओके।
0: कि आफ्टर माय रिटायरमेंट मेरे को रेडी लगा सकता हूँ कि
1: रेस्टोरेंट हो
0: मटन,
1: सकता है
0: है ना,
1: भाई, वैसे ही है ये, सोचा जा सकता है, सीरियसली टू
0: है
1: बी
0: ना,
1: वेरी ऑनेस्ट, है ना।
0: मटन कढ़ाई का।
1: सो और मटन जो है सेल्फ बड़ा एक कहते हैं कि एक टेक्निकल सा टास्क होता है, बिकॉज उसको गलाना और वो सब कुछ, तो इट्स रियली गुड, सो थैंक यू
0: 18
1: सो
0: मिनट में
1: मच।
0: गला
1: हाँ
0: था ना।
1: 18 मिनट में, एग्जैक्ट 18 मिनट, टाइमर लगाया हुआ था आपने। असल में बस हम बड़े अच्छे, उसमें पेस बड़ी अच्छी थी हमारी ना, ऐसा ही है कहीं ना सर, आप कहीं बात करें जो आपके ज़हन में आ रही है, आप करें, मुझे लग रहा है कि आपके ज़हन में बात आ रही है,
0: सवाल करना चाह रहे हैं।
2: कुछ बातें ऐसी हैं जो ना की जाए तो बेहतर है,
1: कर लें
0: आज कर।
2: अच्छा
1: आज कर लें
2: खाने के एतबार से।
1: हम दुआ करेंगे कि मैम ना सुन रही हूँ, आप कर लें।
0: मैंने
1: पता चले अच्छा, साथ ही व्हाट्सएप देख रहा आया तो
0: जी ये मैसेज आया हुआ उनका,
1: या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या
0: अल्लाह। अब मेरे को कोई जवाब नहीं देने वाला।
1: अच्छा
0: क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि मैं मैडम को ये कहने लगा था कि हम ये कर लें
1: और हमने ये कर लिया। तो क्या मैम कहेंगी अब तो कर लिया। ओके खैर एनीवे
2: जी। अच्छा करुण भाई
0: मटन कढ़ाई बना रहे, मैम से मैं पूछना चाह रहा था। मैम ने कहा नहीं आज तुम जो है नमक तेज डालते हो, तुमने जो ना आज मटन कढ़ाई नहीं बनानी।
1: अच्छा
0: हाँ तो अब मुश्तबा भाई के हवाले करते हैं चूल्हा।
1: हाँ आप कोई 15 मिनट अच्छी गुफ्तगू करें ताकि अगर मैम अभी फटाफट लगाएं तो कोई अच्छी रीजनेबल गुफ्तगू हो रही हो।
2: देखिये हम जो बात समझना चाहते हैं ना वो ये है कि असल जिंदगी है वो दूसरों के लिए मर मिटना है, दूसरों पर मर मिटना नहीं है।
1: क्या कहने,
2: क्या ख्याल है?
0: नहीं मेरा ख्याल थोड़ा डिफरेंट है।
2: अच्छा आप क्या समझते हैं?
0: मैं ये समझता हूँ
2: दूसरों को मटन
0: खिलाना। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए।
1: True.
0: अगर आप अपनी जिंदगी नहीं जीते तो आप किसी के लिए नहीं जी सकते।
1: ऐसा ही है।
0: अगर आप खुद ही जिंदा नहीं है तो दूसरों के लिए क्या जिंदा रहेंगे?
1: फिर तो आप जिंदा नहीं है, आप जिंदान में।
0: हाँ तो आपको सबसे पहले अपने आप के लिए जिंदा रहना चाहिए, आपको अपने आप के लिए सोचना चाहिए। और जब आप अपने लिए जिंदगी जीते हैं, अपने लिए बनते हैं, तो तब आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुद ही जो है वो बैठे हैं किसी पहाड़ में और या किसी जंगल में आप बैठे हैं और अपने लिए जी नहीं रहे आप, तो फिर आप दूसरों के लिए क्या जिएंगे? जिशान
1: सही है, हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल।
2: वैसे आजकल की दुनिया भी ना कुछ जंगल से कम नहीं है।
0: अच्छा हाँ ये तो है वैसे, इंसानों का जंगल।
1: ये आप माइक की क्वालिटी पे हद से ज्यादा एतबार कर रहे हैं, ये इतनी दूर से नहीं करता, पकड़ता आवाज थोड़ा करीब है। ये आप जरूरत से ज्यादा एतबार कर रहे हैं इसकी क्वालिटी पे, जरा थोड़ा सा आगे आगे।
2: अच्छा गुरुम भाई आप ये समझते हैं कि जो आपका ताल्लुक है रेडियो पाकिस्तान के साथ, वन के साथ,
1: वो इग्नोर किया मुझे,
2: वो आपको हमेशा नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा बाज़ औक़ात जो है ना वो बाइक में करंट भी हो।
1: नहीं ये हमने इसके ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे ना तो कुछ लगा हुआ भी महसूस होगा, जरा गौर से देखिए।
0: कुर्बत का एहसास दिलाएगा आपको।
1: ये बहुत करीब से जाके बोला जाता है, सर हैरान हो रहे हैं, ये वही ज़िशान भाई है जो थोड़ी देर पहले वो देखे सर।
2: अच्छा लेकिन ज़िशान भाई ये जो माइक है ना ये डिफरेंट है, मुख्तलिफ माइक है वो, और है ये और है।
1: अच्छा आप इधर आ रहे हैं।
2: मैं ये बात नहीं कर रहा, वो जो माइक है ना उसके करीब जाएं तो वो डिस्टॉर्शन हो जाती है।
1: अच्छा
2: नहीं
1: ये तो नया लगा हुआ है।
0: अच्छा चले ये बाद में हम बता देंगे। कौन सा नहीं है?
1: नहीं ये दो नए लगे हैं।
0: हाँ मुश्तबा भाई आप आज हमें क्या सुना रहे हैं? पहले आप कुछ सुनाएं फिर मैं गाना।
2: चलिए मैं तो सुनाऊंगा, अल्लाह का शुक्र है आप सुनाइए।
0: मैं तो सुना ही रहा हूँ।
1: हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम सुनाएंगे तो फिर नहीं ना, वो आप सुनाएंगे तो हो जाएगा, हमारे साथ चल जाएगा।
0: जो जाग रहे हैं वो भी सो जाएंगे।
2: अच्छा मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना इतने खूबसूरत सुनने वालों के लिए है, तो इसमें बजाय इसके कि हम आए बाएं शाएं करें, क्यों ना हम अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए कुछ
1: मुझे लगता है ऐसा कर गुजरे।
2: नहीं मैं वो अपने हवाले से बात कर,
1: मेरा तो चार्जिंग पे लगा हुआ है, मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं।
2: अच्छा
1: मैं तो बाद में एक मैसेज करूंगा।
2: अच्छा अब मैं अब मैं समझता हूँ कि चूंकि ज़िशान भाई आपका जो लिसनर है वो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह
1: सर, बस
2: आपसे मोहब्बत करने वाले, आपका
1: सर आपकी दुआएं आप जैसे भाइयों की,
2: और आपसे मेरा सवाल ये है
1: जनाब
2: कि रात के इन लम्हात में
1: जी
2: जब हम अपने सुनने वालों से बात करते हैं
1: जी,
2: जब उनके पास कोई भी नहीं है, जब वो तन्हा है और कोई अपनी कैफियत में है, कोई किस कैफियत में है, और आप क्या समझते हैं कि इंसान किस तरह से बात करे कि सुनने वाले के दुख का मदावा हो जाए?
1: अच्छा सर मुझे ये लगता है, मेरी इस पर थीरी है छोटी सी रेडियो के ऊपर, कि रेडियो पे आप जितनी हो सके वो गुफ्तगू करें जिससे लोग मुस्कुरा सकें, चाहे वो कितनी ही नॉन सीरियस गुफ्तगू की ना हो, क्योंकि ख़ास तौर पे रात के टाइम लोग थके होते हैं और लोग जो है वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसी गुफ्तगू सुने जिसमें उनको ये एहसास हो कि वो जो है इंजॉय कर रहे हैं।
2: अच्छा घुमा फिरा के ना आप हंसी मजाक पे ला रहे हैं। अच्छा چلیے آپ سے سوال نہیں ہے خرم بھائی, آپ سے سوال ہے.
1: اچھا میرا مزہ نہیں آیا جواب.
2: آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج آتے ہوئے خرم بھائی کی اور ذیشان بھائی کی آپس میں کوئی ایسی
1: بات
2: ہوئی ہے,
1: وہ بتا نہ دیجیے.
2: وہ اشاروں میں بات کر رہے تھے تو جس کی روشنی میں مشتبہ حیدر جو ہے نا وہ پٹنے والا ہے, تو لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو میں چاہوں گا کہ
0: ابھی جب میں گانا پلے کیا تو آپ نے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا.
1: وہی ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن سر آپ نے ایک پلان بنا کے ابھی,
2: لیکن آپ کی آنکھ کا اشارہ نا وہ میں کیا سمجھوں پھر.
1: نہیں نہیں کچھ ٹھیک ہے سر,
0: ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے
1: ادھر آئے ادھر آئے آپ ادھر آئے
0: آپ میرے سامنے میں آپ کے سامنے
3: آپ ادھر آئے آپ آپ آئے ادھر.
2: اچھا بیٹھنے سے کیا ہوگا بھائی,
0: اب میں آپ کو دیکھوں گا نا,
2: اچھا
0: اب وہ اشارہ دیکھوں گا, میں اشارہ نہیں کر پاؤں گا.
2: اچھا سیدھا
0: اشارہ. اچھا جی آپ کو بتاتا چلوں کہ ذیشان کو ہم نے سوئچ کیا ہے, ذیشان میرے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مصطفیٰ بھائی
1: غریب کا بچہ, اچھے مائک پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا نا,
0: مائک بہت اونچا کیا ہوا.
1: اچھا
0: تو
1: اس سے زیادہ کتنا دور جاؤں گا.
0: اچھا اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا, یہ خرخر بھی کر
1: بہت ہی نازک
0: ہے, کنٹرول میں
1: ہاتھ کیوں نہ لگائے آپ, شار نکل جاتی
2: ہے. مائک کے بعد قریب آ چکے ہیں, اچھا دوری رکھیے, بہت قریب آ چکے ہیں مائک کے آپ.
1: اچھا اور دور جاؤں
2: جی,
1: یہ لیں چلے آپ ٹھیک
2: ہے, چلیے
0: بالکل ٹھیک ہے, چلیں اب شروع کریں. مجھے بابا
1: اب آپ کو ہم نے مائک بھی اچھے والا دیا ہوا ہے, اب بھی اگر آپ نہ بولے تو پھر ہم ناراض ہو جائیں گے آپ سے.
2: جی آپ سنیے ہم بولتے ہیں,
0: سنائیے آپ نے سنانا ہے ہمیں,
1: وہ آپ
0: پہلے آپ ہمیں راگ.
1: چلیے میں آپ کو تین آپشن دے دیتا ہوں, اگر آپ کو وہ آتا ہے ٹھیک نہیں تو پھر اپنی مرضی سے کچھ سنا دیں. ساول موڑ
2: کچھ سنا نہیں سکتا میں, یہ آپ یقین جانیے. اچھا سائن آپ خود فیصلہ کیجیے کہ کیا کوئی آر جے گانا گا سکتا ہے, میرے خیال میں نہیں.
0: کیوں نہیں,
2: سوائے ذیشان بھائی کے.
1: سر اتنے آرجز ہیں جو گاتے ہیں,
2: آپ بہت اچھا گاتے ہیں ذیشان بھائی.
1: سر میں اچھا چلے پرومس میں بھی سناؤں گا, خرم بھائی بھی سنائیں گے اگر آپ پہلے سنائیں گے. اور آپ نے نا وہی سنانا ہے جو ابھی کون سا وہ بڑا اچھا سنا رہے تھے آپ, وہ بڑا مشکل سا ہے وہ پی آئے نا سم تھنگ کچھ اس طرح کا تھا
0: جو مجھے آپ نے سنایا تھا, میں نے ریکارڈ بھی کیا
1: وہ جب ہم کڑھائی بنا رہے تھے اور آپ سنا رہے تھے.
0: ہاں
1: وہ آپ کو پتا ہے کڑائی سریلی بنی اس لیے تھی کہ جب بن رہی تھی تو آپ گا رہے تھے.
0: میں تو اس دھن میں مست ہو گیا تھا.
2: لیکن گا تو آپ رہے تھے نا.
0: گا میں نہیں رہا تھا, گا آپ رہے تھے.
2: ہم کھا رہے تھے جناب,
0: میں پکا رہا تھا جو بھی کر رہا ہوں.
2: اچھا گانا نہیں سنا سکتا, ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھیے میرے.
1: اچھا اچھا ویسے کیوں نہیں آپ, اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں گائیں گے تو کیوں,
2: جہاں تک بات ہے گانا گانے کی وہ ظاہر ہے کہ آپ زیادہ اچھا گاتے ہیں.
1: وہ تو بہت سارے کام ایسے جو میں اچھے کرتا ہوں.
0: ذیشان کی بات مان لی ہے, وہ اچھا گاتے ہیں. ذیشان پہلے تم سناؤ. چلو
1: میں سناؤں. اوکے
2: اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسی آواز کو شامل کرتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ دل نشین اور دل فریب اور دل آویز ہے. تو جناب
0: دل فریب دل آویز
2: جناب ذیشان, بلکہ ذیشان ہے ذیشان جی.
1: کیا کہنے قبلہ, کیا سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پری کا نام.
2: واہ واہ

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: बल्कि अन्य वाह
0: अन्य वाह वाह वाह वाह
1: जनाब, हमने सामीन बहुत ही मेहनत के साथ आमादा कर लिया है मुश्तबा हैदर भाई को कि वो सुर का जो है यहाँ पर आगाज करें
2: करेंगे
1: और
0: नहीं, हम मुश्तबा भाई कत्ल हो ना हो आज आज की रात आपसे हमने जरूर सुनना है
1: आज की रात, मजा हुस्न का जम के लीजिए।
0: आप हमें वो सुनाएं क्योंकि आप हमें कह रहे थे ना कि आप चले जाएंगे छोड़ के, कोई ऐसी बातें हो रही थी।
2: अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा भाई, आज तो ड्यूटी भी है।
0: नहीं नहीं, आप मुझे कह रहे थे ना कि आप चले जाएंगे मुझे अकेला छोड़ के, आप अभी कह रहे थे
1: दो बजे के बाद।
0: आप हमें ना अगर प्यार से मनाएंगे ना
1: तो हम नहीं जाएंगे,
0: हम नहीं जाएंगे। अगर आप हमें गाना सुनाएं आज जाने की जिद ना करो।
1: अगर आप चाहते हैं कि हम बैठे रहें तो हमें गाना सुनाते रहिए
2: चार बजे तक।
1: वो शायर कहता है खूबसूरत इंसान कुछ बात करके रात कटे।
0: तो आज अगर आप हमें प्यार से कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो,
2: हम जिद नहीं करेंगे। बात कर ऐ खूबसूरत शख्स कोई बात कर, और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं।
1: इसी जमीन पर एक और है सुन लीजिए, कहता है कि नाराज हो तो कुछ बात करो।
2: अच्छा,
1: नाराज हो तो कुछ बात करो, यूं चुप रहने से तो मोहब्बत का गुमा होता है।
0: हमने सामने बैठ गए।
1: चले यार, वो एक मेरा बड़ा पसंदीदा है, अगर आप सुना सकें आज जाने की जिद ना करो।
0: हाँ, मैंने भी वही कहा था।
1: वही क्या बात,
0: मैंने कहा अगर आप हमें प्यार से कहेंगे तो हम जिद छोड़ देंगे,
2: हम कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ भूल, वो क्या है ना कि मुनव्वर राना ने कहा था कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते
0: रहना।
1: हम दिलाते रहेंगे बेफिक्र। तो आप लिरिक्स भी निकाल लें साहब।
0: हाँ, मैं निकाल लेता हूँ
1: जी, गाइए।
2: चलिए जनाब, आप
1: चले। 3 2 1
2: चलिए जी, हम कोशिश करते हैं
1: जी, करिए।
2: आज जाने के जिद ना करूं, आज जाने के जिद ना करूं, यूं ही पहलू में बैठे रहूं, यूं ही पहलू में बैठे रहूं, आज जाते के जिद ना करूं, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात है कि यार ना करो, आज जाने के जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें,

0: जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने के
1: क्या कहने के बुला, क्या
0: कहने। सो कौन सा किबला है जिसने कभी गाया होगा। इतना मा, यही
1: हाँ,
0: स्केल
1: इतना
0: था ना,
1: मासूम। हाँ
0: स्केल यही था ना
1: हाँ यही
0: अपने।
1: यही यही यही
0: इतना मा सो रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज
1: वाह वाह
0: है,
1: वाह
0: कल की किसको खबर, जाने जा रोक लो आज की रात को, आज जाने
1: किसे
0: मेरे घर गम बाम घर गम पा घरे सवाने के जिद ना
1: वाह खान
0: करो।
1: साहब,
0: वाह
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह। अच्छा
1: वाह
0: वैसे क्या अजीब हुस्न इत्तेफाक है ना, रास्ते में शाह साहब और अभी यहाँ क्या कमाल कमाल कहा शाह साहब, थोड़ी सी रद्द बदल के साथ कि इस गायकी में इज्जत सादात भी गई है। शाबाश, आज लगा गए लगा गए
1: लेकिन
0: आपको।
1: अच्छा था ये, वैसे
0: बहुत
1: सच
0: अच्छा था,
1: बताइए
0: बहुत
1: यार,
0: अच्छा था,
1: क्या
0: मजा आया। अच्छा
1: क्या
0: मैं आपको
1: कमाल
0: बताऊं कि
1: अच्छा,
0: मैं
1: जिशान को मजा आया इस बात पे।
0: ऑफ द
1: अरे सच में,
0: एयर बात हो रही थी खुरम भाई के साथ, जिशान भाई के साथ, कि चूंकि लिसनर आपका है, आप दोनों का है, आप दोनों शख्सियात हैं, तो डोमिनेंट आपको करना चाहिए, आप ज्यादा बात करें, चूंकि हम बहुत ज्यादा मोहब्बत
1: हमें
0: करते हैं इनके
1: मुझे
0: साथ।
1: सबमिसिव पसंद है, मैं डोमिनेंट।
0: हम चूंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिशान भाई के साथ, खुर्रम भाई के साथ, और ये वाक्यतन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं,
2: हम आपसे बहुत
1: हम
2: मोहब्बत
0: चाहते
2: करते
0: हैं
2: हैं,
1: आप
2: हमारे
1: आज
2: दिल के
1: मोहब्बत
2: बहुत
1: होती
2: करीब।
1: हुई
2: ओके,
1: देखें।
2: अच्छा ये वाला गाना मैं आपको सुनाने लगा हूँ जी, वापस आते हैं फिर मजीद बात
0: और
2: करते हैं, ठीक
0: आप सामीन आपको हम गाना सुनाने लगे, और इस यकीन के साथ कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप दुरुस्त कर
1: वो
0: लीजिएगा।
1: फिर नहीं
0: और
1: बताऊंगा, साहिबा नहीं
0: ये
1: करेंगी,
0: देखिए
1: लेकिन
0: किसी
1: आपने
0: को,
1: बड़ा अच्छा गाया
0: किसी को
1: है।
0: आईना दिखाने का ना इससे अच्छा तरीका नहीं है कि
1: आपको
0: आप
1: पता है फरीदा खानम साहिबा अगर सुन रही होती है वो आपसे नाराज होती है, इसलिए नहीं कि आपने बुरा गाया, इसलिए कि आपने उनसे भी अच्छा गाया
0: अरे अरे वो बहुत, देखिए जिशान भाई
1: है। जी,
0: मैं आप लोगों की इज्जत इसलिए करता हूँ कि जिसे खुदा ने
1: कि
0: इज्जत
1: आप
0: दी
1: दो
0: हो,
1: हैं
0: नहीं जिसे जिसे खुदा ने इज्जत दी हो ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। आपका
1: एसेस में तो
0: लिस्टर बहुत
1: शर्त
0: ज्यादा है, अब हम गुंजाइश ऑफ कर रहे
1: है
0: होते
1: सर,
0: हैं
1: साथ साथ
0: कभी
1: माशाल्लाह
0: कभार, ऐसा
1: कहते
0: होता
1: रहे
0: है
1: ये ना हो के
2: आज जो हमने
0: कि
2: गाना
0: आपका
2: गाया
0: लिस्टर साथ साथ
2: जान
0: सुन रहा है।
2: बोरिया बिस्तरा बांध लो,
1: ऐसे ही है ये,
2: मैं तो
1: सर
2: बांध
1: साथ
0: लिया
1: साथ
0: मैंने
1: माशाल्लाह कहते रहे ना।
0: क्योंकि
1: हाँ जी, हाँ जी
0: अच्छा
1: सर,
2: चलें जी गाना सुनाते हैं आपको फरीदा खानम साहिबा की आवाज में।

0: चलो जी,
1: वाह जी वाह,
0: क्या कहने,
1: कमाल नहीं हो गया वैसे। बस पता नहीं क्यों ईशान बोलने का दिल ही नहीं कर रहा यार,
0: कैसे ऐसे ही है वो, उनका भी नहीं दिल कर रहा, इनबॉक्स आना शुरू हो गए उनके, गुड वॉइस, ग्रेट वॉइस, ये वॉइस, वो सबको रिप्लाई कर रहे हैं अब।
2: अच्छा, बिजी हो गए भाई, खुदा के लिए क्या हो गया भाई
0: और सुनाए।
1: अच्छा फिर मैं अच्छा,
2: अब जीशान भाई
1: इंटरव्यू आप मेरा लेने लगे थे,
2: हम हाँ। भी गा चुके जीशान भाई,
0: अब
2: भी
0: आपकी
2: गा चुके
0: बारी है खुरम भाई,
2: खुरम भाई अब
1: यार लिटरली बहुत बुरा गा,
0: तो खैर है अब ये नहीं करना,
1: मैं बुरा गाऊं?
0: हाँ हाँ, तो अच्छा बुरा क्या होता है, गाना गाना होता है। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट तो मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता।
0: कौन सा है, कौन सा? वैसे
1: मेरा फेवरेट, मैं गा नहीं सकता ना।
0: अच्छा इंडियन है?
1: हाँ।
0: अच्छा ठीक, बताया गया ना लोग समझेंगे पता नहीं गंदा गाना
2: जो कि होगा।
0: हाँ।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं उसका ये बता सकता हूँ आपको कि उसमें वो कहता है कि क्या कहता है यार,
0: वही
1: क्या कहता है लिटरली, मैं उसके लिरिक्स
0: भूल गया होगा, आपने पिछले जुमे सुना होगा।
1: हाँ बाकी भूल गया मैं, भूल गया यार।
2: अच्छा गुज़श्ता जुमे ना वो जो सुना आपने वो सुना दीजिए।
1: मैंने सुनाया शुरू,
0: बल्कि वो हमें दिखा के जाए,
2: वो जो आपने कैफियत दिखी ना
1: हाँ।
2: वो आप दिखाइए।
1: नहीं वो मैं अच्छा दिखाऊं जो कैफियत मैंने इतनी मुश्किल से महसूस
0: की। अगर आप वो कैफियत देखना चाहते हैं आपकी पूरी कमेटी निकल जाएगी उसमें।
1: यस ये है।
0: हाँ जी
1: आप ऐसा करते हैं, तैयार हैं कमेटी,
0: ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम 75,000 डालते हैं दोनों और आधी आधी कैफियत देख लेते हैं।
1: हाँ ये अच्छा, इसकी एक और टेक्निकल चीज है।
0: अच्छा
1: जिशान, उसकी एक और टेक्निकल चीज है कि आप ना उसको आप आधा आधा नहीं कर सकते।
0: आए, आए, फिर क्या फायदा, जिस चीज को बंदा शेयर ही ना कर सके, छोड़े मुझे तो भाई, फिर क्या फायदा जिस चीज को बंदा शेयर ही ना कर सके,
1: क्योंकि आपकी जो कैफियत है वो आपकी है।
0: मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उसको हम शेयर कर सकेंगे।
1: मुझे भी देना फिर थोड़ा सा,
2: पहले आप बताइए
1: थोड़ा सा, मैं भी शेयर कर सकता
2: हूँ। आपने कैफियत देखी ना उसके बारे में बता दीजिए।
1: उसके बारे में क्या बताऊँ, सवाल करें,
2: सवाल ये कि आप एक हफ्ते में आपने क्या महसूस किया अपने आप को और उससे पहले?
1: अच्छा एक हफ्ते में तो नहीं महसूस किया, वो मुश्तबा भाई कुछ लम्हों की बात थी, वो कुछ दो मिनट आई थिंक, सो मैक्सिमम दो मिनट हुए होंगे मैक्सिमम, जिसमें हाँ जिसमें
0: सिर्फ दो मिनट,
1: सिर्फ दो मिनट की बात है। और दो मिनट में बस वो जो मैंने महसूस किया, बात दो मिनट की है वैसे, दो मिनट की भी नहीं है वैसे, दो मिनट से भी कम वक्त है।
2: अच्छा हाँ। भाई ये
0: देख एंजॉय कर रहे हैं ना मानते हैं कि नहीं, हमारे साथ बैठ के सर हम बड़े बड़े महजब लोगों को इस ट्रैक पे ले आते हैं, आप तो बोलिए तो सही।
1: मुझे तो अभी भाग गया जी।

0: हाय हाय हाय हाय हाय मिस्टर बाबा मजा आया फिर
1: इतना खुल के पूरी जिंदगी में नहीं हंसा मैं
0: आहा
2: बस सर देख लें पर
1: हंसाने के लिए बहुत शुक्रिया
0: अच्छा मुझे तो बाबा भाई ने लिटरली स्टूडियो में लेट गए थे
1: अच्छा मुझे हंसी का दौरा पड़ता है
0: अच्छा
2: माशाल्लाह
0: हंसी मुझे तो बाबा मजा आया फिर
1: इतना खुल के पूरी जिंदगी में नहीं हंसा मैं
0: आहा
2: बस सर देख लें पर
1: हंसाने के लिए बहुत शुक्रिया
0: अच्छा मुझे तो बाबा भाई ने

0: अच्छा
1: और मैं हंसते हंसते ना फर्श पे लेट गया
2: जैसे आज लेटे
1: जैसे आज
2: मैं मिस आउट कर गया आपकी वीडियो बनाना,
1: बनाई आपने
0: लेकिन यार वो बड़ी नेचुरल थी, जो आप पहली दफा लेटे हैं वो बड़ा नेचुरल था यार, बड़ा जबरदस्त लेटे हैं आप, मैं कहता हूँ क्या कहने के बुला
1: मैं कहता हूँ लेटाने वालों के क्या कहने
0: सारा कमाल लेटाने वालों का है।
2: कमाल बोलते आप मुश्तफा भाई, कमाल बोलते आप,
0: मैं कहता हूँ ऐसे ही बोला करें। हाँ ये बड़े अच्छे, वैसे ये बड़ा आपका हिडन टैलेंट आज जो है वो अनहिडन हो रहा है। अच्छा वो बात जहाँ से शुरू हुई थी, दो मिनट से, हाँ दो मिनट से आगे और फिर गाना उन्होंने सुनाना,
1: दो मिनट की कैफियत देखी ना उसी के बारे में बता दीजिए हमें कि वो क्या कैफियत है, मतलब आपने क्या सोचा, अपने आप को कहाँ पाया, मतलब किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी दरिया में, किसी जजीरे में, आसमान पे, कहाँ?
2: मुश्तबा भाई, ना कोई दरिया था, ना कोई पहाड़ था, ना कोई समंदर था, ना कोई जमीन थी, ना कोई आसमान था, वो वहाँ है जहाँ सब हैं और जहाँ वो है वहाँ सब है।
0: हाय हाय क्या
1: हाय हाय
0: क्या बात, क्या बात,
1: क्या कहने।
2: अच्छा लपेट लपाट के मैंने बता ही दिया आपको।
0: हाँ हुण गाना सुनाओ सही है ना जी, आप सुनाए उनको आज वो मूड में, पहले आपने उनका मूड नहीं था बनाना, आप मूड बना दिया, वो कुछ चाह रहे आप सुना रही, ऐसे ही ना मुश्तबा भाई, मैं आपके साथ हूँ,
2: क्या
0: जिस तरह देख रहे हैं ना मुश्तबा भाई।
1: नहीं आपने वो जो कैफियत आपने देखी दो मिनट की,
0: एग्जैक्ट वही बताया जो गाड़ी में
1: बता रहे थे आप, एग्जैक्टली
2: मुश्तबा भाई ना चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम करने के बाद कहीं और ही जाऊं, फिर
0: ऐसे ही है,
2: अभी तो मुझे कहीं लेके जाना चाहते हैं, मैं बस उसी वक्त पे गया था। हाँ जो आप
0: पैसे लगे थे ना उस टाइम पे, बिना पैसे नहीं लगना होता तो हम भी चले जाते,
2: 75-75 की जो बात हुई है ना तो उसको डबल कर ले, 75
1: ठीक है फिर करते हैं इंशाल्लाह। शोज के पैसे जो है ना वो
0: बस मेरा भी चेक आ जाए यहाँ से, आपकी भी पे आ जाए, करते हैं यही काम करना है अब, हमने डन हो गया,
1: अब जमा करते रहे।
2: लेकिन उसकी एक शर्त भी होती है कि आपने लेटना नहीं होता,
0: लेटाना होता
2: आप लेटना नहीं है, आपने घूमते रहना है,
1: कुछ बात नहीं ऐसी है,
2: आप घूमने
1: का जवाब में नहीं दे सकता,
2: आपने घूमते रहना है उसमें, आपने लेटना, बाकी लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, और बस आपने घूमते रहना,
1: आंखें बंद करनी,
2: आंखें आप बंद कर सकते,
0: आंखें खुद ही बंद हो जाती है
1: गुजर रहे हैं अभी
0: मैं, और सब अच्छी बात क्या है कि मैं बिना पैसों के गुजर रहा हूँ,
2: नहीं पैसे तो आपको मिले,
1: और कहीं खुदा ना करे इस कैफियत में गुजरते गुजरते गुजर ही ना जाए आप,
0: अल्लाह अकबर, अल्लाह
1: अल्लाह जिंदगी दे आपको,
0: अगले अगले जो में फिर आप बैठे होंगे कि हैं पिछले दिन हम प्रोग्राम कर रहे हैं,
1: अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी अता करे, तुल्य उम्र दे आपको,
0: आमीन।
2: चलो मैं कॉलर लेता हूं और कॉलर से पूछता हूं कि आप मुश्तबा भाई ने गाया,
0: उम्मीद यकीन दुआ ईमान,
1: मुश्तबा भाई को छोड़ नहीं सकते क्या?
2: नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ सकते
0: सर, आज भी तो पकड़ना है सर, इतनी मुश्किल से तो आज हमें
2: हाथ है हमारी
0: हुई है।
1: वैसे आप देखिए कि मेहमानों का आप क्या हाशर करते हैं,
2: वालेकुम सलाम, बताइए जी सर, हम मेहमानों का क्या हाशर करते हैं हम,
3: सर आज तो जो क्या बोले कि विधवा भाई को
2: आप लेटे तो नहीं है,
3: स्टेशन पे दोबारा आने नहीं देना है, जो आपको ये तभी हो रही है,
2: किसने आने नहीं देना, देना
0: कह रहे हैं वो खुद आएंगे ही नहीं,
2: किसने आने नहीं देना, नहीं ये शो करेंगे
0: और लाइव
2: तो करना चाहते हैं
0: और लाइव शो करेंगे,
2: लाइव शो। अच्छा आप मुझे बताएं, आप बड़ा हंस रहे थे,
3: बहुत अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल में आप और निशान भाई ने दोनों ने मिलके कहीं एक प्लान किया है, प्लान करने के बाद फिर इनको जो है आपने प्रोग्राम में बुलाया,
2: बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं अब हल्फन कहने लगा हूं,
0: आपको कैसा हो गया,
2: हां मैं ये, अच्छा ये प्लान मेरे बारे में कर रहे हैं, मैं खुद भी प्लान कराना चाह रहा हूं, ये कर नहीं रहे,
3: लेकिन हो गया है ना,
2: हाँ हो गया, बस हो गया, कुछ चीजें हो जाती है ना बिना बताए हो जाती है,
3: हो जाती है, वो नेचुरल होती है।
2: हाँ तो अभी ये मुश्तबा भाई लेट गए थे यहाँ स्टूडियो में
3: जी,
2: तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप,
3: बहुत आला किस्म का प्रोग्राम में निशान भाई होते हैं ना तो चार चांद,
2: अरे वाह वाह वाह, मुश्तबा भाई क्या कहना चाहेंगे इस बात पे।

0: भाई खुद एक चांद है। और
1: वाह
0: वो मुनव्वर राणा ने कहा था ना कि
1: अच्छा, एक रिक्वेस्ट है छोटी छोटी सी।
2: जी,
0: उनने क्या
1: मुझ बाबा जी, मैंने एक गाना सुना है कि बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी।
2: हाय
1: हाय
2: हाय हाय। हाँ जी, अच्छा कौन सा गाना सुनना, सुनाएंगे सुनाएंगे।
1: निशान भाई
3: जी जी
1: आपने भी अंबेरी कर रही है।
3: हाँ करूंगा करूंगा, मोबाइल छोड़ो वाजा फड़ो ना मुझे भाई। हाँ जी, गा मेरे मनवा गाता जा रहे तू, ये मेरा ख्याल से
2: आप जरा गुनगुना, आप जरा गुनगुना के सुनाए ना, ताकि मुझे भी याद।
3: पड़ोसी मुल्क है यार,
2: फिर नहीं गुनगुना बस, फिर आप कॉल बंद करते बस। हाँ खबर
0: देखिए, देखिए सर ये पड़ोसी मुल्क का है और शरीफ लोग, आप
2: चलो सुनाते हैं आपको।
0: हाँ जी जी, और जो शरीफ लोग हैं ना वो पड़ोसियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखते,
3: वो चाहे जितना मर्जी देखें।
0: हाँ वो देखते।
2: हाँ
3: अच्छा,
2: आपने नहीं आंख उठानी।
3: अगला आन दो मुश्तवा भाई, अगला गाना।
2: चलो जी
3: गरम गरम सुटो।
2: चलो जी पूछते हैं जी कि कौन सा गाना सुनना है मुश्तवा भाई से। आज मुश्तवा भाई से सारे गाने सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: या अल्लाह तेरा शुक्र।
2: जी जनाब, आप हफ्जा हाशमी, हाजरा हाशमी। तो हाजरा हाशमी बताइए जी कैसा गाया फिर मुश्तवा साहब ने। मुश्तवा भाई क्या है, राजा?
0: अरे बहन मैं रात कहीं नहीं था, शो में था।
2: मुझदबा भाई कह रहे हैं कि मैं नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आप रात वाले हैं या चेंज हो गए।
0: जी मैं रात वाले ही हूँ। जी
2: रात वाले हैं,
3: रात वाले ही
0: जी,
3: उनको
2: राहत वाले हैं ये।
3: रात
2: को आप रुला रहे थे,
3: आप
2: सारे
0: देखिए वो मिजाज है ना प्रोग्राम का, गुंचा शौक।
2: हाँ।
0: उसमें कुछ अच्छी बातें करनी है,
3: हमें तो कभी नहीं पता चला कि उसका मिजाज ये है कि रुलाना है रात में,
0: और
3: हमें तो किसी को नहीं पता।
0: माशाल्लाह इन दो साहिबान के दरमियान बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ।
3: वो हैरान हो गई हैं,
2: हैरान हो गई कि मुश्तबा भाई वही मुश्तबा भाई है जो रात वाले।
0: अच्छा बहन
3: जो रुला रहे थे,
0: क्या नजर भी आते हैं क्या?
3: दिल की आंख होती है मुश्तबा भाई।
2: चलें ठीक है जी, मुश्तबा भाई वही हैं वैसे।
0: बहन बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, हम वही हैं।
2: हाँ ये बहुत पतले हैं, स्मार्ट से वही हैं, वही है वही, हल्फन कह रहा हूँ वही हैं। ये रात वाले हैं, पतले हैं, स्मार्ट हैं, वही
3: जो रुला रहे थे
2: जी। बाकी बहुत मासूम है।
0: इन दो साहिबान ने ना मुझे इतना, आप यकीन जानिए कि इस वक्त मुझे
3: नर्वस कर दिया है।
0: तारे नजर आ रहे हैं,
2: तारे नजर आ रहे
3: हैं, मानते हैं कि नहीं? फिर मटन काम कर
2: आज चांद है, हम तारे हैं,
3: मनो ना मनो मटन खालस सी।
2: अच्छा तारे नजर आ रहे,
0: कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मटन में वो 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी हुआ था?
3: हाँ वाकई ये वो जो बच गया था वो डाला तो नहीं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं वैसे, है ना? सीरियसली
0: ऐसे भी आ रही है,
3: हंसी भी आ रही है
0: किसी वजह के, है ना?
3: हाँ। सिर्फ आबशार नजर नहीं आ रही,
2: नहीं आ रही।
3: उसका इंतजाम कर रहे।
0: अच्छा वो ड्रैगन्स भी नजर नहीं आ रहे ना?
2: चैलेंज ये ओके जी, गाना सुनाते हैं आपको और फिर अच्छा कॉलर कनेक्ट हुए मैं,
3: बंद कर दे यार।
2: वालेकुम सलाम,
3: वालेकुम सलाम
2: जी जी जी जी भाई। अच्छा मैं आ रहे हैं तुसी लस्सी तैयार रखो।
3: की कह रहे मैं कंडे ते बैठा
2: लॉर्ड रावी दे कंडे ते बैठा। ओ यार ये मेरे बड़ा खास लिसनर है, बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो, बड़े मजे की बात है। अच्छा अच्छा सुन लो जिशान
3: जी जी,
2: ये बोबी जट साहब हैं। अच्छा। ऐसा हुआ था एक दफा, ये मेरा अच्छा बोबी मेरे साथ रहना ठीक है। बोबी साहब है ना, एक दफा ऐसा हुआ कि प्रोग्राम कर रहा था मैं और इनके कुछ दोस्त थे, ये चले गए सरगुदा, वहां माल्टों के बाग में ये बैठे हुए थे और इनको मैंने कहा कि आपने पाकिस्तान का नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: अच्छा
2: तो उन्होंने नारा लगाया, मैंने कहा नहीं आपने अकेले नहीं, आपके दोस्तों ने भी लगाना है। तो इनके दोस्तों ने ना नारा लगाने से इनकार कर दिया।
3: अच्छा
2: तो मैंने कहा जट साहब ये कैसे आपके दोस्त हैं कि आपके नाम के ऊपर पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे? तो जट साहब ने इनको वहीं फेंका अपने दोस्तों को, गाड़ी खींची फैसलाबाद चले गए।
3: अच्छा,
2: और उनके साथ इन्होंने दुआ जनाजा बंद कर दिया।
3: ओए होए होए,
2: तो कमाल है जाट वैसे।
3: और उस दिन के बाद कंडे पे रह रहे हैं,
2: कंडे पे रह रहे हैं। उस दिन के बाद से ये रावी के कंडे पे हैं और इनको दुश्मन ही आते।
3: क्या बात है मुश्तबा भाई
0: जी,
3: देखे वो इतनी गहरी बात बता दी।
2: क्या कहेंगे आप जट साहब की पर्सनालिटी के बारे में, क्या आप एनालिसिस करेंगे?
0: जट साहब तड़ी खैरा मन
3: रावी दे कंडे दे डेरा अगे नेरा है फिर कम मेरा है। क्या कहने की
0: बात। अच्छा जिशान भाई, आपने मुझे रावी दे कंडे दे आपने एक जुमला लगाया था ना।
2: चलो फिर सुनो सुनो, जट साहब सुन दे रहे हो ठीक है।
3: होए होए होए होए होए होए
0: और वाइद वाइद आरजे मैं सी के जिने इंदी गल सुनी भी है ते जवाब भी दिता है।
2: अच्छा, बाकी कोई इंदी गल नहीं सुनदा?
0: आप पूछ लो।
2: क्यों जी जट साहब?
1: जी सर,
2: तुसी मैं दसो केड़ा आरजे जी नु कट देया सी रेडियो जे तुहाडी गल नहीं सुन रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी जट साहब, अपना ख्याल रखो ठीक है।
4: ख्वाबे तमन्ना,
2: ख्वाबे तमन्ना है। चलो जी जिशाने गाना सुनाते हैं फिर वापस आते हैं ठीक है ना। टेम्परामेंट बहुत बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया।
0: अभी तक इन्होंने गाना नहीं सुनाया,
3: वो आप फोर्स नहीं कर रहे उनको।
0: आप अभी जरा थोड़ा सा ना आप बदलते हैं चीज को
3: ठीक है,
0: क्योंकि वरना लोग बोर हो जाएंगे।
3: लोगों को बोर नहीं करना।
0: लोगों को बोर।

नहीं, आप बहुत अच्छा सर, मैं एक बात बताऊँ, आपकी साइड बहुत अच्छी है, ब्रिंग इट ऑन। क्यों सर? बट ये तो जरा ब्यूटी, आपका ब्यूटी वाला पार्ट बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं, सही मजाक चला। हाँ हाँ, आपको जो आप बाकी जो आप टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी है।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफा फिर खुश आमदी मनोवा इंटरनेशनल सुन रहे हैं आज ही आप और जिशान नासिर मेरे साथ बैठे हैं, द नटी बॉय और
1: मुश्तबा भाई, बातें करनी थी हो गई, गाना सुनाए अब
0: मुश्तबा भाई हमारे साथ बैठे, मुश्तबा भाई कौन गाना सुनाएगा वैसे,
1: अगे पीछे माइक भी नहीं चल रहे आज, माइक भी चल रहे हैं बंद करो ता भी चल रहे हैं,
0: चलो चलो मुश्तबा भाई सुना,
1: मुश्तबा भाई
2: एक बार मैंने पूरे घंटे का शो कर लिया और बाद में पता चला कि माइक ऑफ है।
0: अच्छा
1: अच्छा अच्छा
0: आज ऑन कर
1: लिया, एक दिन आपने घंटे का शो कर लिया आगे है जुमला कंप्लीट करे ना,
2: और बाद में पता चला कि माइक ऑफ है
1: कि घंटे का शो ही नहीं हुआ
0: ये भी वैसे कमाल था। अच्छा यार कुछ कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं कमेंट भी
1: शो इसका ना वो समझ रहे
2: अच्छा वैसे मैं आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम से
1: जिशान भाई आए, जिशान भाई सुने ना, जिशान भाई मुश्तबा भाई आए, अच्छा शो होगा, बेहतरीन शो होगा।
0: अच्छा बस कर दे भाई,
2: भाई आप क्या
0: कमेंट शामिल कर लूं?
1: जी जी प्लीज
0: कमेंट शामिल कर लूं। अच्छा जी मेरे साथ जी ए बी मलिक शाह हैं,
1: सादात की बड़ा वैसे नजरें कर रहे हैं,
0: जरा करीब होकर बोलते हैं जिशान,
1: सादात का।
0: अच्छा जी सारा अली जई हैं जी मेरे साथ और जिशान के प्रोग्राम को जो है वो पसंद कर रही हैं, और जिशान नासिर बड़े मैसेज आ रहे हैं यार तुम्हारे लिए,
1: बस क्या और
0: माजिद हुसैन है जी। अच्छा माजिद हुसैन आईडी और कह रही है मैं रिमशा हूँ, ये क्या माजिद हुसैन रिमशा ने क्या, अच्छा अबू की आईडी है, तो अबू की आईडी उनसे मैसेज किया जी, अबू की आईडी से कि मैं रिमशा हूँ मरी से हूँ, पहली दफा मैसेज किया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है,
1: बहुत शुक्रिया।
0: और इसके अलावा जी हिरा फातिमा है मेरे साथ और वो कह रही हैं जी कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे महसूस, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो महसूस हो गया था कि आरजे जिशान नासिर जो है वो आए हैं, और अगले वीक फ्राइडे पे भी जो है ऐसा लग रहा था कि जिशान नासिर
1: आएंगे, कहते हैं दिल को दिल से राह होती
0: है, अगले वीक उनको फ्राइडे पे भी लग रहा था कि आप आएंगे,
1: हाँ
0: फिर आप क्यों नहीं,
1: शायद आप बिजी हो जाए ना दोबारा,
0: फिर आप क्यों नहीं आए,
1: मैं भी नहीं था यहाँ पे,
0: आप भी उधर ही थे,
1: मैं कहाँ जा सकता हूँ वहाँ पे, मैं सादा सा आदमी।
0: अच्छा जी तूबा अली मेरे साथ है जी, वेलकम कह रही हैं, और जिशान नासिर को जी वो वेलकम कह रही हैं,
1: बड़ी मेहरबानी,
0: जिशान नासिर को वेलकम कह रही हैं, सारा अली जई कह रही हैं जी, आयशा बासी जो है वो जिशान नासिर, अच्छा जिशान नासिर को नहीं कह रही है वेलकम, सलाम कह रही हैं जी, अभी मोहम्मद है और वो कहती हैं जी के बेटा जी आज सरप्राइज हो गया, जिशान भी आ गया, नाइस प्रोग्राम हो गया जी,
1: थैंक यू जी,
0: और हिरा हुसैन मेरे साथ हैं जी, और तूबा अली हमारे साथ हैं जी, और इसके अलावा जी हिरा हुसैन ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं जी कि छुपे रुस्तम निकले, ये तो कौन
1: आप
0: मुश्तबा की बात कर रहे हैं,
1: बनता वैसे आप क्या
0: मेरा मैं नहीं दे जायो जानने वाले मैं नहीं दे जायो ठीक है, और कोमल आई है जी हमारे साथ यूएसए से प्रोग्राम सुन रही है,
1: वाह,
0: और वो कह रही है कि जी आज जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि आप बहुत खुश हैं, जिशान नासिर बहुत खुश हैं,
1: बस
0: ठीक है जी, जिशान
2: आयशा करें हम तीनों खुश भी हैं,
1: आमीन, इस प्रोग्राम के बाद भी,
0: अमरीन लाला जो है वो कहती हैं बहुत बुरा लगा,
1: किसको,
0: अमरीन लाला को,
1: तो उसे कहा छोड़ दो ना सुनो तुम प्रोग्राम,
0: हाँ इसके बारे में
1: बुरा लग रहा है ना, तुम ना छोड़ सुनो, हाँ सीरियसली क्यों मुश्तबा भाई ऐसे ही है,
0: बहुत बुरा गाया,
1: मतलब
0: उन्होंने कहा बहुत बुरा गाया,
2: अच्छा
0: हाँ अमरीन
1: आप क्या कहना चाहेंगे मुश्तबा भाई,
0: मुश्तबा भाई क्या कहेंगे,
2: बस ठीक है ना, बुरा गाया तो अच्छी बात है, आइंदा आप कभी कहेंगे नहीं गाने का,
1: नहीं बल्कि
0: नहीं आपने तो कहा बहुत अच्छा,
1: आपने बहुत नहीं, बाकी सारे लोगों ने अच्छा भी कहा है, वो हाँ, एक खातून असल
0: एक में अमरीन ने कहा कि बहुत बुरा गाया, तो उसको क्या
2: नहीं,
0: कहेंगे,
2: तो मैं गायक थोड़ी हूँ भाई,
1: असल में नहीं, नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी खातून होती है खानदान में जो ईद वाले दिन फौत होकर ईद खराब कर देती है बंदे की
0: क्या कहेंगे अब क्या कहेंगे,
2: बस मैं
1: कोई बात नहीं,
0: कह दे
2: मैं किसी की फौतगी का ऐलान नहीं करूंगा जी,
1: अच्छा बात सुने ना, देखिए आप जैसे जा रहे थे वो ठीक था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल, हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं
0: अच्छा जी
2: बदल जाएंगे,
1: नहीं नहीं नॉट एट ऑल,
2: अच्छा
1: अभी तो मैंने बड़ी आपके साथ बड़ा लंबा सफर तय करना है अभी तो हमने शेयरिंग बेसिस पे बहुत सारे काम करने
0: हैं ओके जी, तुबाली
2: 75,000 रुपए जमा कर रहे हैं,
0: और अरूज राजपूत हैं जिन्हें 75 नहीं 75 मिला के होते हैं
1: 1.5 लाख,
0: डेढ़ हाँ 1.5 लाख,
2: वही तो बता रहा हूं,
1: तो आपके रेफरेंस से कोई हमें डिस्काउंट,
0: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल, मैं कोई के थे को एमपीए लगा
1: ये कौन में कार बना रहे हैं
0: मैं कोई तो कार बना रहे हैं अच्छा जी अरूज राजपूत हैं जी, कहती हैं कि प्रोग्राम जो है वो आपका सुन रहे हैं, और मलिक मोहसिन हैं जी वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं जी,
1: बड़ी मेहरबानी,
0: और इसके अलावा हलीमा महमूद हैं वो देख रही हैं प्रोग्राम,
1: क्या कहने के बला,
0: ठीक है, और इसके अलावा जी खदीजा आरिफ हैं और कहती हैं जिशान नासिर यू जस्ट लाइट अप द शो.
1: अरे यार थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं ये सीरियसली मुश्तबा भाई और खुरम भाई की वजह से जाहिर है लोग साथ होते हैं तो फिर मजा आता है गुफ्तगू करने का. और हम ऑफ द एयर यही बात कर रहे थे कि मुश्तबा भाई का विट जो है, हम विट की बात कर रहे थे कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा विट है. नॉर्मली आप जो प्रोग्राम करते हैं बहुत बेहतरीन करते हैं, आपसे जब मुलाकात भी रहती है तो आप गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपका विट जो एक कॉमेडी की टाइमिंग है आपकी बहुत अच्छी है सर, आप जरूर एक्सप्लोर करें अपनी ये साइड.
2: सर बहुत शुक्रिया. मैं देखूंगा, गौर कराऊंगा अपने आप पे.
1: अच्छा देखिए शीशा में अब जो हो रहा था ना वो इमेज बन गया लोगों के ज़हन में. अब आप जितना मर्जी स्पेसिफिकेटेड बन जाए अब वो नहीं होगा वहां
0: पर. उनको लेटते हुए आप दिखाई नहीं दिए, सुनाई जरूर दिए.
2: आप मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक आध प्रोग्राम ना
0: निशान के साथ
2: का दिया जाए और गुंचा मुझसे ले लिया जाए.
1: वो कहेंगे जो रात वाला ले लो, ये वैसे भी खाली हो रहा है स्लॉट.
0: जी जनाब कौन बात कर रहे
1: हैं? अदनान.
0: जी अलवी साहब कहिए.
2: बहुत शुक्रिया सर.
0: वाह वाह वाह वाह. अब कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? अच्छा ऐसा है ना अलवी, आज से कोई 8 साल पहले मैंने इनको ये मशवरा दिया था, इनको इनके इनके गाने रिकॉर्ड भी किए थे, लेकिन ये जो भाई है ना बस.
1: और उस टाइम पे तो यूट्यूब के इतने रूल सख्त भी नहीं होते, अभी तक आपका मोनेटाइज होता चैनल. जाए यार
0: मुश्तबा भाई.
3: नहीं हकीकत बात है, इनकी आवाज जो है ना बहुत सुरीली है और इस तरह के जो मतलब चाहिए हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट. लेकिन ये छुपे हुए बैठे हैं.
0: नहीं ये बात है ना, हम कोशिश कर रहे हैं,
1: वो हिडन टैलेंट है ना.
3: तो बात से शो करने आते थे मतलब.
0: हाँ
2: अच्छा आप मुझे जानते हैं क्या? अरे वाह.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: 3.5 घंटे कौन मोटरवे बन गया अब तो यार.
2: अच्छा उस वक्त मोटरवे नहीं था ना.
1: अच्छा 3.5 घंटे
2: रोड था ना.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं आप करें बात, हम आपस में बात कर रहे हैं.
2: आपको सुन भी रहे हैं हम.
3: आप तीनों इकट्ठे हो गए ना तो वजह तो ना रोड पे माहौल बहुत प्यारा बन गया.
2: हाँ। वैसे तीन बंदे जहाँ इकट्ठे होते हैं ना तो आपको तो मालूम है
1: यार. वैसे हम बारी बारी किया करें.
0: हाँ
1: है ना,
0: बारी बारी इकट्ठे हो गए.
1: एक दिन आपके प्रोग्राम में एक दिन. हाँ जी जी जी जी मुश्तबा भाई, एक दिन आपके प्रोग्राम में, एक दिन मेरे प्रोग्राम में, एक दिन खुरम भाई के प्रोग्राम में. ठीक है
2: बिल्कुल ठीक है.
1: बस जब तक हम में से कोई फारिग नहीं होता.
2: फारिग तहसील नहीं होगा.
0: जी जी निशान सुनो ना यार.
1: मैं सुन रहा हूँ सर, कानों से सुनना है, मैंने सुन रहा हूँ. हाँ हिल रहा हूँ हिल रहा हूँ. हसो ना यार, उसने जोक
2: आपने
1: बस अब आगे की कहानी ना बताना हमें.
0: तुम आओ मैं मिलती हूँ.
1: आओ मिलती हूँ. मेरे से ऐसी बातें ना किया करो यार, मुझे नहीं पता ऐसी चीजों का, मैं शादीशुदा नहीं हूँ.
0: ओके ओके जनाब अलवी जी मेरे साथ जी. अच्छा अगले कॉलर लें
1: अलवी. सदा सदा दया आले होने
2: जो मोहब्बत की बातें करने की बात हो रही है ना. हाँ मुनव्वर राणा कहते हैं आप चुके प्रोग्राम
1: सर. ये मुनव्वर राणा ने सारी बातें आपको ही बताई है कि मतलब हर बात में मुनव्वर राणा.
2: अच्छा मेरे पसंदीदा शायर.
1: अच्छा माशाल्लाह.
2: मुझे अब्बास ताबिश बहुत पसंद है, मुझे अहमद फराज बहुत पसंद है, मुझे मुनव्वर राणा मेरे दिल की बहुत.
1: सर आपने अहमद फराज साहब का नाम लिया, मैं एक शेर मेरा पसंदीदा आपको सुनाऊं. आपको
2: इरशाद.
1: अच्छा उसके बाद फिर आप मुनव्वर राणा साहब की बात बताइएगा. वो कहते हैं कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला.
0: वाह वाह वाह.
1: दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला.
0: हाय हाय हाय हाय.
1: तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने. क्या मेरा तो इंतजाम हो गया, अब आप अपना देख ले. मुश्तबा भाई आप अपना देख ले, मेरा इंतजाम हो गया.
2: और
1: जी जी वो मुनव्वर राणा साहब कुछ कह रहे थे, उनका आप सुना रहे थे मोहब्बत के ऊपर शेर.
2: हाँ, हाँ, वो क्या है कि हम हाथ इससे पहले सुनिए कि हम
1: सुरभ भाई के हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं क्यों
0: यार ये फोन जो है ना वो
2: अभी तक वो असर उतरा नहीं है ना।
1: अच्छा
2: हम हाथ कटाने को भी तैयार है लेकिन वो हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। वो मुनव्वर राणा ने जो मुझे बातें बताई हैं वो मैं गाहे गाहे मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
1: गाहे गाहे यक निगाहे
2: वो कहते हैं कि हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर,
1: ओए, ओए,
2: ओए। ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है।
1: वाह
2: तो हम इससे इत्तफाक नहीं करते। बहरहाल उन्होंने
1: अच्छा एंड पे इत्तफाक नहीं करते, बात कह के
2: बिल्कुल नहीं करते हम इत्तफाक क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं और
1: तुम मुसलमान है तो
2: आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है। लेकिन वो चूंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी ना तो वो उसको हम
1: अच्छा मेरा ना इसके ऊपर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तब्दील है अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीटिंग का मौका नहीं मिला और आपने नहीं की तो कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कि चीटिंग का मौका मिले और आप ना करें।
0: वाह
1: शायर कहता है कुछ इस तरह तेरी मोहब्बत का एहतराम किया, कुछ इस तरह तेरी मोहब्बत का एहतराम किया, कई हसीनों को हमने खुद पे हराम किया।
2: वाह वाह वाह। और आप ही के वो अहमद फराज कहते हैं जो कि आप उनको पसंद करते हैं मैं भी करता हूं, वो कहते हैं कि इस कदर मुसलसल थी शिद्दतें जुदाई की, आज पहली बार उससे हमने बेवफाई की।
0: वाह जी वाह, बहुत कमाल। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम। मोहतरमा कैसी हैं आप जी? मोहतरमा कहिए। मेरे पेट में आज जरा दर्द है। जिशान से दम कराऊं? जिशान जो है ना वो एक ही दम जो है इसको आता है तो जिशान को एक ही दम आता है वो बहुत खतरनाक है। तो मैं उसको
1: जिसको कहते हैं नाक में दम,
0: हाँ तो मैं वो करवाना नहीं चाहता।
4: नहीं वो आपको नहीं करेगा, आपका वो बहुत
0: आपको कैसे पता है?
1: क्योंकि मैंने इनको नहीं किया।
0: अच्छा इन पे भी डाले दम
4: जिशान भाई?
1: जी जी बहन मुझे पता है ये इससे बात करके इन पे भाई कह देंगी ना। तो इतनी मेहनत करेंगे क्या फायदा? मुश्तबा भाई आप करें ना बात आपसे। यार हमारे साथ मुश्तबा भाई मौजूद है। मुश्तबा भाई
0: वो आपसे बात करना चाह रही है। मुश्तबा भाई से
1: मैं बेहतर ही हूँ ना, मैं पुराना हूँ।
0: आप बात करना, आपसे बात करना चाह रही है, आप बात करें। मुश्तबा भाई नहीं करेंगे,
1: मुश्तबा भाई को आपने संभाल के रखा हुआ है।
4: जी भाई।
1: जी जी
4: आपने तमाशा देखा?
1: तमाशा देखा है
0: आप? ये तमाशा करते हैं दिखाते
1: आपका कौन सा फेवरेट है तमाशा में आजकल?
4: आपको क्या लगता है कौन जीतेगा?
1: मुझे लग रहा है बबरिक शाह जीत जाएंगे इस दफा।
4: नहीं नहीं बबरिक नहीं।
1: हाँ
4: वो जो जवेद है ना?
1: हाँ राबिया जवेद।
4: हाँ
1: राबिया जवेद अच्छी। आप देख रहे हैं
0: तमाशा? मैं बिल्कुल नहीं देखता।
1: ओके
4: तमाशा करता हूँ
1: करवाते हैं। बंद कर देंगे अब कुछ और पूछ लेगी उसके बाद।
0: नहीं पूछे दे, पूछे पूछे पूछे आप मोहतरमा, आपको इजाजत दे।
1: पूछे पूछे मन मजा आ रहा है। इकरा भी ठीक, इसरा हाँ इसरा भी अच्छा खेल रही है। शी इज प्लेइंग गुड।
4: मुझे लगता है ना राबिया और जेद भाई,
1: जेब भाई सही सारे जीत जाएंगे बेटा। कोई हारेगा भी, टोटल 800 बंदे रहेंगे शो के अंदर, अगर सारे ही जीत जाएंगे कोई हारेगा भी कि नहीं? मैं बताता हूँ सर सारा कॉन्टेक्स्ट आपको। मुस्तफा भाई हार हो रही की गल्ला हो रही
0: है जी?
4: हारेंगे
0: हाँ, हारे कौन हारेगा?
4: हारेंगे
1: जितनी रिकॉर्डिंग पहुंच गई
0: बबरे का हारेगा। चलो जी बबरे का हार गया।
1: ओके चलो तुम्हारे मुंह में मिर्चे।
0: आप माइंड नहीं करते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, भी नहीं है करना भी नहीं चाहिए क्योंकि करना नहीं चाहिए ना।
1: मुश्तबा भाई कह रहे हैं यार निशान भाई ऑफ द एयर तो बड़े सुफियाना बातें मेरे साथ कर रहे होते हैं।
0: चलो ठीक है आपको माफी देता हूं।
1: ओके अल्लाह हाफिज़ जी। बस अच्छा वो तमाशा एक रियलिटी शो है जो चल रहा है, बड़ा फेमस है। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब। रेडियो बंद कर दें। अच्छा तो ये छालियां थूक के बात करें ना?
5: जी मैंने कर दी यार माशाल्लाह। आप तीनों भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲਗਾਈ ਆਪਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਬਾਈ,
1: لاہور آئیں گے تو آپ ہمیں کیا خاطر توازو کریں گے؟ آپ بتائیں ہم آ جاتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے ہم ادھر سے لاہور کو گاڑی ڈال لیں، آپ بتائیں آپ کیا خاطر توازو کریں گے؟
0: ہاں جی ویلے آج،
1: ہاں جی
0: دسو
5: ویلے آئیے،
0: چلو کتنے کتنے آئیے دسو؟
5: مال روڈ ہے،
0: مال روڈ،
5: ہاں جی مال روڈ،
1: جیسے لاہور کا اسٹوڈیو ہے
0: اتھے کی کر دیا تسی، ادھر کیا کرتے ہیں آپ؟
5: میں تو ادھر کچھ نہیں کرتا، آپ ادھر آئیے، آگے سے آپ کو جانے ہوں گا،
0: چھوٹے آلو بڑے آلو، چھوٹے آلو کو بڑے آلو سے الگ کرتے ہیں۔
1: اکے جی وہ کہتا ہے میں گیا رشتہ لایا، انہوں نے کی کرتا ہے منڈا، کہتا جی فرنیچر کا کاروبار، بعد جو پتہ لگا مسواک بیچتا سی۔ بھائی اب کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کے چہرے پہ اداسی ہمیں نہیں جچتی۔ وہ کہتا ہے جائز نہیں لگتا مجھے غم سے تیرا رشتہ، سن میری یہ گزارش اسے چہرے سے ہٹا دے، کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے مڑ ملا دے، آنکھیں تیری میری آنکھوں سے ملا دے۔ واہ واہ کرے نا سر،
2: واہ واہ، کیا کہنے سبحان اللہ۔
0: چلے مصطفیٰ بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ اگلا؟
2: ابھی تو کالر سنا رہے
0: نہیں، وہ ان کی تو سن لی ہم نے نا،
1: وہ چلے گئے کالر،
0: ہاں چلے گئے کالر، وہ تو بتا رہے تھے نا کہ میں چھوٹے آلو بڑے،
2: وہ آتا ہے اسے بتا دیجئے مائکس آف ہے آن ہے؟
0: نہیں آن ہے، مائک آن ہے۔
2: اچھا صحیح،
1: آف پہ ہم اتنی
0: بات کریں، آف ہم کیوں کریں گے، ہم پروگرام کرنے آئے ہیں بھائی، مائک آف کرنے تھوڑی ہے۔
1: تھوڑا نہیں بھی کسی کا دھیان جانا، تسی پوا کے چھوڑو گے تیار، ہو گئی گل لگے نکلو۔
2: بات صحیح ہے، ہم نے کل ہی کے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ انسان جہاں سے گرتا ہے، جہاں گرتا ہے وہیں سے اٹھتا ہے، تو وہیں سے اٹھیں گے،
0: آپ تو ادھر گرے تھے
1: یار،
2: لیکن وہ بھی کیا کیفیت تھی نا،
0: کیا کیفیت تھی بابا، ابھی آپ سنائیں گے کیا مصطفیٰ بھائی؟ لوگ سننا
1: ہے، سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوکو آتا ہے،
2: بالکل نہیں آتا۔ اچھا ہم میرے خیال میں چائے پینے والے تھے،
1: چائے منگوانے والے تھے، اختر بھائی نظر نہیں آ رہے ہمیں، اختر بھائی آپ پروڈکشن روم میں ہماری بات سن رہے ہیں تو آ جائیں، وہ کہہ رہے ہوں گے اپنے نال نال مینوں بھی لے کے جان گے، پہلے ہی ناٹ گیا اسٹوڈیو نے تالا مار گئے، اور کہ لگے رہنا آپس میں۔
0: چلے مصطفیٰ بھائی کیا سنائیں گے، سنائیے کچھ،
2: اچھا
1: ویسے لسنرز کو مزہ آ رہا ہے،
2: اچھا ویسے فیصلہ آپ کریں گے
0: کہ ہاں آپ کیا سنائیں گے،
1: میرے ہاتھ میں فیصلہ نہ دے، میں بڑا ظالم آدمی ہوں،
2: کریں گے کہ آپ بھی سنا چکے میں بھی سنا چکا،
1: ہاں وہ آپ کہہ رہے تھے میں برا گاتا ہوں، اور وہ ہاں یس
0: میں گاتا بہت برا ہوں، کیوں آپ سارے پروگرام کی سٹیاں،
1: کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں،
0: لٹرلی مجھے نہیں گانا آتا نا،
1: خیر ہے تو ہم میں کون سا، ہم کون سا پٹیالہ گرانے سے تعلق رکھتے ہیں،
0: آپ کو گانا آتا ہے ذیشان، آپ نے اچھا گایا ہے،
1: آپ نے
0: اچھا
1: گایا ہے، بس کوئی کوشش،
0: برا گاتا ہوں بہت برا گاتا ہوں، مجھے گانا آتا ہی نہیں،
1: کوئی بات نہیں جتنا آتا ہے اتنا،
0: نہ مجھے شاعری آتی ہے نہ مجھے گانا آتا،
1: تو پھر دو دو بنو ون انٹرنیشنل کیسے مل گئے؟
2: کیا بات ہے،
0: مجھے گانے سنانے آتے ہیں کمپیوٹر سے،
1: اچھا ٹھیک
0: ہے، شاعری دیکھ سے دیکھ کے پڑھنی آتی ہے،
2: اچھی باتیں کرنا آتا ہے،
1: لیکن لیکن تھوڑا سا آپ ایسے سنانے لگے تھے یار، سنانے لگے تھے نا آپ، سنائے نا جو آپ سنانے لگے تھے، سنا دیں بس،
0: ذیشان مجھے آتا نہیں ہے تو،
2: لیکن آپ سنانے لگے تھے، اس کے بعد پھر ذیشان بھائی بھی سنائیں گے،
1: ہاں پھر آپ سنائیں گے دوبارہ،
2: ہاں پھر میں سنائیں گے،
1: ٹھیک ہے،
0: بے وفائیوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، بے وفائیوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، او میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا کہ قاصد نے دکھڑا سنایا، او میں نے خط

मैंने पूछा के कल शब कहाँ थे, पहले मुस्कुराए फिर जल के बोल।

0: नहीं है
1: जी भाई।
0: ओ मैंने फोन पे नंबर मिलाया के मम्मी ने फोन उठाया।
2: वाह।
0: ओ मैंने फोन पे नंबर मिलाया उनकी मम्मी ने फोन उठाया उनके हाथों पे उनके

0: कण कण कण भूल जाने के काबिल ढुम ढुम ढा ढा यो यो यो भूल जाने के काबिल नहीं है बाबा भाई।
1: अच्छा मैं समझता हूँ कि ये कितनी अच्छी मम्मी है जिन्होंने फोन उठा के, ये मम्मी कितनी अच्छी है जो अच्छा फोन उठा करके दे दिया।
0: वो जेंजी वाली मम्मी है
2: तो मम्मी ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि बेटा उसके हाथों
0: में, बल्कि वो दी मम्मी आपने देखी होगी फिल्म एक दी मम्मी, ये वो वाली मम्मी है। बड़ी अच्छी फिल्म है, इंग्लिश की है
2: तो हमें हम तो हम
0: हर इंग्लिश की फिल्म वैसी नहीं होती सर। अच्छा जी सर गाना
1: अभी तो इन्होंने गाया ना,
0: हम मैंने भी गाया ना सर, मैंने इतना लंबा मैंने जोर लगा दिया है वो आप वो बात क्यों पूछते हैं,
2: तो आपने नहीं सुना
1: वो तो साथ दिया आपने इनका,
0: मैंने टिंग टोंग भी किया अभी
2: गाएंगे हम तो रैप बना दिया ना।
1: एक्चुअली अब मैं कोशिश करता हूं
0: माशाल्लाह
1: मैं मन जाना खैर। अच्छा जी
2: ठीक है
1: क्या सुनो आप कुछ बताएंगे तो मैं सुनाऊंगा,
2: आप हमें जो आपको अच्छा आपका दिल कर रहा है इस वक्त सुना दे। आपने अभी हमें सुनाया ना कि जाने की जिद ना करो, तो वो है कि अभी तो आए हो, वो तो आपने सुना दी ना, बाहर बन के छाए हो,
1: नहीं वो मुझे नहीं आता।
2: अच्छा कुछ भी जो आपको अच्छा आता है वो सुना दे।
1: चलिए मैं
2: आप तब तक सोचिए मैं गाना यहाँ पे सुना देता हूँ।
1: हाँ इनको ठीक है
2: ना, ओके डान जी आप गाना सुनाते हैं जी।
1: तरफ से ना वो आपको जो सुना रहे हैं गाना वो वहां से सुना रहे
2: हैं। नहीं नहीं नहीं आपने लाइव सुना ना, ये क्या कर रहे हैं आप अपने सर से मत उतारिए। खैर जी मुश्तबा भाई हम जब वापस आएंगे तो गाना सुनाएंगे आपको, हम यहाँ कंप्यूटर पे गाना सुनाते हैं जी, और जबरदस्त सा गाना है ये आपके नाम करते हैं आप सभी के नाम। मुझे आज के भी कहते हैं मुश्तबा हैदर मेरे साथ हैं, जीशान नासिर मेरे साथ हैं।

0: हेलो जी, वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल। आप सुन रहे हैं जी 144 और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं मुझे तो बाबा ही मेरे प्रोग्राम के, फिर आपका शुरू हो जाना है।
1: वो भी आप ही का
0: 19 सितंबर है जी आज 2026 है जी। शान नासिर आपके साथ मौजूद हैं
2: जी, बिल्कुल, और मेरे साथ मौजूद हैं खुरम बेग और मुश्तबा हैदर भाई। और मुश्तबा भाई अब हमें गाना सुनाएंगे, गम है या खुशी है तू मेरी लाइफ है तू।
1: चलिए मैं कोशिश करता हूँ।
2: करें करें।
0: शुरू कर ले भाई।
1: शुरू करना ही धोखा होता
0: है। अच्छा।
2: फिर तो जाहिर है, कहते हैं साइकिल की तरह होता है, एक दफा बंदा शुरू करते फिर अपने आप चलती है।
0: अच्छा चले, आप शुरू करें, जैसे आप शुरू करेंगे म्यूजिक नीचे कर लूंगा, ठीक है।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. और पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे, सुनाइए हमें.
1: गाना चेंज कर दिया हमने.
0: गाना चेंज करें, जल्दी सुना दें. इससे पहले हम बंदा चेंज कर रहे
2: हैं. बंदा चेंज कर दिया वैसे तुसी बंदा.
0: अच्छा जी,
2: बंदा चेंज करने ना तुसी बहुत माहिर है,
0: है ना? हाँ. आपको किसने बताई ये बात?
2: मैं
1: वो चेहरे पढ़ते हैं.
0: ये इतनी अंदर की बात आपको किसने बताई कि हम बंदा चेंज ना करें?
1: वो चेहरे पढ़ते हैं जिशान.
0: सादे से इस पे शेर सुन लीजिए, फिर उसके बाद मुझसे पहली सी मोहब्बत. वो आपने कहा ना बंदा चेंज, कहता है कि मोहसिन नकवी साहब का मुर्शिद फरमाते हैं कि आया है तेरे जज्बे की सदाकत मोहसिन. भाई मेरा एवरग्रीन, मेरे दिल के करीब है ये शेर, सुनिएगा. कहता है आया है तेरे जज्बे की सदाकत मोहसिन, आया है तेरे जज्बे की सदाकत मोहसिन, एक ही शख्स का तुझे मुद्दतों पागल रखना.
1: वाह जी,
2: हमें तो एक ही सजदे ने पायमाल किया. वो कौन लोग थे जिनके खुदा बदलते रहे.
0: हाय हाय हाय, हुन सुनाओ
1: ये वाला गाना. ये वाला गाना सुनाएं.

0: नहीं चाहिए वैसे, अब आप इनको माफ कीजिए, आप इनको माफ करेंगे?
1: अच्छा बहना, आपसे हम माफी चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: आपको इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है?
0: चलो कि मेरी बहन अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, यू आर द लवली कॉलर।
3: भाई मुझे कुछ सुनाना
0: था। अच्छा चलो सुनाओ, अब सारी बातें सुनेंगे हम आपकी।
3: हेलो।
0: हाँ हाँ सुन रहे हैं।
3: माशाल्लाह बहुत अच्छा
0: गुनगुना
3: रहे थे, तो माशाल्लाह।
0: कौन पहले बताओ। नहीं पहले बताओ, मुस्तफा अच्छा गुनगुना रहा था, जीशान या केबी?
3: नहीं
0: ऐसा नहीं होगा। नाम क्या बताया आपने? अच्छा एक मिनट, नाम क्या बताया आपने? नाम बता दो अपना, नाम क्या बताया आपने?
3: जी भाई मेरा नाम इरम लाहौर से।
0: अच्छा इरम, इरम पहले बताओ, मुस्तफा ने अच्छा गाया है, जीशान ने अच्छा गाया या केबी ने?
4: क्या मुस्तफा ने
2: बैलेंस ही मोक गया बेचारी।
0: ओए मेरे अल्लाह जी, मैंने माफ करी।

0: जी मुश्तबा भाई क्या कह रहे थे आप, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको?
1: कुछ भी नहीं कह रहा था
0: नहीं कुछ आप कह रहे थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
1: ऐसी कोई मसला नहीं
0: एसी हल्का कर दे,
2: ऐसी कोई मसला
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
0: एसी हल्का कर दे ठंड ज्यादा हो रही
1: है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं।
0: फिर ये पानी पिए
1: पानी नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता।
2: ओ मेरे खुदा, अच्छा गाना तो सुनने दे लोगों को, हम बहुत हंस गए यार।

0: जी साहब, ये सिलसिला अपने संग मिल तय करता हुआ अब जिस मुकाम पे आन पहुंचा है वो है गुंजाई शौक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजे ज़िशान नासिर और आरजे खुरम।
1: के बी हाँ, के बी नाम तो, आपको सही नहीं लेना आता मेरा
0: तो जनाब
1: प्रोग्राम, इसी वजह से आपका नाम सही नहीं लिया जाता।
2: और जनाब, अब आप नाम ले।
0: और जनाब इस प्रोग्राम का आगाज इन दुआओं के साथ करेंगे कि सदा खुशगवार रहिए, शादा आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जगमगाते।
2: खुरम अभी कहीं जाना चाह रहे थे, आपने जाने क्यों नहीं दिया?
0: बिल्कुल नहीं, इसलिए कि अब आपके साथ हम बैठे हैं,
1: इकट्ठे जाएंगे
2: अब और रेस लगाएंगे दोनों।
0: और आप
2: बचपन में आप लगाया करते थे किसका?
0: और आप यकीन जाने के दोनों के साथ वही मसला है, एक ही मसला है।
1: क्या?
0: जो आपके साथ है वही हमारे साथ।
2: शुक्र है मेरे साथ नहीं है। इसका मतलब मुझे शुगर नहीं है।
1: अच्छा, मेरे साथ
0: हमें नहीं मालूम था।
1: हाँ। भाई ने आपने चाय नहीं पी ना?
2: हाँ, आप लोगों ने चाय पी इसलिए मैं चाय नहीं पीता।
0: तो जनाब हम प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले खुरम भाई से कुछ सुनेंगे।
1: अल्लाह का नाम है, जो पहले सुन रहे थे वो भाग पड़े हैं। अब मुझे और क्या सुनना है?
0: खुरम भाई कोई गजल सुनाइए, कोई नज़्म सुनाइए।
1: अच्छा, गजल और नज़्म। मैं निकाल लूँ मोबाइल से?
2: तब तक कॉलर उठा लें।
0: जी
2: तब तक कॉलर उठाते, तब तक वो नज़्म ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुसी गाल कर यार। आप करें।
1: किससे बात करनी है भाई आपने? इनकी कॉल काट दें क्योंकि उन्होंने रेडियो ऑन रखा है।
2: सुना दे इनको,
1: इनको सजा
2: पनिश करें, इनको पनिश पनिश देम पनिश देम। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नज़ीर कियानी बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से।
2: जी नज़ीर कियानी साहब, मुस्तफा हैदर साहब जी बात।
3: जी जी, शुक्रिया जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और केबी का भी प्रोग्राम सुना और वेलकम ज़िशान नासिर साहब।
1: यानी साहब आपने मेरे प्रोग्राम में कॉल क्यों नहीं किया? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए।
3: जी मैं करता रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं
1: की। आप इंतजार करते हैं,
3: कंटिन्यू करता रहा हूँ।
1: आप इंतजार करते रहे कि मुस्तफा का शो कब शुरू होगा और आप कॉल करेंगे।
2: बाय द वे पिक्चर अपडेट हुई
3: है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप तीनों हमारे लिए मौजूद हैं और खुसूसन ज़िशान हैदर आ गए हैं तो माशाल्लाह।
2: ज़िशान हैदर मैं देता हूँ।
3: अच्छी बात है कि एक बात मैं जरा क्लियर करना चाह रहा था बस। आप माशाल्लाह प्रोग्राम तो ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम गया है कि आप तीनों का जो ये यादगार प्रोग्राम होगा और ये रिकॉर्डेड हुआ तो आप जिंदगी में
2: सुनेंगे। हुआ तो गए तो थी।
0: और हम क्या करेंगे कि रिकॉर्डेड ना हो।
3: और दूसरा ये है कि मैंने कहा एक करेक्शन कर दूं कि एक नगमा था वो किसी दोस्त ने कहा था कि गा मेरे मनवा गाता जावे जाना है आम का दूध। तो मेरे ख्याल है किसी दोस्त ने कहा कि ये पड़ोसी मुल्क का है। नहीं, ये पड़ोसी मुल्क का नहीं है, ये गाना है दिया और तूफान फिल्म बनाई थी रंगीला साहब ने और रंगीला की आवाज में है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा गुनगुना दूं।
2: नहीं,
0: अरे
1: कहनी साहब गाइए गाइए गाइए, निशान मजाक कर।
3: अरे गा मेरे मन गाता जा रे जाना है हम का दूर ठुमक ठुमक ना ये चल रे बयालिया अपनी नगरिया है दूर जाना है हम का दूर।
2: बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। कट्टो जी कॉल। अच्छा जी, वेल के पिक्चर अपडेट हो गई है हमारे फेसबुक के ऊपर और बिल्कुल ताज़ा पिक्चर है, बिल्कुल 5 मिनट पहले ली है हमने, जिसमें आरजे के बी यानी कि खुरम बेग, मैं ज़िशान नासिर और मुश्तबा हैदर भाई तीनों आपको मिलेंगे। तो इफ़ यू वांट टू सी जस्ट गो ऑन द पेज ऑफ FM 101 चैनल पाकिस्तान एंड कमेंट ओवर देयर। जी सर।
0: और हम कहेंगे कि मत निकल तस्वीर से बाहर मगर इतना तो हो, होंठ हिलने चाहिए आवाज़ आनी चाहिए। ये वो तस्वीर है जिसमें तीनों होंठ हिल रहे हैं और तीनों भी तीनों की आ रही है, जो तीनों है ना उनकी होंठ हिल रहे हैं और
1: हाँ, तीनों के होंठ हिल रहे हैं,
2: टोटल 6 हो गए ना।
1: नहीं, तीनों के होंठ हिल रहे हैं।
2: अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक।
1: हाँ, हाँ,
2: मैं कुछ
0: और नहीं, तस्वीर अच्छी है और बनाने वाले ने भी क्या कमाल की तस्वीर बनाई है।
2: हाँ, बनाने वाले ने भी क्या जबरदस्त स्नैपचैट बनाई है।
0: और वो उस्ताद कमर चलाए
2: पूरा। अभी ड्यूटी ऑफिसर है हमारे अख्तर भाई, वो अंदर आए ना तो खुरम उनसे पूछते हैं कि आप सुन रहे हैं शो बार? कहते हाँ मैं सुन रहा हूँ, बहुत मजे का। कहते सुन रहे हो तो बताया क्यों माइक खुले हुए?
1: अच्छा
0: वाह वाह वाह। और हम बात कर रहे थे तस्वीर की, और तस्वीर हमारी जो आई है वो बहुत अच्छी तस्वीर है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, और उसके जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे जिशान भाई और खुरम भाई पढ़ेंगे आपके लिए. और तस्वीर ऐसी है कि देखने वाली है
1: ना. आए, आए, आए, आज आपको पसंद आई तस्वीर. वैसे आपको अपनी तस्वीर पसंद नहीं आती क्यों?
0: वो उस्ताद कमर जलाल भी कहते हैं ना कि क्या ये तस्वीर.
1: अब कमर जलाल भी आ गई इंदौरी से निकल
2: कमर साहब था
0: क्या इंदौरी इंदौरी गए ने और जलाल भी साहब आ गए और जलाल तक ने तुसी. अच्छा वो कहते हैं कि तुम वो कहते हैं कि
2: बोल गए
0: तुम में जो बात है नहीं अपने शेर भूल जाते हैं जो सोवेरी तुम में जो बात है वो बात नहीं आई है. खुरम साहब
1: वाह वाह.
0: अरे खुरम साहब और
2: जिशान भाई
0: जिशान भाई तुम में जो बात है वो बात नहीं आई है. क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है?
2: अरे हाय इसी जमीन आपको मुकम्मल करें. हाँ मुकम्मल करें. अच्छा
0: वैसे जमीन इनको बहुत
1: इनको जमीन बहुत आ रही है.
2: इसी जमीन पे है
1: हमको वो आ रही है इनको जमीन आ रही है.
2: इसी जमीन पर है इसी जमीन पर है. कहता है कि तेरी तस्वीर से मुझे शिकवा है. तेरी तस्वीर से मुझे शिकवा है ये मुझसे बात क्यों नहीं करती.
1: आए हाय अच्छा इसी जमीन पे मेरे पास भी शेर है. हमेशा देर कर देता हूँ. हमेशा देर कर देता हूँ. जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो उसे आवाज देनी.
2: पानी आ गया सादा
1: यार मेरा शेर ही नहीं सुन रहे
2: हमेशा.
0: चाय नहीं. हाँ अच्छा चाय
2: अब तो फिर सवा दो हो गए.
1: मैं नहीं सुना
0: था.
1: इसी जमीन पे है कि हमेशा देर कर देता हूँ. जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो हमेशा देर कर देता हूँ.
2: किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो हकीकत और थी कुछ उसे ये बताना हो हमेशा देर कर देता हूँ. बदलते मौसमों की रुत में खुद को लुभाना हो किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो
1: माइक के सामने कहना
2: देर कर देता हूँ.
0: क्या बात.
1: हाँ मैं सुन रहा हूँ.
0: अच्छा हमारी उर्दू जबान में ना भाई हमेशा हमारी उर्दू जबान में कितनी मिठास है ना कि मतलब हम देर का लफ्ज कितना अच्छा है.
1: वैसे मिठास वाली जो चीजें हैं ना मुश्तबा भाई वो कम इस्तेमाल करनी है वरना जाना पड़ता है.
2: हाँ अभी दोनों का हाल देख रहे हैं ना. जितनी आपने चाय में चीनी डाली मैंने चाय भी नहीं पी और शुगर तो मिल ही नहीं रहा. तो देखिए मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है. चाय में दो घंटे यहाँ बैठूं और आप दोनों बैठे हुए हैं और दोनों जो है वो पांव की पंजों के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों.
1: नहीं मैं पंजों में नहीं बैठा मैं एड़ियों पे बैठा हूँ.
2: ओहो यानी कि उधर और भी ज्यादा है हालात. यार आपने जाने देना था आपने क्यों नहीं जाने दिया. ऐसा नहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि अगर वो चले जाएंगे तो आपके साथ बेवफाई हो जाएगी.
0: असल में इनको ना लेट जाने वो
1: लेट जाने की आदत मुझे नहीं आपको है. आप लेट जाते
2: देर से
1: थोड़ी देर बाद
2: मतलब देर से आने की. अच्छा अच्छा वो लेट इंग्लिश वाला लेट.
1: ओके ओके
0: मतलब जो देर से ना.
1: अच्छा देर से
0: जाहिर है कि.
1: अच्छा आपने उर्दू जबान की बात की थी ना कि मिठास बहुत है तो मैं उर्दू में खोया हुआ
2: था. सराइकी भी बहुत मीठी जुबान है ना. वो कहते हैं सराइकी इतनी मीठी जुबान है कि दूध नू भी खीर आंदे.
1: वाह वाह वाह.
2: कहते हैं उस विच तुसा ये भी किसी ने कहना होगा ना कि भाईजान तुसी तो पागल हो गए साईं तुसा तो बादशाह बंदे हो.
1: वाह वाह वाह वाह. सराइकी में शायरी होनी चाहिए ना.
2: हां सराइकी सराइकी सराइकी सराइकी.
1: तू मेहनत कर तू जहद सजा.
2: आहा
0: जेल सजा
1: जहद सजा.
0: अच्छा
1: जहद कोशिश. तू मेहनत कर तू जहद सजा तू भी आबाद बर्बाद ना थू. तू शाकर आप संजावन अपने को खैर दा मोहताज न थू. समझ आई.
2: वाह
1: नहीं आई.
2: नहीं आई आई है. वो कहते हैं जब सुनाने वाले ने कुछ सुनाया और ना समझ में तो समझो कि बहुत बड़ी बात कर गया वो. कहता है तू शाकर आप से आना है साडा चेहरा पढ़ साडा हाल ना पूछ. कहता तेरी सिर दी शाकर छा मैं तेरे सिर दी शाकर छा मैं जो तो ढल वैसा ते याद आसा. बस
0: कोई और छुड़ाओ सराइकी से. मैं तो नहीं छुड़ा सकता.
2: अच्छा सराइकी आप सराइकी, आपको सराइकी. पंजाबी का पसंद है कि सराइकी का पसंद है.
0: कोई भी सुना दीजिए.
2: नहीं आप बताएं ना आपको पंजाबी का पसंद है कि सराइकी का.
0: सराइकी सुना दीजिए.
2: आपको
1: आपको पसंद किसका
2: पसंद किसका है. पंजाबी का पसंद है कि
0: सराइकी. पसंद है पोठोहारी का.
2: पोठोहारी का पसंद है.
1: पोठोहारी
0: आप
1: चढ़ाना चाहते हैं.
0: जी हाँ
1: इस वीडियो को लीजिए जरा. ये आपकी वीडियो बन रही है सर. اکثر میں دیکھتا ہوں نا مجھ تو بھائی کے سٹیٹس کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں ویڈیوز, تو مجھ تو بھائی چلے بولیے
2: آج آپ مدد کریں چڑھانے میں.
0: ہاں صاحب سرائکی تھی
1: مڑی آئے ہیں, سرائکی تو مڑی آئے ہیں اور پٹھواری تے چڑھی گئے,
0: سرائکی تھی جمپ لایا جی لایا ہوا ہے اور اسی چڑھ گیا
1: پٹھواری تے,
0: پٹھواری گئے تے اساں اخنے کے ضلع بالکل بھکھے پانے ہونے سا, ضلع بالکل بھکھے پانے ہونے سا اس وی پارا گڈا چانے ہونے,
1: آئے ہائے
2: واہ واہ واہ واہ واہ,
0: کسی پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا ہے لیکن کسی نے کیا اچھا لکھا ہے.
2: تے مڑ میں ایک سناواں
0: مائیے گانے ہونے سا. اے خرم بھائی
2: تو تسا ویڈیو جلدی بند کر دیتی نا یار, کلائمیکس تو آنے دے,
1: پھر آ
0: جڑی درمیان اچ نا کم نہیں چھٹی دا,
1: اوکے
2: کلائمیکس تو آنے دینا یار, مان گیا خدا نی قسم ہے جے تو صحیح آخری شعر او سٹن لگا تسا بند کر دیتی
1: ویڈیو, چلو ہن تسی اگر نا شعر بولے تے میری میموری فل ہو جانی
0: جناب جی. ہن ہن شعر سنو جی,
2: سناؤ جی
0: شعر ایوا کے رام ہے جے کوئی اپنی گل وی کیتی وے, رام ہے جے کوئی اپنی گل وی کیتی وے
2: میں سناواں, ٹوکری بھری انارا دی ٹوکری

अगर आप इसे यूं सुनिए कि कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से।

0: प्रोग्राम जारी है गुंजाए शौक और मुश्तबा हैदर आज ज़िशान और आज खुर्रम आपके साथ हैं।
1: थे
2: जाने वाले हैं।
0: जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई।
2: हाँ
0: आप यकीन जानिए इतना अच्छा लगा, आप सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा।
1: जी चले मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। वेल जनाब सब हंसी मजाक अपनी जगह पे, कोई बात हमारी आपकी समा खराशी का बायस बनी हो तो हम दिल से माजरत करते हैं। जो भी हम यहाँ पर बैठ कर करते हैं हमारी कोशिश मोटिवेशन बैक एंड पे ये होती है कि किसी के चेहरे पे अगर एक मुस्कुराहट आ जाए तो शायद बहुत सारे मामलात हमारी अपनी जिंदगियों में सीधे हो जाएंगे। सो अगर गुफ्तगू के दौरान कोई जुमला कोई लफ्ज़ ऐसा कह दिया हो जो कि आपकी दिलाजारी का बायस बना हो सो माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले खुर्रम भाई आपका फॉर हैविंग अस इन योर शो, फिर उसके बाद मुश्तबा भाई आपका अपने शो में बिठाने के लिए
0: आपका बहुत शुक्रिया।
1: और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ज़िशान नासिर को इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सवाए गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और जैसे बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था कि छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाँ ना दाओ साडा ज़ामन, वो दामन रसूल अल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
2: थैंक यू सो मच जी एवरीबॉडी, जो जो लोग हमारे साथ शामिल हाल रहे, होपफुली जी के हमने आपकी समा खराशी का बायस नहीं बने होंगे। हमने मजाक तो बहुत किया आपके साथ लेकिन इसको मजाक ही समझिएगा, और मजाक जो है वो करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी टेंशनों को अपनी परेशानियों को थोड़ा भूल के थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। और मुज्तबा भाई आपसे माजरत कि आपका इतना संजीदा प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के अंदर हमने आज गुलगपाड़ा किया, बहुत ज़्यादा गुलगपाड़ा किया जो कि हमें बहुत मज़ा आया, लोगों को भी होपफुली मज़ा आया होगा। अगर किसी को नहीं आया, कोई तंग हुआ, किसी को तकलीफ़ हुई, किसी के कान को किसी के दिल को कोई बात गिरा गुजरी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, रब के हुजूर भी माफ़ी का खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी का खासगार हूँ, माफ़ी दीजिएगा। और मुझे अपने मेज़बान को केबी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपके साथ मंडे को मेरी मुलाकात होगी। और मुश्तबा भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका, तो केबी साइनिंग आउट, बाय बाय।
0: बहुत शुक्रिया। और सामिन आप जानते हैं कि मजाक उड़ाने में और मजाक करने में बहुत फ़र्क है। आप यकीन जानिए आज जो कुछ हुआ ये मजाक किया गया, और इसमें हमारी मोहब्बत शामिल थी, इसमें हमारा खुलूस शामिल था। और खुदा की कसम मैं बहुत कम ऐसी जगहों पे आज तक गया हूँ जहाँ मुझे खुल के हंसने का मौका मिला हो, और आज का दिन मुझे बहुत याद रहेगा जहाँ आज मैं खुल के हंसा भी हूँ, हंसाया भी है। और ज़िंदगी एक सच्चाई से इबारत है, ज़िंदगी हमेशा उनकी है जो सच बोलते हैं और सच्ची बात करते हैं। आज बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ कहने को था हमारे पास, हमने आपसे बात की, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। और इन्हीं अल्फाज के साथ के ज़िंदगी नाम है दूसरों के काम आने का, और अगर हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करता है। आज खुर्रम भाई ज़िशान भाई हमारे साथ शामिल रहे, मैं आपके साथ शामिल रहा, हम तीनों को दीजिएगा इजाज़त, ज़िंदगी ने वफा की तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

sing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help.

फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके असा को खाता रहा। जब असा गिर पड़ा तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते।

0: तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर जोर का सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाव था और थोड़ी सी बेरियां।
1: ذلك

कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने शरीक खुदा बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं बल्कि वही अकेला अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है।

0: और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को क्यों कर पहुंच सकता है।
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: और पहले तो इससे इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से जन के तीर चलाते रहे।
1: वही